0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9976 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

क्या बात है, साथ तो कुछ चलता है और वो जब साथ चलता है तो ऐसा लगता है कि सोहबत मिल गई है अब चलने वाली। फिलहाल एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो आइए इस गाने को मुकम्मल सुनते हैं और आज के संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे को आप तक पहुंचा देते हैं।

0: सो इतने लाजवाब सॉन्ग को सुनने के बाद आपको जो है ऐसा लगता है कि भाई वाह, सुबह सुबह अगर ऐसे सॉन्ग सुनने को मिल जाए तो क्या ही बात है। सो ऐसे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं ना आपको आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान। यस ऑफ कोर्स। सो फिलहाल वक्त हो गया है आपको ले चलने का आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, और उस थॉट से आपको रूबरू कराने का, या यूं कहे कि उस थॉट को जीने का वक्त आ गया है। संडे का शो है, मॉर्निंग का टाइम है, नवरात्र का पहला दिन है, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिलहाल बताते हैं क्या है आज का मॉर्निंग का थॉट ऑफ द डे।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

बहुत छोटी सी बात कई बार सुनने में समझने में लगती है, लेकिन दरअसल बहुत बड़ी होती है। आज का थॉट भी कुछ ऐसा ही है। आज का थॉट कहता है कि वो करो जो जरूरी है, वो करो जो जरूरी है, ये मत देखो कि उससे मिलेगा क्या। वो करो जो जरूरी है, ये मत देखो कि उससे मिलेगा क्या। बात तो सही है। अब जो जरूरी है उसको करना ही करना है ना, उससे मिलेगा क्या क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना, अभी उस तरह उतनी जल्दी मॉर्निंग में उठ पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, मुमकिन नहीं हो पा रहा है, ये एक बात है। और दूसरी तरफ बॉडी को चाहिए एक्टिविटी, चाहिए थोड़ा सा और मूवमेंट चाहिए ताकि वो प्रॉपर फंक्शनल रहे। तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो एक अलग चीज है, एक रिक्वायरमेंट है, एक जरूरत है, जरूरी है। सुबह उठते ही हमको थोड़ा सा वक्त अकेले चाहिए होता है, क्यों? ताकि हम जब अगली सुबह उठते हैं तो हम रीस्टार्ट कर पाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल फोन ऑन होते ही तुरंत ऑन नहीं हो जाता है, ऑन होने में थोड़ा सा वक्त लेता है ना। कंप्यूटर भी वही करता है, इंजन्स भी वही करते हैं, सब कोई वही करता है, लेकिन हम डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सो वो जो सुबह उठ करके हौले हौले से आंखें खोलना होता है, आसपास की चीज़ों को जस्ट देखना होता है, बिना कुछ सोचे देखना होता है, आ रही खुशबू को महसूस करना होता है, आ रही आवाज़ों को सुनना होता है, दिख रही चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व करना होता है, ये सारी चीज़ें हो रही होती है। इसी बीच में आपको थोड़ा सा और वक्त चाहिए होता है, कुछ वक्त ऐसे गुजारने के लिए। मेंटली हम बात करते हैं फिटनेस की, सो मेंटल फिटनेस कहाँ से आती है? अक्सर लोग योगा का एग्जाम्पल देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, योगा अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप योगा भी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर कुछ वक्त अकेले में तो बैठ सकते हैं भाई। कुछ लोग गुनगुनाने लग जाते हैं, कुछ लोग एक स्पेसिफिक साउंड प्ले करते हैं और उसके बाद उसको सुनने लग जाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ लोग नेचर के बीच निकल जाते हैं, वॉक करने निकल जाते हैं। सो मेंटली भी हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है और ये ज़रूरी है। इसके अलावा हम रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा लेथार्जिक सा फील कर रहे हैं, बैठे रहते हैं अपनी जगह पर, उठने का मन नहीं करता है। बट क्या ये चीज़ ज़रूरत है बॉडी की? नहीं, इसके ऑपोजिट में ज़रूरत है। तो थोड़ा सा चरफर और करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा और एक्टिव होना ही पड़ेगा, अपने पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। मन करता है कुछ बाहर का खा ले, फौरन कुछ चटपटा खा ले, लेकिन हमको पता है कि बॉडी इतना ज़्यादा नहीं ले पाएगी। नहीं ले पाएगी मतलब नहीं ले पाएगी, सीधी सी बात है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो कम से कम कोशिश करें कि बाहर का खाए या फिर तला भुना खाएँ, क्योंकि हमको हेल्दी ज़्यादा खाना है। तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिसके लिए पूछना नहीं किसी से कि भैया इसको कर लें कि ना कर लें, ना अड़ोसी पड़ोसी से, ना दोस्तों से और ना खुद से। क्यों? क्योंकि हमको जब ये पता हो गया है, हमको जब ये अंदाज़ा हो गया है कि ये ज़रूरी है तो मतलब ज़रूरी है, अब इसको करना ही है। और यही कहना आज के थॉट ऑफ द डे का, अब किसी को छोड़ना ज़रूरी हो तो छोड़ना है, क्योंकि नहीं छोड़ने पर लॉस है। किसी को साथ लेना हो और ज़रूरी हो तो साथ लेना है, क्योंकि साथ नहीं लेने पर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर जो चीज़ें आपको पता है ज़रूरी है वो करना है तो आपको करना है, फिर डजेंट मैटर उससे मिलेगा क्या, क्योंकि ये ज़रूरत है। बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अब आप भले ही बहाने बना दें कि हम तो ऐसे काम में बिजी रहते हैं कि कई कई घंटे हम नल और टंकी और पानी के आसपास नहीं होते, ना होते होंगे, बट बॉडी तो आपकी डिज़ाइन वैसे ही है ना, जिसको पानी चाहिए ही चाहिए, खाना प्रॉपर चाहिए ही चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, टाइम से चाहिए, वॉक करना ही करना है, मूवमेंट चाहिए ही चाहिए, राइट? कोई चीज़ सीख रहा है तो उसके लिए अलग से वक्त निकाल करके उसको पढ़ना हो गई होगा, उस पर प्लान बनाना हो गई होगा, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है हमारी, और बिना ज़रूरत के चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। और जैसे ही इन ज़रूरतों को हम
दरकिनार करते हैं। देखिए हॉस्पिटल्स में कितनी भारी भीड़ पाते हैं, कितनी कम एज में बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारी सुन लेते हैं, कितने लोग एकदम लेथार्जिक हो गए हैं, निकलना ही नहीं चाहते, काम ही नहीं करना रहे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद हमने अपनी ज़रूरत को साइड में कर दिया है। तो बस इस बात को ज़रूर जहन में रखिए कि जो बहुत ज़रूरी है, जो नेचर ने डिज़ाइन किया है, जो नेचर ने हमारे लिए बनाया है, वो हमको करना ही करना है, क्योंकि यूनिवर्स का भी अपना एक लॉ है और उस लॉ के तहत हम उसके इस यूनिवर्स में, इस जहां में मौजूद हैं, तो हमको भी उसका पार्ट है। सो वी शुड फॉलो, हमको करना ही होगा, वी शुड ऑबे। एंड यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। और यकीन मानिए, जिस दिन से आप ज़रूरी चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, उस दिन के बाद से आप कहते हैं कि वाओ, बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़रूरी था वो आपने किया है। एंड लिटरली ये बहुत ज़रूरी है, सच में ज़रूरी है। और यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। आई होप कि भाई आप इस थॉट ऑफ द डे को समझ पा रहे होंगे और आप इससे खुद को रिलेट कर रहे होंगे, अपनी डेली लाइफ से, अपने डेली रूटीन से आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। कोई भी चीज़ हो, जो ज़रूरत है उसको करना है, फिर डजेंट मैटर उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मिलेगा तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि इसके लिए कोई इफ बट की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना ही कहना आज के थॉट ऑफ द डे का। सो थॉट क्या कह रहा है? वो करो जो ज़रूरी है, ये मत देखो कि उससे मिलेगा क्या। सो आपको पता है आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, तो बस उसके लिए लग जाइए। अब भले ही कुछ भी कहीं से भी निकलना हो, कुछ भी छोड़ना हो, कुछ भी पकड़ना हो, कुछ भी करना हो, ये अब आपकी च्वाइस है। हाँ, ज़रूरत में कोई च्वाइस नहीं है, ये भी जान लीजिए। सो फिलहाल अब चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि ये थॉट हमने आप तक पहुंचा दिया। एंड आई होप कि ये थॉट आप तक पहुंचा है और आपके थॉट में भी कई सारे थॉट आ रहे हैं, यानी इस थॉट को सुन लेने के बाद आपको कई सारे थॉट आ जा रहे हैं। सो चलिए, अगर कोई भी ऐसी बात आ रही है जहन में इस थॉट से जुड़ी हुई, तो चैट पर आकर के आप बता सकते हैं कि आपके खुद के क्या थॉट हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब चलते हैं, एक पहला खूबसूरत सा गाना सुनते हैं मॉर्निंग के शो में, वापस से आएंगे। आने के बाद आपके जो मैसेजेस आए हुए होंगे चैट बॉक्स पर, उनको भी हम रीड करने वाले हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो फटाफट से आ जाइए।

0: तू ही मेरा, तू ही मेरा एंड तू ही मेरा, ऑफ कोर्स। सो जो आपका है वो आपका ही है, और फिलहाल मॉर्निंग शो आपका है पूरी तरह से। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

जरूरत से याद आया भाई, गाना जो चल रहा हो आसपास आपके कान तक पहुंच रहा हो, उसको एंजॉय करना भी जरूरत में आता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। वैसे पता नहीं आपको क्या लगता है। खैर, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुंडा में। आपके मॉर्निंग शो आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। आज है 11 अक्टूबर, आज ही नवरात्रि की शुरुआत भी हुई है, और आज ही है संडे, और आज मैं हूं ना आपके साथ। सो भाई, सबसे पहले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले हम बता दें कि भाई आप हमको सुनते हैं तीन तरह से। फ्रिक्वेंसी से, यानी अपने ट्रांजिस्टर से अपनी कार में। इसके अलावा आप हमको सुनते हैं रेडियो गार्डन से, यानी इंटरनेट के जरिए। रेडियो गार्डन में जब गोंडा पे आते हैं तो आपको गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम सुनाई पड़ता है। और इसके अलावा आपको जब जुड़ना होता है सीधे दुनिया के किसी भी कोने से, और मैसेजेस भी आपके हम तक पहुंचते रहें, यानी हर इमोशन, तो आप डाउनलोड कर लेते हैं एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर्स ऐप स्टोर से रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन। सो उसी एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन होता है, और उस पर जो कुछ आप लिखते हैं गोंडा एफएम के आरजीस तक सीधे पहुंचता है। सो फिलहाल क्या लिखा है आपने और क्या हम तक आ गया, आइए बताते हैं। हमारे अनूप मिश्र जी सबसे पहले आ गए हैं, और आपने लिखा है, माता दुर्गा की ममता आपके हर दुख को दूर कर दे, उनके कृपा आपके जीवन को खुशियों से भर दे, जब भी मन उदास हो उनकी भक्ति सहारा बने, आपके जीवन का हर पल प्रेम और शांति से सजे, नवरात्रि की प्रेम भरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच टू यू, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद रोजेली का है, लव एंड काइंडनेस लाइट द वे, होप गिव्स स्ट्रेंथ टू फेस ईच डे, पीस एंड हैप्पीनेस मेक लाइफ ब्राइट, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स मेक एवरीथिंग राइट, मस्ट डू थॉट डियर आरजे, टेक केयर। थैंक यू सो मच, बहुत बेहतरीन आपने लिखा है। और सच में भाई, जब कोई थॉट हमारे जहन में आ जाता है, हमारे दिल में घर कर जाता है, तो न जाने क्यों एक अलग सी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि कोई मेहमान आया है हमारे थॉट्स के परिवार में, एक ऐसा नया मेहमान जो हमको अच्छा फील करा रहा है, बेटर फील करा रहा है। और देखिए ना, जब आप कोई भी ऐसे शख्स से मिलते हैं, अक्सर भाई मेरे साथ तो मेरे फ्रेंड्स वालों का होता है, जैसे इन लोग का चेहरा देखते हैं मिल जाते हैं, चाहे जैसे भी हों, भाई मेरे तो अनमोल रतन है ही हैं, इनके बिना, इनसे मिले बिना, इनको देखे चैन करार आता ही नहीं है। हमारे घर वाले भी कई बार कहते हैं कि भाई अब तुम चले ही जाओ, वहीं रह लो, लेकिन सच बताए तो मज़ा तो भाई फ्रेंडशिप में बहुत है, बहुत आता है। भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, बाप का तो पता नहीं आप कितना एंजॉय करते हैं, वैसे मुझे लगता तो है कि भाई करते ज़रूर होंगे। खैर, करना भी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हमको एंजॉय सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए, बल्कि गानों को भी करना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। वापस से जब आएंगे तो आने के बाद बहुत सारी बातों का पिटारा आपके लिए है संडे स्पेशल शो में।

0: भाई, जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वाह क्या बात है, इतने खूबसूरत से गाने के बाद, इतने बेहतरीन सॉन्ग को सुन लेने के बाद, इतनी लाजवाब म्यूज़िक को टेस्ट कर लेने के बाद, फाइनली हम आप पहुंचे हैं अपनी सिटी की अपडेट्स की तरफ। जी हाँ, आज है 11 अक्टूबर और आपको हम ले चलते हैं सिटी अपडेट्स में बताने कि भाई गोंडा में क्या कुछ चल रहा है, आज क्या होने वाला है और फ्यूचर प्लान्स क्या है। सब कुछ जो भी अपडेट्स हम तक आ गई है वो हम अब जा रहे हैं आप तक पहुंचाने।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

योजना का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। आवास प्रभारी के हिसाब से ब्लॉक से मिली रिपोर्ट के आधार पर अब तक 350 से ज़्यादा आवास जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं। शेष आवासों की मंजूरी रिपोर्ट मिलने के बाद दी जाएगी। पात्रों को योजना का लाभ भी दिया जाएगा। सो योजना के तहत जो है हर एक प्रत्येक परिवार को 3 किश्तों में कुल 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। पहली किश्त में 40,000 रुपये, दूसरी किश्त में 70,000 रुपये और तीसरी किश्त में 10,000 रुपये मिलेंगे। साल 2024 में पात्रों का चयन के लिए सर्वे कराया गया था, जो कि 2026 में अब इसको मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा ब्लॉक के हिसाब से अगर बताएं तो 2,770 आवास जो है वो आवंटित किए गए हैं। परसपुर को, नवाबगंज को 1,279, तरफगंज में 1,249, करनैलगंज में 1,094, रुपैडीहा में 666, छपिया में 415, मुजहना ब्लॉक में 278 का आवास का लक्ष्य है। इसके अलावा आप चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो जेल रोड पर मौजूद 220 केवी विद्युत उपकेंद्र के यार्ड में पंक्चर हो जाने को लेकर के आ रही है अपडेट। सो आपको बता दें कि 33 केवी लाइन से कौवा टकराने की वजह से कल सैटरडे सुबह सिविल लाइन्स एरिया में तकरीबन 4,000 कंज्यूमर्स की बिजली 5 घंटे जो है वो गुल रही। सो जेल रोड में मौजूद 220 केवी विद्युत उपकेंद्र के यार्ड में पोस्ट इंसुलेटर पंक्चर हो गया। इससे अंबेडकर चौराहे पर मौजूद सिविल लाइन्स उपकेंद्र के सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग क्वाइल भी जो है वो फिलहाल डैमेज हो गई। सो विभागीय टीम ने जांच और टेस्टिंग के बाद सुबह 11 बजे आपूर्ति बहाल की। सुबह 6 बजे से बिजली गुल होने से पानी की किल्लत के साथ ही घरेलू कामकाज भी जो है उन पर असर पड़ा। सो पितृ विसर्जन के दिन बिजली ना रहने से लोगों को परेशानी भी फिलहाल उठानी पड़ी है। वैसे इसके अलावा जो ऑफ कोर्स आंधी पानी आया था, अर्णव तूफान, उसका असर अभी भी है कि 15 दिन भी हो गए हैं उसके बावजूद 80 गांव और मजरों में जो है बिजली वो गुल है। जी हाँ। एंड इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है थाना समाधान दिवस को लेकर के। सो थाना समाधान दिवस का आयोजन जो है वो शनिवार को किया गया, जिसमें ज़मीन पर कब्जे, रास्ता बंद करने, भूमि में हिस्सा ना देने से जुड़ी जो शिकायतें हैं मेनली ये आई। और इसी तरह से थाना समाधान दिवस में कुल 15 शिकायतें आई, जिसमें से 14 राजस्व से जुड़ी हुई थी। SSI ने शिकायतें सुनी लेकिन किसी भी मामले का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। सो नवाबगंज थाना समाधान दिवस में 7 शिकायतें आई लेकिन किसी का भी मौके पर निस्तारण नहीं हुआ। नायब तहसीलदार ने बताया है कि शिकायतों के निस्तारण के लिए टीमें गठित की गई हैं, उन्हें मौके पर भेजकर समस्याओं का समाधान जो है वो कराया जाना है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो भी आपके गोंडा से ही आ रही है। सो यस, फिलहाल NHM जो कर्मी हैं उनका कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। सो आपको हम बता दें कि नियमितीकरण समेत कई सारी मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के कर्मियों का कार्य बहिष्कार शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। जिले भर में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने CMO कार्यालय के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। इससे मेडिकल कॉलेज समेत CHC PHC में जाँच और टीकाकरण सहित स्वास्थ्य सेवाएँ जो है वो प्रभावित हुई। मांगे पूरी ना होने पर 12 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन करने की भी चेतावनी फिलहाल दी है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर, क्योंकि कल मनाया गया था 10 अक्टूबर को। सो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जो है शनिवार को स्वशासी राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में कल जागरूकता कार्यक्रम किया गया था, और इसमें मानसिक स्वास्थ्य का जो महत्व है उस पर तनाव प्रबंधन और चिंता से निपटने के जो भी सॉल्यूशंस हैं उन पर चर्चा हुई। सो पैरामेडिकल नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बहुत छोटे से नाटक के जरिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश दिया। सो मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा ने तनाव संतुलन, चिंता प्रबंधन और व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को भी समझाया,
और साथ ही साथ प्रधानाचार्य ने बच्चों को बढ़ते स्क्रीन टाइम के

दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की। यानी उनका सीधा सा कहना था कि भाई स्क्रीन टाइमिंग आप घटाइए, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, मेंटली आप बेहतर रहना चाहते हैं, बेहतर बने रहना चाहते हैं। इसी के साथ ही साथ चलिए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। आज सुबह 10 बजे से ज़िले के 52 PHC में जन आरोग्य मेले का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगली अपडेट जो है वो रेल मंत्री ने फिलहाल ट्रेनों के ठहराव का भरोसा दिया है, इसको लेकर के है। आपको हम बता दें कि भाई इटिया थोक रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव की मांग, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इन्होंने 29 सितंबर को विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को पत्र भेजकर गोरखपुर वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस और गोरखपुर ऐशबाग इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव का जो है उल्लेख किया था। रेल मंत्री ने बताया कि जन्म सुविधा से जुड़े इन सुझावों की जांच कराई जा रही है, जांच के बाद उपयुक्त कार्रवाई जो है वो फिलहाल कराई जाएगी। यानी इटिया थोक को भी जोड़ने की कोशिश फिलहाल की जा रही ताकि एक्सप्रेस ट्रेनों से इटिया थोक को भी जोड़ा जा सके। फिलहाल ये कुछ ऑफकोर्स अपडेट्स थी जो कि हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि भाई ये अपडेट्स आपके ज़रूर काम की रही होगी और सिटी की अपडेट्स थी। फिलहाल बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की तरफ आपके मॉर्निंग शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

सुबह ही एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। सो आज है संडे का टाइम और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आने वाली है जबरदस्त। जी हाँ, सो चलिए भाई हम कुछ और बातें बताने वाले। वैसे आंवला मुझे याद आ रहा है और आंवला इसलिए याद आ रहा है क्योंकि सीजन आ गया आंवला का। सो फिलहाल आंवले के बारे में आपने सुना है कि हाँ भाई बहुत फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली बालों के लिए आपने काफ़ी सुना है, आँखों के लिए काफ़ी सुना है, इम्यूनिटी के लिए काफ़ी सुना है। सो आखिर आंवले पर सवाल आता है कि ठीक है आंवला खाना फ़ायदेमंद है लेकिन आखिर कितना खाया जाए, मतलब क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। ये तो मुझे लगता है ज़रूरी है ना जानना कि भाई आखिर कितना होना चाहिए, यानी क्वांटिटी आपकी जब सही होती है तो आपको फ़ायदा भी उसी तरह से होता है और इसी तरह से आपके लिए बेहतर भी रहता है। सो चलिए आपको अब हम बताने वाले हैं कि भाई क्वांटिटी आखिर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी के बारे में बहुत बार जो है वो मिथ्स भी रहते हैं और कई बार यही चीज़ें प्रॉब्लम भी कर देती हैं। सो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि भाई हम इस चीज़ का ध्यान दें कि कोई भी चीज़ जो खाते हैं, स्पेशली जो बॉडी में सीधे जा रही है, उसकी आखिर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम हेल्दी हेल्दी के चक्कर में कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही खा लेते हैं। जी हाँ, आपको नहीं लगता है? मुझे तो लगता है कि भाई हम सच में कई बार चीज़ों को ज़्यादा ही खा लेते हैं, यानी इतना भी नहीं खाना चाहिए। तो क्वांटिटी का सही अंदाज़ा होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और यही हमारे लिए बेहतर भी है कि हम चीज़ों को सही अंदाजे और सही नाप के और माप के साथ खाएं, ताकि हमको ये पता रहे कि भाई ये हमारे लिए कितना बेहतर है और कितना नहीं। सो ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आइए ले चलते हैं आपको अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। वापस से आते हैं, आने के बाद बताने वाले हैं कि आखिर आपको कि भाई ये जो क्वांटिटी है आंवले की ये कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आंवला आपके लिए फ़ायदेमंद है और कितना ज़्यादा होने पर जो है वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादा होने पर भी आपको पता है कि भाई लॉस हो जाता है। तो आखिर एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से हमको आंवले का सेवन करना है, क्योंकि अब आ गया है सीज़न और आंवला है बहुत फ़ायदेमंद, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिलहाल इस गाने को सुनेंगे, वापस से आएंगे, आने के बाद आपको बताते हैं आंवले की क्वांटिटी के बारे में।

0: सो आपको पता है ना, वादा जो करते हैं वो निभाते हैं। फिलहाल चलिए वापस से आ गए हैं आपको ये बताने के लिए कि एक्चुअल में कितने आंवले की ज़रूरत होती है खाने के लिए हमारे पास। सो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आंवले का सीज़न आ गया है और आंवला काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे कई सारे एलिमेंट्स के लिए। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

यस ऑफ कोर्स, एक दिन में कितने आंवले खाने चाहिए, सवाल ये है। और इसका जो सही जवाब है वो ये है कि एक हेल्दी इंसान को दिन भर में 1 से 2 ताज़े आंवले खाने चाहिए। ज़्यादा लेने पर आंवले से एसिडिटी, गैस या पेट में ऐंठन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी सीधी सी बात है कि 1 से 2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब चूंकि आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और हेल्दी रहने के चक्कर में इसे लोग ज़्यादा ज़रूरत से भी ज़्यादा खा जाते हैं। सवाल आता है कितना खाएं। एक हेल्दी इंसान रोज़ाना 1 से 2 ताज़े आंवले अपनी डाइट में शामिल कर सकता है, पहली बात। दूसरा ये कि ज़्यादा खाने पर क्या हो सकता है, सवाल ये आता है।

गदा खाने पर कुछ लोगों को एसिडिटी, पेट में ऐंठन या पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब सवाल ये भी आता है कि ठीक है साहब, मान गए कि कोई एक हेल्दी इंसान है, वो एक से दो ताज़े आंवले रोज़ खा रहा है, सो अब कैसे खाना है, सवाल ये भी आता है। तो इसका जवाब सीधा सा है कि इसे आप सीधा खा सकते हैं या फिर अपनी पसंद के हिसाब से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब कई लोग जो हैं वो इसका ऑफ कोर्स आंवले का अलग से अचार बनवा लेते हैं, या चटनी होती है, या मुरब्बा होता है, कैसे भी करके आप आंवले का इंटेक लेते हैं करते हैं। सो एक से दो ताज़े आंवले काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप रोज़ खा रहे हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, पेट में ऐंठन की या पाचन से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है और इसी अमाउंट के तहत आपको खाना है। एंड आई होप कि भाई ये आपको ख़ास जानकारी जो है वो मिल गई है और अभी आप जो हैं इस बात को जान गए हैं कि आंवले का सेवन आखिर कितना और कैसे करना है। अच्छा, वैसे एक चीज़ आ रही है जो सच में काफ़ी चौंकाने वाली है और कहीं ना कहीं जब दुनिया अलग ही लेवल पे जा रही है, साइंस बहुत आगे पहुंच गया है, एआई का वक्त आ गया है, तो इसी एआई को लेकर के सवाल उठ रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या तबाही? आखिर ये किस रिसर्च के तहत ऐसा बोला जा रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ इसमें देखी गई है कि बात यहाँ तक पहुंच गई कि भाई इसको कहा जा रहा है ये एआई है या तबाही है? चलिए, आने के बाद आपको ये भी हम बताने वाले हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, तो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम कर दें मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल वक्त है एआई के बारे में, जो एक सवाल उठा है कि भाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या तबाही। सवाल का जवाब क्या, आइए बताते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

अगर आपने भी हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो आपके जहन में भी ऐसे ख्याल होंगे कि आने वाले टाइम में ये रोबोट्स, ये एआई, ये मशीन्स जो है, जो दुनियावी है, ऑफ कोर्स इंसानी दुनिया है, उस पर कहीं कब्जा करना कर ले, राइट। सो आपको बता दें कि भाई अक्टूबर 1962 के दो बेहद जो तनावपूर्ण हफ्ते थे, उसके दौरान दुनिया परमाणु तबाही की बिल्कुल करीब पहुँच गई थी। सो शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ में अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से आगे निकलने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहे थे, जब अमेरिका ने इटली और तुर्की पर परमाणु मिसाइलें तैनात की तो सोवियत संघ ने भी अपने ऊपर हमला होने के डर से क्यूबा में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की कोशिश की। फिर दो हफ्तों तक तनावपूर्ण गतिरोध चला, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है, और ये संकट लगभग परमाणु युद्ध में ही बदलने वाला था, लेकिन दोनों पक्ष युद्ध के मुहाने से पीछे हट गए। सो डार्टमाउथ ने नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकार और राजनीतिक वैज्ञानिक विलियम वोल्फोर्थ बताते हैं कि उस मुश्किल ने दो तरफ नेताओं की सोच बदली। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ कट्टर दुश्मन बने रहे, लेकिन एक साझा हित के मुद्दे पर, यानी मानवता को खत्म ना होने देने पर, वो साथ मिलकर काम करने पर राजी हुए। आज एक बार फिर वैसी ही स्थिति है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो उद्योग के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एआई जो है कंपनीज और जिन देशों में मौजूद है, वो एक तरह से होड़ में फंसे हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि इसके नतीजे उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं जितना वो परमाणु युद्ध, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत के नेता निकिता खुश्चेव ने टाला था। सो बेशक इनमें से कुछ अहम फर्क है, एआई मॉडल परमाणु बम नहीं, भले ही उसका इस्तेमाल सैन्य कामों में किया जा सकता है। बाजार में बढ़त हासिल करने के लिए कोशिश कर रही कंपनीज वैश्विक वर्चस्व के लिए लड़ रही महाशक्तियों जैसी नहीं है, लेकिन असल में एआई की होड़ उसी सवाल की तरफ इशारा करती है जो शीत युद्ध के वक्त अहम था। आर्थिक और भू राजनीतिक दबदबे के लिए मुकाबले करते हुए विरोधी देश दुनिया को सुरक्षित रखने के कैसे सहयोग कर सकते हैं। सो फिलहाल एआई की जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और जाने माने गेम थ्योरिस्ट हैं, यानी ड्रू फ्रूडेनबर्ग और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और गूगल डीप माइंड के शोध वैज्ञानिक एंड्रयू कोह को एक नया आधार पत्र एआई की होड़ को धीमी और सुरक्षित रफ्तार पर लाने की संभावित तरीका बताता है। सो उनका सीधा सा कहना है कि भाई जिस तरह से कंपनीज लगातार होड़ में हैं, एआई को डेवलप करती जा रही हैं, बड़ा बनाती जा रही हैं, एक दिन ऐसा ना आ जाए कि भाई एआई को ही सत्ता सौंपनी पड़े इंसानों को, यानी एआई बता दे कि अब वो बेहतर है, इंसानों को अब उन लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तेज़ी से, जिस होड़ से खाली आगे निकलने की होड़ में तेज़ी से सब कुछ किया जा रहा है, वो एक बहुत ही बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है, और वो खतरा यही है कि एआई इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो खुद बताए कि अब जो है इंसानों को अपनी सत्ता छोड़नी चाहिए और अब एआई जो है वो मैनेज करेंगे सारी चीज़ें। सो सच में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा लगातार होता जा रहा है। मतलब एक तो होता है कि चीज़ों को एक सीक्वेंस में एक तरीके से, एक सलीके से लेके जाना, लेकिन एक होता है कि भैया होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। तो फिलहाल वही चल रहा है। अगर हम बात करें इस एआई के प्रतिस्पर्धा की, इसके कंपटीशन की, तो ये सच में उस सोच तक पहुंच गया है जहां पर अब थमने की और देखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, नहीं तो सच में इंसान जो है वो पीछे रह जाने वाले हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या विचार है, आप भी फटाफट से बताइए। और अब वक्त हो गया है आपके कॉल इन प्रोग्राम का, तो चलिए आपकी कॉल्स को भी हम लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस सॉन्ग को आप एंजॉय करिए। वापस से आते हैं, आने के बाद हम बताते हैं कि हाँ भाई आज आपसे बातचीत में हम क्या सवाल करने वाले हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ अगर कुछ गाना भी आप सुनाना चाहें तो संडे का मतलब ही होता है वनडे।

0: हाँ जी, सो फिलहाल चलिए भाई, अब कॉल इन का प्रोग्राम चुकी वक्त और प्रोग्राम दोनों ही शुरू हो चुका है। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं यानी कौन है कॉल पर, क्योंकि आज आप एंजॉय कर रहे हैं संडे स्पेशल गाग गुंडा विद आरजे अदनान। सो यस, वक्त है आपसे बातचीत करने का, बतियाने का गुंडा एफएम पर। हाँ जी हेलो।
1: जिंदगी का दिया हर पल जगमगाता रहे,
0: वाह,
1: खुदा आपकी किस्मत में हर खुशी लाता रहे, गम की परछाई भी न छूने पाए कभी, यह हंसी चेहरा यूं ही मुस्कुराता रहे। काबिले सद एहतराम जनाब अदनान साहब को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब, और नवरात्र के पर्व पर आपको ढेरों सारी बधाइयां।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी नवरात्र की बहुत बधाइयां पूरे परिवार को। और आपका जो आदाब है वो हमको मिल चुका है आपके अंदाज में, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इसके। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, और इसी मुस्कुराहट पर हम कुछ कहना चाहेंगे।
0: जी जरूर जरूर फरमाइए।
1: कहा गया है कि दुनिया में मुस्कुराहट ही इंसान के चेहरे का नूर है, यह वो तिजारत है जिसमें कोई सरमाया नहीं लगता और जिसमें फायदा ही फायदा है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो न चाहते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी मुस्कुराना पड़ता है, और लोग समझते हैं कि यह शख्स जो हर वक्त मुस्कुराता है इसे कोई गम नहीं, मगर यह गलत है। किसी को क्या मालूम कि उसकी एक मुस्कुराहट पर उस शख्स का दिल कितनी बार टूटकर बिखर जाता है, मगर फिर भी कुछ लोग अपने गमों को छुपाकर ओठों पर मुस्कुराहट सजाए रखते हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं।
0: वाह क्या बात है, बहुत गहरी बात आपने बोल दी
1: जी।
0: तो वैसे कभी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या?
1: जी होता है
0: कि मुस्कुराना पड़ता है,
1: मुस्कुराना पड़ता है, गम हो या खुशी हो, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए इंसान को जीवन में। और एक मुस्कुराहट बहुत सारी खुशियां लाती है,
0: एक मुस्कुराहट बहुत सारी खुशियां लेके आती है।
1: दूसरे को खुशियों से सराबोर कर देती है मुस्कुराहट।
0: ये बात है, बात तो बिल्कुल आपने अपने अंदाज में कही है। और साथ ही साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज हमने अपने सुविचार में बताया था कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, तो आपको क्या लगता है जैसे उसका कोई विकल्प नहीं होता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने रिश्तों का ध्यान रखना, परिवार का, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो कर रही करना है, इसको लेकर आप
1: तो
0: क्या मानते हैं?
1: जी ये बहुत ठीक कहा है आपने। और परिवार में जब हम लोग रहते हैं तो सभी का ख्याल करना चाहिए, और कोई भी बाधा आए, कोई भी परेशानी आए, तो उसको समझदारी से हल करना चाहिए कि ताकि परिवार में विघटन ना हो, बिखराव ना हो, और आपस में भाईचारा बना रहे
0: जी,
1: और सभी से प्यार मोहब्बत बनी रहे। यही इंसान का सबसे पहला ये होना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो ये बात जो आपने कही है कि कोशिश होनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर चले, थोड़ा सा झुकना भी इसीलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो आप थोड़ा सा डाउन पड़ जाते हैं, आप थोड़ा सा कूल रहते हैं ताकि चीज़ें बिगड़े ना। गुस्से में सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ ही होता है, और हर तरफ होता है, हर तरफ होता है। तो ये बहुत अहम बात कही, और बहुत अच्छे से आपने जो शुरुआत की उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और एक बार वापस से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद आपको।
0: जी थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए विजय जी। सो भाई पचपिड़वा से हमारे विजय पांडे साहब थे जिन्होंने हमसे बातचीत किया, आज संडे स्पेशल शो में कॉल मिलाया। कॉलिंग का नंबर तो वही है 6693316429। ये नंबर है और इसी पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
2: निशा। सॉरी मैं आपको मैम कहने जा रही थी।
0: अरे बोल दीजिए, अगर आपको खुशी मिलती है तो हम सुन लेंगे, हमें कोई मसला नहीं।
2: निकलने जा रहा था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन सी मैम को याद कर रही थी कि मुंह से मैम निकलने जा रहा था?
2: हमारे दिमाग में तो सब मैम है, आकांक्षा मैम है, अभिनेत्री मैम है, सिंपल मैम है, अर्बीना मैम है, अंकिका मैम है, संता मैम, सब हमारे दिमाग में है।
0: सब आपके दिमाग में है कि सब अपने अपने घर पे?

0: सब को हम याद करते हैं, इसलिए मैं उससे निकलने जाना था, लेकिन लेकिन लगा कि आप तो आते हैं संडे को आते हैं।
1: हम संडे को आते हैं, और बाकी दिन कहाँ रहते हैं?
0: आते हैं पर कौन खाली संडे को होती है।
1: हाँ तो ऐसा बोली रहे, नहीं तो सब सोचेंगे कि ये बाकी दिन क्या हमारा कोई कॉपी रहता है क्या जो करता है शो।
0: नहीं बाकी दिन आते हैं पर कॉल नहीं होती, कॉल तो संडे वाले दिन।
1: हाँ हाँ कॉल तो संडे वाले दिन होती है, बिल्कुल सही बात है। आपने नाम नहीं बताया अपना। निशा,
0: सर निशा।
1: हाँ नहीं सर तो निशा नहीं है, सर का नाम तो अदनान है, कोई बात नहीं। वैसे ये बताइए
0: सर, जो हमने क्या सर?
1: नहीं नहीं नहीं बोलिए बोलिए बताइए
0: जी सर। जब से हमने सुना कि अरे फोन पे रेडियो हो गया, तब से हम रोज सुनते हैं।
1: अरे वाह, और कहाँ से सुनती हैं आप? गोंडा से हैं या कहीं अलग से?
0: गोंडा से।
1: गोंडा में आस पास यही शहर से ही सुन रही हैं आप या थोड़ा दूर से सुन रही हैं?
0: नहीं शहर ही से, गोंडे के अंदर से।
1: अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैसे लगते हैं आपको? हाँ
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी बहुत जानकारी से मिलती है ना।
1: अरे वाह बहुत अच्छी बात।
0: पहले
1: है
0: जो बाजे पे आता था फोन पे नहीं आता था, आपके फोन पे आ गया तो हम लगभग एक साल से सुनने लगे हैं।
1: अच्छा फोन पे चपकी आ रहा है तो इसलिए अब आपने एक साल से सुनना शुरू कर दिया है।
0: मुझे पता नहीं था, जब मुझे पता चला है तो हम तब से सुनना शुरू कर दिए हैं।
1: वाह क्या बात है निशा, बहुत बढ़िया।
0: स्टोरी में सुनते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम रोज सुनते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा निशा अगर आपसे भी कुछ सवाल करे तो उसका जवाब आप देंगी?
0: अगर देना वाला होगा सर तो हम कोशिश करेंगे देंगे।
1: हम ऐसे ही सवाल करेंगे ना जिसमें जवाब दिया जा सके। मतलब वही बात है, सवाल क्या है, मतलब यही आपसे पूछना था कि आपके लिए जरूरी क्या है, मतलब जिसके लिए आपको सोचना नहीं और आपको बस करना ही करना है। तो जैसे हमने बताया था कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने रिश्तों का ध्यान रखना।
0: सर हम अपने का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार वालों का ध्यान रखते हैं बस, और जिसे हम खुश रहना चाहते हैं और एक दूसरे को भी खुश रखना चाहते हैं।
1: आप अपने लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह को, फैमिली में, है ना?
0: फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं, दोस्त फ्रेंडों को भी खुश रखना चाहते हैं।
1: अच्छा तो कभी कुछ
0: हमारा रेडियो भी खुश रहे, परिवार भी खुश रहे।
1: रेडियो कैसे खुश रहेगा?
0: रेडियो का परिवार जो है यानी स्थिति, वो भी सब खुश रहे।
1: हाँ अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो निशा कुछ सुनाएंगी गाना वगैरह आप?
0: जी सर सुना दें।
1: हाँ हाँ प्लीज सुना दें, प्लीज सुना दें।
0: अंगना में बाबा दुआरे पे मां, अरे अंगना में बाबा दुआरे पे मां, हम कैसे आए गोरी तोहरे घर मां, हम कैसे आए गोरी तोहरे घर मां। खेत गयल बाबा बाजार गयल मां, खेत गयल बाबा बाजार गयल मां, अकेली हो घर में आज बाल मां, अकेली हो घर में आज बाल मां। अरे घर में जो आई दे तो हम काका खिलाई दे, गरम गरम हलवा अलके पकाई दे, गरम गरम हाथा से तू खा जा बाल मां, अकेली हूँ घर में तू आ जा बाल मां। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे गोरी के घर में दरवाजा नहीं है क्या? वो सवाल पूछ रहा कैसे आए घर में। अच्छा गाना है ये, हमें लगा वो बारिश के बाद जो रास्ता खराब हो गया इसलिए ऐसा कह रहा है।
0: नहीं रास्ता तो यहाँ गोरी में खराब है, हमारे मोहल्ले में रास्ता है ना सड़क, वो खराब होती है।
1: अच्छा अच्छा
0: बारिश होती है तो भर जाती है तो बाइक आगे नहीं जाने में दिक्कत होती है।
1: तो कभी ऐसा लगा है कि आपको लगता है बाइक अब उठा के ले जाना पड़ेगा सर के ऊपर?
0: नहीं नहीं ऐसे हम चलाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा निशा आपसे बात करके, और अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया।
0: मैं चाह रही है ना इसलिए मुझे कॉल करना पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन
0: नहीं जाती पर आपके पास पहुँच नहीं पाती है।
1: अच्छा ओके
0: थैंक यू
1: सो मच,
0: थैंक यू सर।
1: नहीं बना दिए मैम।

0: हैप्पी नवरात्रि सृष्टि आपको भी। और आज जो है वो नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, घर पे जरूर कुछ हलचल चल रही होगी, क्या हो रहा है?
1: बहुत हलचल चल रही है। 2 दिन से तो पहले हम ही बीमार पड़े थे, फीवर हो गया था वायरल।
0: फीवर हो गया था आपको?
1: हाँ सर, बहुत ज्यादा।
0: अरे तो अभी कैसी हैं आप?
1: अभी तो मैं ठीक हूँ, और फिलहाल कल तो वो था मानसिक दिवस था, तो मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ, इस समय मेरी मेडिसिन चल रही है।
0: अरे ऐसा क्यों इतना ज़्यादा परेशान है? खैर बात तो सही है कि आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती तभी आप ऐसे होते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा, हम लोग साथ में हैं आपके सबके।
1: यस सर, अभी तो मैं ठीक हूँ थोड़ा बहुत, बाकी बीच में बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे, जिससे कि मेरे को गुस्सा बहुत आता था, बहुत कुछ चीज़ें हो गई थी मेरे साथ।
0: तो जब से मेडिकेशन स्टार्ट हुआ है, दवाएं आपने लेना शुरू किया है, उसके बाद से आपको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है?
1: बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ है, और अभी तो थेरेपी चल रही है मेरी।
0: ओके, डॉक्टर की तरफ से क्या क्या एडवाइस थी, क्या करना है आपको थोड़ा सा मेंटली अच्छा
1: रखना? उन्होंने बोला कि आपको हैप्पी रहना, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, आप घर में अकेले मत रहिए, जैसे कि आप बाहर के लोगों से घूमिए मिलिए, हर चीज करिए, तो आप थोड़ा अच्छा माइंड
0: करेंगी। तो फिलहाल सृष्टि ने क्या क्या प्लान्स बनाए अपने लिए, कैसे वो खुद को इन चीजों से निकालने वाली है, क्या है आपने
1: अभी
0: क्या
1: तो
0: सोचा?
1: मैं रोज नोट्स बनाती हूँ।
0: अच्छा,
1: सिचुएशन, बिहेवियर, ये सब करके तो उनको नोट्स देना रहता है मुझे डेली का।
0: अच्छा ओके,
1: तो अभी तो मुझे फायदा है, बाहर से डॉक्टर आते हैं तो देखेंगे। अभी 14 तारीख को मेरा वो है
0: अपॉइंटमेंट
1: दिखाना।
0: ओके, तो कल हमने चूंकि बात भी की थी, कल का दिन भी ऐसा था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे, आज आपने कहा कि फिलहाल मेडिकेशन है, और जब कभी कोई किसी को आप बताते हो ऐसा, तो लोगों की प्रतिक्रिया पहली क्या होती है, क्या रिएक्शन रहता है?
1: लोगों को लगता है कि मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, पर वो क्या जाने कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी को बताती तो हूँ नहीं जल्दी, मैं खास लोग को ही बताती हूँ। सविता आंटी को भी मैंने बता रखा है, तो उन्होंने बोला कि मैं भी आ चुकी थी इस तरह डिप्रेशन में, अब तो मैं ठीक हूँ, तुम भी मतलब सब लोगों से अच्छे से रहो, खुलो मिलो, बात करो सबसे, तो ठीक हो जाओगी। हमने कहा ठीक है आंटी।
0: तो बिल्कुल, उन्होंने भी अपनी स्टोरी हम सभी लोगों से साझा किया था, और आपने बताया है बिल्कुल सही है कि पहला रिएक्शन अक्सर ये होता है कि अरे ये क्या ही होता है, डिप्रेशन क्या होता है, बिला वजह इतना टेंशन ना लो, बाहर आ जाओ। लेकिन ये एक बीमारी है, बिल्कुल वैसी जैसे आप कहो बुखार है, तो कोई ये नहीं कह सकता क्या मजाक कर रहे हो, बुखार कहाँ हो सकता है, अरे बिल्कुल हो सकता है उसी तरह। बिल्कुल, तो मुझे भी लगता है ये एक नॉर्मल बात है और किसी को भी हो सकता है, और इसके ट्रीटमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों?
2: हेलो
0: जी
2: जी, वो कॉल कर गई, हम आ गए।
0: ओके ओके, ऑलराइट। सो
2: नमस्ते
0: नमस्ते, अपना नाम बता दे हमारे श्रोताओं को।
2: बादल बोल रहे हैं।
0: अच्छा बादल गुल जी, आपका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है फीडबैक वापस, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप दूर हट जाएं।
2: आवाज़ तो फिलहाल नहीं आ रही
0: है। अच्छा, मुझे रिपीट आ रही है थोड़ा सा।
2: अब देखिए अभी आ रही है कुछ,
0: ठीक है, काफ़ी कम हो गई। कैसे हैं आप?
2: बस अच्छे हैं, अपना बताइए।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: आज नवरात्रि के साथ साथ महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर्व भी है, उसकी भी शुभकामनाएं।
0: हाँ, आपको भी महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने थॉट सुना था आज का?
2: नहीं, हम देर से सो के देर से उठे।
0: हाँ ये हाल है, नवरात्रि का पहला दिन है और ये देर से उठ रहे हैं, ये देखिए
2: जो सोवत है वो खोवत है,
0: बहुत बड़ा खुवत है थॉट ऑफ द डे।
2: क्या था थॉट ऑफ द डे?
0: नहीं, अब बताने का क्या मतलब रहेगा?
2: अरे सर बता सकते,
0: खुद ही आपने बोला।

0: सोवत है वो खोवत है।
1: हाँ तो हमको बताए जो सोवत है वो खोवत है।
0: तो खो चुका है
1: आप चलिए ना ही बताइए, लेकिन महाराजा अग्रसेन का एक थॉट था।
0: अरे वाह,
1: वो अपने समुदाय अपने राज्य में आने वाले जो आश्रित थे उनको सभी परिवार की तरफ से एक रुपए और एक ईंट का सिद्धांत उनका था वो देते थे ताकि वो अपना घर बना सके और अपना व्यापार कर सके।
0: अरे वाह वाह,
1: तो ये भी एक हार्ट उनका था बहुत उत्तम।
0: हाँ।
1: जो भी लोग उनके राज्य में आते थे उनको एक रुपए और एक ईंट सभी परिवार जो पहले से वहां पर थे वो देते थे, जिससे कि वो एक ईंट से अपना मतलब घर और एक रुपए से अपना व्यापार शुरू कर सके।
0: वाह, मतलब इसमें तो ऐसा लगता है जैसे कि एक समुदाय की ताकत क्या होती है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं।
1: समाजवाद।
0: जी,
1: इसको समाजवाद की श्रेणी में रखा जाता है कि आप सामाजिक रूप से लोगों की कितनी मदद करते हैं।
0: कितनी मदद करते हैं, सही बात है। और जरा सोचिए अगर हजारों लोग रह रहे हैं और हजार ईंटे आ गए और हजार रुपए आ गए, मतलब उस जमाने के हिसाब से, तो आपका मकान भी बन गया और पूरा बिजनेस चल गया।
1: जी
0: वाह, और किसी पे बोझ भी नहीं,
1: किसी पे कोई बोझ नहीं।
0: वाह क्या बात है,
1: बहुत। क्षत्रिय के बाद मतलब क्षत्रिय धर्म में थे, बाद में उन्होंने बलि प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने वैश्य धर्म अपनाया था। द्वापर के अंत में इनका जन्म माना जाता है।
0: अच्छा,
1: और ये भगवान राम के पुत्र कुश के 34वें वंशज हैं। वहीं से उन्होंने अग्रोहा धाम इंसार में हरियाणा में जो स्थित है वहां पे इन्होंने अग्रोहा राज्य की स्थापना की और वहीं से अग्रवाल समाज की स्थापना इन्होंने की।
0: बहुत अच्छा, बहुत खूब जानकारी है आपको भी, और बड़ी अच्छी बात बताई वो एक रुपए और एक ईंट के सिद्धांत के विषय में, बड़ा अच्छा लगा। तो आज कुछ सुनाना भी चाह रहे हैं आप? बहुत वक्त हो गया आपसे कोई नगमा कोई गाना नहीं सुना हमने।
1: नगमा गाना हमको याद ही नहीं रहता है, तो कहाँ सुनाए।
0: क्या याद रहता है?
1: बस यही सब याद रहता है।
0: अच्छा, यही सब
1: हिस्टोरिकल चीज है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: गाने नहीं याद होते हैं साहब।
0: बहुत अच्छा, लेकिन जो आपने बताया है वो काफी अच्छा हम लोगों को पसंद आया है। एंड थैंक यू सो मच एक बार वापस से आपको। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बादल जी।
1: सभी श्रोताओं को अग्रवाल समाज को अग्रसेन जयंती की हार्दिक बधाइयां।
0: बहुत शुक्रिया आपको भी, थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद।
0: सो भाई अब फिलहाल चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं भाई अगले कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
2: अमिता बच्चन।
0: अमिता
2: बिग्बी।
0: मुझे बचपन का वो नाम याद आ गया, लोग अमिताभ को अमिता ही बोलते थे, अमिता बच्चन।
2: सर, अमिता भी सही है।
0: मतलब एक बार हम लोग, हमारे एक गुरु हैं फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने हमसे जब मिले थे और बातचीत, हम तीन चार लोग खड़े थे, तो उन्होंने हमसे यही कहा था कि कभी ध्यान दिया है लोग अमिताभ को जल्दी में क्या बोलते हैं? हमने कहा सर अमिताभ बच्चन, कि नहीं ये तो तुम बोलते हो, लोग अमिताभ बच्चन को जल्दी में अमिता बच्चन बोलते, आ म ता तपरा की मंत्रा अमिता बच्चन। तो ये विकृति हो जाती है।
2: बड़ा फिट नाम दिया
0: है ना।
2: ये सही है, चलता है।
0: जल्दी बोलना है, बोल करके निकल जाना है तो यही बोल दे अमिता बच्चन। अच्छा चलिए भाई,
2: लेकिन सर इधर तो आपका दोनों मकसद पूरा हो गया, जल्दी से और एक नाम भी सही है,
0: नाम भी सही, नाम भी सही है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा आपने, स्वागत है आपका अमिता बच्चन जी। गुड मॉर्निंग,
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा स्वागत करने के लिए।
0: थैंक यू। नहीं वो तो मजबूरी करना पड़ जाता है। फिर हम ये कह रहे थे कि ये बताइए कि आपने आज का थॉट सुना था?
2: हाँ सुना था।
0: अच्छा, तो क्या जरूरी है आपके लिए?
2: अरे सर, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सुनना।
0: नहीं नहीं मतलब सच्ची वाला मैं पूछ रहा हूँ, ये तो चलिए अच्छी बात है, ये तो आप सुनते हैं अलग से, ये बहुत अच्छी बात है।
2: ये भी सच्ची वाला ही है।
0: अच्छा ठीक है, इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज है जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये तो हमको करना ही करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना नहीं कि इससे मिलेगा क्या, ये करना ही करना है, ऐसी कौन कौन
2: सी? फैमिली में हो गया, कोई बात हो गई या कुछ हो गया तो मतलब उसको नजरअंदाज करना ही करना है हमको, और कोई गुस्से है कुछ भी है तो अगर हम बड़े हैं तो भी छोटे हैं तो भी अगर हमारे झुकने से स्थिति सब नॉर्मल हो जा रही है तो हमें झुकना ही झुकना है, कुछ उससे सोचना नहीं है, और रिश्तों के निभाने के लिए फिर हमें तो झुकना ही झुकना है।
0: रिश्तों को बचाए रखने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपने कहा होना जरूरी है। हाँ ये होता भी है और ये बात भी सच है, क्योंकि चीजों को बर्बाद करने के बाद में एहसास होता है, इससे बेहतर है कि आप पहले ही भैया उस चीज को, चीजों को नर्म करके छोड़ दें वहां पे, उससे ज्यादा बात ही ना बढ़े। बात सही है। तो क्या सुनाने वाली हैं आप?
2: और हमारे लिए तो सबसे ज्यादा मतलब रिश्तों को बचाने के लिए भी झुकना है, बात करना है, सबके संपर्क में रहना है, फैमिली में भी अच्छे से रहना है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो रेडियो है, आप कैसे है ये भी सुनते रहना है, डांट पड़ेगी फिर भी सुनते रहना है।
0: वाह क्या बात है,
2: क्योंकि इसके लिए भी ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और सब पता है इसी चक्कर में ना अभी जब मौसम खराब था तो हमने क्या जाओ जो मोटा वाला सेल नहीं मिलता था बैटरी वो टूट रही थी मार्केट में, लाइट आ रही नहीं थी तो रेडियो का चार्ज कैसे करूँ, वो नहीं मिली तो हमने बोला वो पतला वाला ही ला दो, अब पतला वाला मंगाया तो 30 रुपए का मंगाया तो हमने लगाया रेडियो में तो वो छोटा पड़ गया, 3.5 सेल लगना चाहिए था और वो तो 3 ही था, फिर क्या करी हमने लाइट का तार थोड़ा सा तोड़ के रखा उसमें से नाप के, फिर लाइट का तार लगा के उसने अखबार से एकदम टाइट करके सब कुछ फिट किया, अरे फिर भी लॉस हो गया, वो तो सेल में कोई करंट ही नहीं था लगता था, जितनी बैटरी चार्ज थी उतना ही चला रेडियो।
0: ऑलराइट चलिए ये तो अच्छी बात है, आप मतलब आपने बताया कि क्या डेडिकेशन है आपका इस रेडियो को सुनने को लेकर के, थैंक यू सो मच अनु ये बताने के लिए और हाँ
2: बोली
0: और कॉल करने के लिए।
2: अरे अभी तो मेरे को सुनाना भी है।
0: हाँ जल्दी से सुनाइए क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे।
2: जल्दी बोल जाओ। एक दिन उन्नति मैम ने हमसे क्या बोला कि अनु जल्दी से जवाब देना है, तो हमने जल्दी से दे दिया तो मैम ने बोला रही कि अभी जल्दी नहीं बोलना था।
0: नहीं नहीं आप जल्दी बोल सकते हो।
2: हिट पे हिट है, हिट पे हिट है, बंदा सुपर शो में फिट है, हिट पे हिट है, सुपर शो में बंदा फिट है।
0: वाह लेकिन ये था किसके बारे में?
2: ये तो आपके बारे में था।
0: अरे गजब भैया, थैंक यू सो मच, वाह बहुत बढ़िया लाइन थी, बहुत बढ़िया लाइन थी, अभी इसको हम नोट कर
2: लेंगे। आपने कहा जल्दी से सुना तो हमने कहा जल्दी से बस थोड़ा सा सुना देते हैं।
0: नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लिटरली मजा आया। थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए और इतनी बेहतरीन लाइंस डेडिकेट करने के लिए।
2: ओके सर बाय
0: बाय बाय टेक केयर। तो भाई ये तो थी अनु जिन्होंने हमसे बातचीत किया। अब चलेंगे अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं भाई अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद और क्या है उनको कहना। राइट हाँ जी हेलो जी
3: नमस्ते सर।
0: नमस्ते
3: हसीना भी बंसुरी बोल रही पालदाना का इंदौर से।
0: जी जी जी जी हसीना जी कैसी हैं आप?
3: अच्छे हैं आप कैसे सर?
0: बहुत बढ़िया, आप जब बात करते हैं ऐसा लगता है बहुत पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बात आप कर रहे हो अच्छा लगता है
3: जी, और अमिताभ बच्चन जी को हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: अमिताभ बच्चन या अमिताभ बच्चन
3: वो सभी एक ही है शब्द मान लो।
0: नहीं मतलब भैया अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना अनु के साथ कि भाई इनका जो नाम है हम लोग बचपन में अमिताभ नहीं बोलते थे, अमिताभ बच्चन बोलते थे, अमिताभ
3: अमिताभ बच्चन ही बोलते थे सर पहले बचपन में, अब अमिताभ बच्चन बोलते हैं।
0: बिल्कुल, तो आज अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू अमिताभ बच्चन साहब। और ये बताइए कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद है अमिताभ बच्चन साहब का?
3: मेरे पास माँ है पैसा है तेरे नहीं, मेरे पास बंगला है गाड़ी है माँ तेरे पास क्या है, वो बोलता ऋषि कपूर मेरे पास माँ है।
0: आए चलिए मेरे पास अगर हम बताते
3: और,
0: हैं
3: हाँ। और बोलते दद्दू तुम नमक हलाल में बोलते दद्दू तुम
0: अच्छा बहुत बढ़िया।
3: आप बताइए सर, आप बोल रहे थे ना।
0: हाँ, मतलब मैंने कहा कि मेरे पास जो है कई सारे कॉल्स हैं, स्टूडियो है, माइक है, आवाज बाहर ना जाने के लिए बहुत सारा सिस्टम है, आपके पास क्या है?
3: अच्छा, आप अपनी तरफ से बोल रहे कि मेरे पास स्टूडियो है, माइक है, बोलने के लिए सब कुछ, आपके पास क्या है? हमारे पास आप जैसे उद्घोषक हैं।
0: अरे देखा, ये इंदौर वाले हर चीज में फर्स्ट आना जानते हैं। वाह, क्या बात है, मतलब लिटरली बहुत मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा आपने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी है कि भाई ये जो रिस्पॉन्ड था बहुत सटीक था। और होता भी है कि जब हम कोई बॉलीवुड का डायलॉग बोल रहे होते हैं तो समटाइम्स जब अपने पे हम रखते हैं तो ऐसा लगता है ये रियलिस्टिक भी थोड़ा सा हो रहा है हमारे जीवन के आसपास, हालांकि ज़्यादातर से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में रखने में बड़ा मज़ा आता है। उन डायलॉग्स को जब हम रख करके एक्सप्लोर करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, तो हमको थोड़ा सा सेंस आता है कि हाँ, ये चीज़ें बेहतर है, ये चीज़ें ऐसी हैं, तो उनको हम कर पाते हैं, एंड डेफिनेटली ये चीज़ें हो ही जाती हैं। सो फिलहाल चलिए एक बार वापस से हम बढ़ रहे हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, और देखते हैं कि अगली कॉल पर कौन होने वाला है, क्या कहने वाला है, क्योंकि आज है संडे स्पेशल शो। जी हाँ, हाँ जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दें कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं। एक सेकंड, आपकी वॉइस अभी फ़िलहाल नहीं मिल पा रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। हाँ जी बताइए।
4: ये वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी सर।
0: हाँ हाँ जी, अभी आ रही, अभी आ रही है।
4: हाँ
0: जी जी जी, प्लीज
4: अपना। मैं आसिफ बात कर रहा हूँ
0: जी,
4: तेलंगाना हैदराबाद से।
0: तेलंगाना हैदराबाद से आसिफ साहब, आपका सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप?
4: जी अच्छे हैं, अपने बताइए सर, आप क्या कहें?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग सुनना है आपसे। क्यों सुनना है पता है ना आपको
4: सर? वो तो अभी नहीं पता, क्योंकि हम शॉप के लिए निकले थे और सुन नहीं पाए।
0: अब आप सोचेंगे हम शॉप के लिए निकले थे, बताओ, हमने तो मोहब्बत में कॉल किया था, इन्होंने जाते ही सबसे पहले सवाल दाग दिया।
4: अरे सर, उसके लिए माफी चाहते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है कि आज अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे है, बस।
4: जी जी, बर्थडे तो है, वो तो मालूम है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, तो बस इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब का हमको डायलॉग सुनना है जो बढ़िया वाला आपको लगता है।
4: हीरा बेटे वाला अच्छा लगता मेरे को।
0: बताइए बोलकर।
4: सच में सर।
0: कैसे कैसे बोल के बताइए।
4: बोलने में मेरे को हाथी आ रही सर।
0: कोई बात नहीं, डायलॉग ही तो है, अमिताभ बच्चन साहब से हम माफी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, आप बोलिए।
4: अरे
0: इंतजार कर रहे हैं।
4: अरे सर, हाथी आ रही मेरे को।
0: एक बार, एक बार, एक ट्राई, जस्ट वन ट्राई।
4: हीरा बेटे, ऐसे करके कुछ है डायलॉग।
0: अच्छा अच्छा, कोई और डायलॉग याद है आपको इनका?
4: इनका डायलॉग इतना याद नहीं है मेरे को।
0: अच्छा, इतना ज्यादा याद नहीं
4: है, याद रहता है।
0: और अगर
4: मेरी मौत का समय आता था।
0: अरे वो तो पाटेकर साहब का है।
4: हाँ, उनका याद रह रहा है, क्योंकि वो डायलॉग में तो नंबर वन है।
0: हाँ, नो डाउट, उनके डायलॉग्स तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत फेमस भी है।
4: जी
0: बिल्कुल सही बात है। तो अपना हालचाल बता दें, कैसे हैं आप?
4: जी अच्छे हैं सर।
0: अच्छा, तो अभी शॉप के लिए आप निकले हैं घर से?
4: जी,
0: शॉप जाने के लिए निकले हैं अभी आप घर से?
4: जी सर।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
4: एक्चुअली संडे को छुट्टी होती थी, लेकिन दशहरे का सीजन चल रहा है तो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है।
0: तो ये
4: दम कर रहे
0: हैं। एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है?
4: नहीं मिलता है सर।
0: हाँ, तब तो ठीक है फिर। चलिए, तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ, हाँ, बिजनेस में क्या होता है ना, सीजन का होता है कि सीजन के हिसाब से चीजें फिर मिल जाती हैं।
4: वही वही
0: बिल्कुल। और बहुत सारी मुबारकबाद आपको और बहुत सारी दुआएं आपके काम को लेकर, आपके भविष्य को लेकर के।
4: थैंक यू सर,
0: थैंक यू सो मच आसिफ साहब कॉल करने के लिए।
4: थैंक यू
0: सर, थैंक यू। सुबह लगातार हम बातचीत करते जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लगातार कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आइए, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन के हैं और उनको हमने अक्सर सुना है और बहुत ज़्यादा आइकॉनिक डायलॉग्स भी हैं। तो कौन कौन से हैं ये तो खैर हम आपसे पूछने वाले हैं, क्योंकि आप इसका हिसाब किताब देने वाले हैं, क्योंकि आप ही बताएंगे ये आपको कौन सा याद है डायलॉग, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो।
5: जी हाँ जी
0: जी, अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
5: कि पापा मैं छोटे से बड़ा हो गया, कि पापा मैं छोटे से बड़ा हो गया, नहीं मांगूंगा पैसे अब आपसे, मैं खुद ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पापा मैं अब छोटे से बड़ा हो गया, बचपन की उन शरारतों में, मम्मी पापा की डांटों में, बड़ा मजा आता था मुझे बचपन की उन मुस्कुराहटों में, के पता भी न चला कितनी जल्दी ये हो गया, पापा मैं छोटे से बड़ा हो गया। जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते बड़े साहब आपको।
5: ये मैंने एक गीत है ना उसको उसको बदल के, देखिए वो गीत है एक, मतलब लड़की अपने मतलब पिताजी के लिए, मतलब वो बोल रही है कि मैं कितनी जल्दी बड़ी हो गई, जब मतलब उसके जीवन का वो चित्रण है उसमें, छोटे बचपन से बड़े तक का, जब उसकी शादी होती है और वो दूसरे के यहाँ जाती है, तो उसमें जिक्र किया है, वो एक गीत है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस गीत को थोड़ा सा पलट के, तो हमारे जो जैसे छात्र यानी कि जो हमारे दोस्त हैं, मतलब मेल साथी हैं, उनके लिए बना दिया मैंने।
0: तो फीमेल साथी से मेल साथी का बना दिया आपने?
5: हाँ जी जी जी,
0: सब कुछ प्रॉपर चेंज कर दिया है ना?
5: चेंज कर दिया
0: बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता आपके नाम को जानना चाह रहे हैं, भाई आप बता दीजिए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जी
5: बिल्कुल जानते हैं हमारे श्रोता, क्योंकि मैं जब भी हर बार आता हूँ ना कुछ नया नया लेके आता हूँ।
0: हाँ नहीं वो तो खैर सही बात है, आप जब भी आते हैं हमें लगता है आपके लिए भी एक गाना बनाना ही पड़ेगा।
5: क्या बात है, चलिए बना दीजिएगा।
0: हाँ मतलब हम इतने टैलेंटेड तो नहीं कि फौरन का फौरन बना दे, लेकिन बन जाएगा, थोड़ा समय लगेगा।
5: अरे जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ सर, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से। और वाकई में बचपन के वो दिन वाकई याद आते हैं, जैसे अभी मेरे दो बच्चे हैं तो इतने शरारते करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो हमें देख कर मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं।
0: सच में बच्चों को देख करके बचपन के दिन ही याद आ जाते हैं।
5: वैसे तो मैंने कहा चलो आज मैं कुछ लिख देता हूँ, और बैठे बैठे लिखना चालू किया और कॉल भी लगाना, एक हाथ से कॉल लगा रहा था, एक हाथ से कलम पकड़े हुए लिख रहा था।
0: ओह क्या बात है। देखिए ना हर इंसान में जब कोई बात कहते हैं तो उनके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वाओ क्या बात है।
5: और लिखने का बहुत शौक है सर, लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ, जब भी जहन में याद आता है फुर्सत के पल होते हैं। वैसे आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन तो भाई फुर्सत का दिन होता है, क्योंकि बाकी दिन तो फिर ड्यूटी पर रहना होता है, और फिर ड्यूटी से आके फिर समय का पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी घड़ी की जो सुई है वो घूम जाती है।
0: सही बात है।
5: जी हाँ।
0: नरेश साहब आपने अपने बचपन का तो चित्रण बता दिया, बच्चों को देख करके याद आता है, आप थोड़ा सा जवानी की तरफ अगर आए तो अमिताभ बच्चन साहब का कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है?
5: अच्छा हाँ। अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग?
0: हाँ जी हाँ जी, क्योंकि आज
5: एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सेंसा।
0: ओह माय गॉड, मैं डर गया।
5: बड़ा अच्छा डायलॉग है। और अमिताभ बच्चन साहब के तो वाकई में जितने भी डायलॉग है ना वो बड़े लाजवाब हैं और उनके डायलॉग तो सबकी जुबान पर बिल्कुल छाए हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन साहब के डायलॉग सुनकर और उनकी फिल्में देखकर। तो मान के चलिए कि उनकी जो बराबरी है वो तो कोई कर ही नहीं सकता।
0: अभी तो आपने किया।
5: नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता।
0: नहीं नहीं अभी तो आपने किया।
5: बस हम कॉपी कर सकते हैं। हाँ कॉपी जरूर कर सकते हैं बाकी उनकी बराबरी। और देखिए ना अभी जो कौन बनेगा करोड़पति आता है उनका, वाकई में सर मजा आ जाता है कौन बनेगा करोड़पति में। जो सवाल रहते हैं वो बड़े घुमा फिरा के पूछे गए सवाल होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो शो मेरा फेवरेट शो है कौन बनेगा करोड़पति।
0: अच्छा तो आपके फेवरेट शो से जुड़ा एक सवाल हम कर सकते हैं क्या?
5: हाँ जी जी जी करिए करिए सर, यदि आएगा तो बता देंगे।
0: जी जी तो जैसे आपने कहा जो उसमें सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े घुमा करके बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है।
5: जी जी
0: लेकिन एक मेरा सवाल ये कि जो उसमें राशि जीत के जाता है कैंडिडेट जो आता है, तो जब वो जीत के जाता है उसको जब पैसे का चेक दिया जाता है तो आपके अंदर की एक्चुअल फीलिंग क्या होती है? थोड़ा सा जेलस होती है?
5: बिल्कुल एक्चुअल फीलिंग ये होती है कि काश मैं भी होती पे जाके बैठूं। और पता है जब वो सवाल पूछते हैं ना तो हम यहाँ बैठे बैठे अंदाजा लगा लेते हैं, यदि हमें पता होता तो हम तुरंत से बोल देते कि इसका आंसर ये है।
0: वाह क्या बात है, मतलब आप अपने बच्चों के साथ मिलकर के अंदाजा लगा लेते हैं।
5: जी जी जी
0: वाह क्या बात है। तो मतलब कहीं नहीं जलन जलन तो नहीं होती ना देख करके कि इतना बड़ा अच्छा कितना
5: नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं ये तो मेरे अंदर है ही नहीं सर। अच्छा। ये तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कोई जैसे जो भी कर रहा है वो अपनी मेहनत के बल पे कर रहा है, तो हमें इसमें जलन होने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो भी अपनी मेहनत से कमाता है वो उसकी मेहनत होती है। यदि हम में भी वो काबिलियत है और हम भी उनके जैसा कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि करो कुछ ऐसा कि कर ना पाए कोई आपके जैसा।
0: क्या बात है। तो चलिए
5: ऐसा ही करना है हमें। और दीवार फिल्म में एक डायलॉग और है जो है ना, आज मेरे पास बंगला है गाड़ी है बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या है
0: केबीसी
5: पास माँ।
0: अच्छा।
5: तो अमिताभ साहब ये बोलते हैं और शशि कपूर उनका जवाब देते हैं ना।
0: मेरे पास और माँ है।
5: अग्निपथ का एक डायलॉग बड़ा लाजवाब रहा उनका, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान बोलते हैं ना वो।
0: अच्छा अच्छा।
5: और एक डॉन का डायलॉग था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। कालिया कालिया में बोलते हैं हम जहाँ खड़े होते हैं ना लाइन वहीं से शुरू होती है।
0: वाह आपको तो मूवी नेम के साथ में याद है डायलॉग्स, वाह क्या बात।
5: बिल्कुल ये जो फिल्में हैं ना उनकी, वाकई में ये फिल्में जितने भी लोग देखते हैं वो डायलॉग तो उनके बिल्कुल जहन में घुस ही जाते हैं, क्योंकि ये है प्रैक्टिकली चीजें होती है, कुछ चीजें होती है रटी हुई चीजें तो वो भूल जाते हैं लोग, लेकिन जब हम वहाँ थिएटर में जाके फिल्म देखते हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री पूरा सीन होता है वो आंखों के सामने आ जाता है, जब भी कब इस तरह का होता है तो फिर वो पता चल जाता है।
0: बिल्कुल।
5: तो जैसे आपका ये प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम जैसे जो श्रोता पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुनेगा तो उसको पता रहेगा, चाहे वो कोई सवाल वाला आपका प्रोग्राम हो जिसमें आप सवाल पूछेंगे, पहले कुछ वार्ता आप सुनाएंगे श्रोताओं को, चाहे वो कृषि जगत का कोई कार्यक्रम हो या एक्सवाइजेड कोई भी कार्यक्रम ले लीजिएगा, तो जब वो ध्यान से सुनेंगे तो उनके जहन में रहेगा कि हाँ कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, तो उस तरह से जवाब फिर दे दिए जाते हैं। तो चलिए चलते चलते कुछ और चंद पंक्तियां मैं बता देना चाहता हूँ जो मेरे खुद के द्वारा लिखी हुई थी।
0: बिल्कुल।
5: कि पहले मैं किस तरह का था और आज कैसा हूँ, ठीक है ना। कि एक जमाने में मैं भी हुआ करता था अपने गांव का दादा, एक जमाने में मैं भी हुआ करता था अपने गांव का दादा, और अब हालत ये हो गई कि रह गया हूँ आधा। एक जमाना था मैं भी दीवाना था और वो बड़ी बेवफा थी मैं अनजाना था, कि जिसका जीवन था बिल्कुल सीधा सादा, मेरी चाहत थी वो और नाम था उसका राधा।
0: क्या बात।
5: जिसके चक्कर में अधूरी रह गई मेरी पढ़ाई, और हम तो यही धरे धराए रह गए, वो हो गई पराई। जैसे ही कालिक चक्र ने ली अंगड़ाई, और उसके घर वालों ने कर दी उसकी कहीं और सगाई। जैसे ही ये मनहूस खबर मेरे कानों तक आई, और ना तो अब मुझको पानी भाए, ना ही मेरे मुझको रोटी भाई।
0: वाह।
5: के छोड़ के अपनी दादागिरी, मैं भी बन गया अब सीधा सादा, हे प्रभु अब मत देना मेरे जीवन में दोबारा कोई रास्ता। तो ये एक हास्य कविता थी जो कि मेरे खुद के द्वारा लिखी गई।
0: क्या बात है, बहुत बहुत लाजवाब, बहुत शानदार नरेश जी, बहुत बढ़िया लिखा आपने। और मैं भी दुआ करता हूँ कि सच में अब कोई आए आए ना, नहीं तो बस लफड़े हो जाएंगे आपके साथ।
5: नहीं अब नहीं आया, अब तो मेरे साथ ज्योति है ना।
0: अच्छा, ज्योति, जिंदगी की ज्योति, उम्मीदों की ज्योति।
5: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत शुक्रिया एंड बहुत अच्छा लिखा, थैंक यू सो मच।
5: अच्छा, मैं आपको ये जो कविता की पंक्तियां सुना रहा था ना, तो उसको जलन हो रही थी धीरे धीरे।
0: होगी, हो सकता है अभी कॉल रखते ही दो चार बार भी हो जाए।
5: चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके।
0: मुझे भी, बहुत शुक्रिया नरेश जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। क्या बात है भाई, देखिए हमारे नरेश जी जो हैं वो कितने बेहतरीन तरीके से बता रहे थे। और फिलहाल अब वक्त है अगले कॉलर की तरफ चलने का, और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो।
6: हेलो, वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
0: ऐसा लग रहा है कि कोई संगीत सुन रहा हूँ मैं।
6: वेरी वेरी वेरी लग तो रहा है कि संगीत सुन रहे हैं आप।
0: बहुत बढ़िया, अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
6: सर वैसे बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं।
0: अच्छा, रहने दीजिए। मैं अंदाजा लगाता हूँ।
6: जी जी,
0: आप रोशनी रावत जी बात कर रही हो?
6: जी सर।
0: देखा, मैंने कहा था अंदाजा सही होगा।
6: अंदाजा सही है।
0: कैसी हैं आप?
6: मैं सर बहुत अच्छी, और आपसे बात हो जाए सुबह सुबह तो फिर क्या कहना, वही तो मैं कह रही हूँ, क्या कहना कि सुबह आपसे बात हो जाए और हम सारा दिन हंसते रहेंगे।
0: अच्छा,
6: हमारा तो दिन बन जाएगा।
0: थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे साथ एक डायलॉग रिपीट करिए पीछे आप, ठीक है?
6: जी सर।
0: रोशनी जी का इंतजार तो 11 रेडियो स्टेशंस कर रहे हैं।
6: रोशनी जी का इंतजार तो सारा रेडियो स्टेशन कर रहा है।
0: 11
6: हाँ,
0: फिर से बोलिए।
6: अच्छा, बड़ा हो गया ना डायलॉग सर, तो भूल गए।
0: अच्छा ठीक है, रोशनी रावत का इंतजार तो 11 रेडियो स्टेशन कर रहा है। अरे बोलिए तो, तभी तो मजा। अच्छा, आगे का आप बोल दिए, चलिए पहला मैं बोल देना, आगे का आप बोल दिए, ठीक है?
6: नहीं सर, मैं वो नहीं बोलूंगी, मैं दूसरा कुछ बोलूंगी।
0: अच्छा ठीक है, चलिए दूसरा बोलिए आप।
6: बुड्ढा होगा तेरा बाप।
0: क्या बात। वैसे पहले वाले डायलॉग को हम जरा कंप्लीट कर दे कि रोशनी रावत का इंतजार तो 11 रेडियो स्टेशंस कर रहे हैं, पर बट रोशनी रावत साहिबा तो रेडियो ज्ञान स्थली पर है। वाओ, क्या बात है। सो आप, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे भी रहती हैं अपने आसपास, आपके आसपास का माहौल बड़ा लाइट सा रहता है, am I right?
6: जी सर, यस सर।
0: मुझे लग ही रहा है, क्योंकि जो आपकी वाइब है, मतलब इतना अच्छे से मुस्कुराना, हंसना, चीजों को एंजॉय करना, मतलब लिटरली बहुत
6: ज्ञानस्थली का सर है असर हमारे ऊपर हो रहा है, जो आपका और हमारी उन्नति मैम जी का है, अनु जी का है, गुलासा जी का है, आसिफ भैया का, महेंद्र भैया का, इन लोगों के अच्छे तो ख्याल ही रहते हैं, तो अच्छा तो कुछ होगा ही।
0: बहुत ज्यादा ही असर ले लिया, कई जगह से लिया आपने। नहीं लेकिन सच में बहुत अच्छा है, मतलब आपको खैर जिसके भी सोहबत मिली हो, आपने सीखा हो, जाना हो, अभी आपने नाम भी बताया, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से यही है कि आपके लिए दुआएं कि ऐसी आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।
6: जी सर,
0: जी एंड थैंक यू सो मच टू यू रोशनी जी कॉल करने के लिए.
6: ओके सर, थैंक यू,
0: टेक केयर. सो भाई ये थी हमारी रोशनी रावत जी जिन्होंने हमसे बातचीत किया और लगातार हम कॉल्स पे कॉल्स लेते जा रहे हैं. फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल कहाँ से और किसकी है. हाँ जी हेलो.
7: हेलो आरजे अदनान सर, नमस्ते.
0: नमस्ते नमस्ते, ये पहचान वाली आवाज है, बड़ी प्यारी सी है. ये कभी खेत में काम कर रही थी, वक्त निकाल के पिताजी से अलग आके बात किया
7: था. आज भी मैंने बस लास्ट ये मानो 12 से 13 मिनट का ही वक्त मिला मेरे को.
0: ओ माय गॉड. राहुल जी आपका सबसे पहले तो दिल से बहुत शुक्रिया.
7: क्या करे सर, आपके लिए हमें अभी से मुकाबला करना पड़ता है प्रोग्राम में आने के लिए.
0: नहीं नहीं,
7: क्योंकि आप हमारे लिए एक टॉनिक का काम करते हो सर.
0: अरे थैंक यू. बहुत बहुत सारा प्यार आपकी तरफ से मिलता है राहुल जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके. सो आज
7: बीच में तीन या चार हफ्ते शायद मैं जुड़ नहीं पाया सर.
0: जी, जी, जी, जी.
7: अभी व्यस्तता बहुत है, अब तो लगभग मैं फ्री हो जाऊंगा, आगे तो इन फ्यूचर जुड़ता रहूंगा सर.
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो वक्त एक होता है ना पीक आवर्स जब आप काम कर रहे होते हैं, उस टाइम आपको सीजन का काम होता है तो ज्यादा होता है. बिल्कुल आई अंडरस्टैंड.
7: राइट सर.
0: तो राहुल जी आज अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे है, मुझे लगता है उनका कोई एक डायलॉग बोल करके आप उनको विश कर दीजिए.
7: उनके डायलॉग तो बहुत है सर. और कल रेखा जी का भी बर्थडे था शायद, कल
0: एक दिन पहले. अच्छा,
7: और आज क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का भी जन्मदिन.
0: हाँ हार्दिक पांड्या का भी जन्मदिन है, बिल्कुल सही बात है.
7: तो वो एक क्रिकेटर है और वो एक अभिनेता है.
0: हाँ
7: सेलिब्रिटी तो दोनों की अपनी जगह.
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप भी हैं हमारे रेडियो 89.6 एफएम पर.
7: नहीं सर, आप कब आ रहे हो हमारे राजस्थान झुंझुनू में, कब आ रहे हो आपकी राहों में कब से पलके बिछाए हुए थे.
0: उसको कहते ना अपनों राजस्थान, तो वो समझ लीजिए मेरा भी राजस्थान है. और जब भी आना होगा डेफिनेटली आपसे मिलने के लिए तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि जितना प्यार मिला है आपकी तरफ से मतलब मैं पक्का आने वाला हूँ वहाँ पे, पक्का.
7: जी सर, आपके प्यार को पंचनामा भी कई लोगों ने दे दिया है, लेकिन इतना कम होता है, लेकिन क्या करे, प्यार का पंचनामा ही हो गया सर ये.
0: नहीं सच में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अब ये एक मोहब्बत ही तो है कि आप वहाँ राजस्थान में इतनी दूर, हम यहाँ पे. लेकिन कहते हैं ना कि फिर दूरी कहाँ मायने रखती है जब कोई ऐसा लगाव ऐसा जुड़ाव होता है.
7: रिश्तों में दूरी मायने नहीं रखती है.
0: बिल्कुल सही बात है.
7: दूर भी अगर हमारा सच्चा रिश्ता है और हमें उसकी कदर है तो हम कहीं भी निभा सकते हैं सर.
0: बिल्कुल. एंड राहुल जी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है.
7: बताइए.
0: अभी तो बहुत कीमती वक्त आप लेकर के आए हैं, लेकिन जब किसी वीक आप ऐसे वक्त में आए जब थोड़ा सा और वक्त हो, तो मैं चाहूंगा राजस्थानी गाना आपसे सुनना, वहाँ का लोकल.
7: बहुत गाने हैं राजस्थान के सर.
0: हाँ तो उसको प्लीज सुनाइएगा.
7: अमिताभ बच्चन जी को आपने, आज जन्मदिन है तो उनकी आनंद मूवी बहुत अच्छी है सर. आनंद मूवी में जो राजेश खन्ना जी के साथ किरदार था वो अच्छा लगा मेरे को.
0: हाँ हाँ बहुत बहुत बेहतरीन होगा.
7: उनका एक गाना गाता हूँ मैं आपके लिए. चलो मैं डायलॉग तो नहीं गा पाऊंगा.
0: क्या बात है,
7: उनकी फिल्म आएगा ना.
0: प्लीज प्लीज.
7: रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन. रिम झिम गिरे सावन, ये गाना मेरे को उनका बहुत अच्छा लगता सर.
0: क्या बात है. बहुत प्यारा.
7: और मैं पर्टिकुलरली आपके लिए गाना गाऊंगा, फिर मेरे लिए भी आप एक गाना गाना.
0: अरे प्लीज.
7: मैंने बहुत
0: जरूर.
7: रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपता है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क, मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते मेरा सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना तेरे वास्ते, सोचू तुझे तो है सुबह, सोचू तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरी आग में ही जलते कोयले से हीरा बनते, आँखों से आगे चलते हैं तुझे बताना। थैंक यू सर, अब आप गाइए।
0: आपने इश्क जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया, इससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने वादा किया था कि आप सुनाएंगे तो मैं सुनाऊंगा, तो पेश है आपके लिए कि

0: कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। थैंक यू।
1: बहुत अच्छा सर, आपने तो अमिताभ जी का ग्रेटेस्ट सॉन्ग गाया सर।
0: इसीलिए मैंने इसी सॉन्ग को जानबूझ के चूज किया। थैंक यू सो मच।
1: शोले मूवी बहुत याद है, शोले मूवी बहुत अच्छी लगती है।
0: हाँ, उन्होंने जब से
1: उन्होंने किरदार निभाया था, और सर शोले में जो म्यूजिक बजता है ना, वो बजाते हैं कई बार सुना, वो बहुत ही एक अलग ही उसमें अलग ही फीलिंग है,
0: जबरदस्त है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। एंड जब से अमिताभ साहब ने कहा है मत नाचना, तब से मैंने नाचने का छोड़ी थी।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच राहुल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आपके लिए।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद, थैंक यू। सो ये हमारे बहुत ही प्यारे से राहुल जी हैं, जो कि इतना मुश्किल मतलब वक्त निकाल करके और उसके बाद जुड़ते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दिल से शुक्रिया राहुल जी एक बार वापस से, और हम उन सभी श्रोताओं का कर रहे हैं जो चाह तो रहे थे लेकिन फ़िलहाल जुड़ नहीं पाए, कहीं बिजी हैं या कॉल नहीं रिसीव्ड हो पाई है, उन सब के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप लोगों ने लगातार कॉल्स की है, अपना प्यार अपना प्रेम दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आज की लास्ट कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशु जी फ्रॉम लखनऊ, कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छा सर जी, बहुत देर से ट्राई करने लग नहीं रहा कॉल।
0: इसीलिए मैंने कहा कि भाई आज एक और लास्ट कॉल है, देखिए आपकी आ गई। ऑल राइट, तो आप भी विश कर दी अमिताभ बच्चन साहब को अपने अंदाज में उनका एक कोई गाना अच्छा सा सुना करके।
2: बिल्कुल सर
0: जी।
2: हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी वही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
0: वाओ, क्या बात है, एक तो इतनी बेहतरीन आवाज आपकी और आपकी चॉइस बड़ी बेहतरीन होती है, तो आपने जिस तरह से
2: ढेरों सारी कुछ शुभकामनाएं आपको सभी लिसनर को।
0: बेशक बेशक, एंड थैंक यू सो मच, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच सर जी,
0: थैंक यू। सो भाई, ये थी हमारे साथ में आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ, और फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैसेजेस आए हुए हैं चैट बॉक्स पर, उनकी तरफ भी चलते हैं। मोहित हैं फ्रॉम मालवीय नगर गोंडा से लिखते हैं, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, आपको भी। कमल नैन है गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग कमल नैन जी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सविता दुबे जी सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। आशु जी हैं सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम अवस विकास हैं अदनान सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और आपको भी नवरात्रि की जो है बहुत शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी। एंड गुलफशा सिद्दीकी जी हैं, अस्सलाम वालेकुम अदनान सर। वालेकुम अस्सलाम गुलफशा जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। रोशनी रावत जी उन्नाव से, गुड मॉर्निंग सर जी, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आपने भी काफ़ी एंजॉय किया है। एंड प्रमुख कुमार है लुधियाना से, गुड मॉर्निंग। आसिफ अंसारी जी हैं फ्रॉम हैदराबाद से, और नरेश भैया इतना सच मत बोलो। क्या बात है। सो नरेश जी से बात करके सबको मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और कोई बात नहीं प्रमुख, हम नेक्स्ट टाइम आपकी कॉल ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो चलने का वक्त आ गया है। एंड जाने से पहले अमिताभ बच्चन साहब की शोले मूवी का ये शोला बरसाता हुआ गाना ज़बरदस्त तरीके से सुनते हैं, विदा लेते हैं, और एक बार वापस से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से आपने आज के इस प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर किया है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, वैसे आप तो नहीं सो रहे हैं, बस राइमिंग में था, मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी। आप तो नहीं कह रहे हैं कि मैं तो सो रहा था। जाग चुके हैं आप और जाग चुके हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और आज है संडे का शो, संडे वाला टाइम, और आपका अपना
1: और
0: शो।
1: मैं जगाने भी आ गई हूं।
0: यस, गीता दीदी। सो वेलकम करते हैं आपका हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी वाले प्रोग्राम में, और स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम की होस्ट गीता दीदी का।
1: तो भाई सबसे पहले जो ये शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है आज से, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जहाँ से भी सुन रहे हैं उन सभी को ये शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है
1: और
0: कि
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीदी, आपको भी नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू।
0: और हमारे उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आज क्या है कहानियों में, क्योंकि नवरात्रि भी है।
1: मतलब नवरात्रि है तो मैं तो कहूंगी कि बुद्धि की दाता इसमें सरस्वती भी शामिल हैं।
0: अरे वाह,
1: तो आज बुद्धि की बातें कर लेते हैं कि बच्चों को जो आशीर्वाद मिले वो बुद्धि का आशीर्वाद मिले, उनकी बुद्धि बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े और वो आगे अपने जीवन के पथ यूं ही बढ़ते रहें।
0: वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए भाई,
1: तो सबसे पहले चलिए बुद्धि की देवी जो है, दाता जो है, वो सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसी के साथ मैं एक कहानी लेके आई हूँ।
0: सो कहानी की तरफ चले, लेकिन उससे पहले हम बोल दें कि कहानी के लिए फटाफट से रेडी हो जाइए, अगर अभी तक आपने खुद को रेडी नहीं कर रखा है, और घर के बच्चों के साथ बैठ जाइए कहानी
1: और कहानी सुनिए।
0: बेशक, बिल्कुल।
1: तो आज आप बहुत क्यूट से लग रहे हैं।
0: हमेशा लगते हैं मैम।
1: नहीं, आज कुछ ज्यादा लग रहे हैं।
0: आज कुछ ज्यादा लग रहे हैं।
1: हाँ, लग रहा है कि मेरे बगल में एक बहुत नन्ना मुन्ना क्यूट सा बच्चा के बैठ गया है, हाफ शर्ट हाफ पैंट में।
0: नहीं, पैंट हाफ नहीं है, पैंट फुल है। हाँ, मुझे लगता है कि आज एक तो ये अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे है।
1: हाँ,
0: इसका भी असर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज वर्ल्ड फूड डे भी है।
0: हाँ भाई,
1: खाने की भी बात करते हैं भाई। तो चलिए, सब खाना पीना तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जहाँ खाना पीना है वहाँ बुद्धि भी बढ़ती है और स्वास्थ्य भी बढ़ता है।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल। और क्या,
1: तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की ओर चलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है।
1: तो होता है कि गुजरात का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक अनाथ लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, गांव में कमाई का कोई साधन था ही नहीं। लेकिन वो बच्चा जो था बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। उसने अपने माता पिता से जीवन की कई उपयोगी बातें सीख रखी थी। तो एक दिन उसने शहर जाने का निश्चय किया और वहाँ उसने एक किराए पर छोटी सी दुकान ले ली और बाहर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा दिया, बुद्धि का सौदागर, यहाँ पे बुद्धि बिकती है।
0: अच्छा।
1: तो जो आसपास के दुकानदार थे वो उस बच्चे का बहुत मजाक उड़ाने लगे, बहुत हंसने लगे उसकी बातों पे। कोई कहता अब बुद्धि भी बिकने लगी है, लेकिन लड़का किसी की बात का जवाब नहीं देता, ना किसी की बात पर ध्यान ही देता। वह रोज तेज तेज आवाज लगाता, आओ साहब आओ, उपयोगी बुद्धि खरीद लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, खूब शोर मचाता। कई दिनों तक कोई ग्राहक आया ही नहीं, सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन एक बहुत ही अमीर सेठ का मूर्ख बेटा वहां से गुजरा और जब उसने बच्चे को आवाज लगाते देखा, बुद्धि ले लो, बुद्धि खरीद लो, और बोर्ड को देखकर वो दुकान के पास आया और बोला, भैया एक पैसे की बुद्धि दे दो। लड़के ने एक पर्ची पर लिखा, जब दो लोग झगड़ा कर रहे हों

0: ना मेरी इस सीख का कभी उपयोग नहीं करेगा। अब सेठ परेशान हो गया, फिर भी मजबूरी में उसने ऐसा लिखकर दे दिया और उस बच्चे ने उसका एक पैसा वापस कर दिया। कुछ समय बाद राजा की दो रानियां और उनकी दासियों बाजार में खूब झगड़ने लगी आपस में। सेठ का बेटा भी वहां खड़ा था। बाकी लोग झगड़ा बढ़ता देखकर वहां से चले गए, लेकिन सेठ का बेटा अपने लिखित वचन के कारण वहां से नहीं जा सका। दोनों दासियों ने उसे गवाह बना लिया। अब मामला राज दरबार यानी राजा तक पहुंचा। दोनों रानियां चाहती थीं कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। बेचारा सेठ और उसका बेटा घबरा गए। वे बुद्धि के सौदागर के बाद फिर तेजी से पहुंचे। लड़के ने 500 रुपए लेकर उपाय बताया। जब राजा के सामने गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल जैसा व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर दरबार से भगा दिया, बाहर निकाल दिया, तो उसकी जान बच गई। धीरे धीरे बुद्धि के सौदागर की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। अब बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाकर पूछा, क्या तुम मेरे लिए भी कोई बुद्धि बेच सकते हो? लड़के ने कहा, जी महाराज, लेकिन उसकी कीमत 1,00,000 रुपए होगी। राजा ने तुरंत 1,00,000 रुपए देने की स्वीकृति उस बच्चे को दे दी। लड़के ने उन्हें एक पर्ची दी जिस पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह सीख ज्योति बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने महल की दीवारों, पर्दों, बर्तनों, यहाँ तक कि अपने तकिए के गिलाफ पर भी ऐसा ही लिखवा दिया। कुछ समय बाद राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर राजा को मारने की योजना बना डाली। वैद्य विष मिली दवा लेकर राजा के पास आया। राजा जैसे ही प्याला पीने लगा, उसकी नजर सामने लिखे वाक्य पर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा रुक गया। उन्होंने दवा को ध्यान से देखा और वैद्य से कई प्रश्न पूछ डाले। राजा की शंका देखकर मंत्री और वैद्य बहुत घबरा गए। आखिरकार दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार करवा दिया। फिर उन्होंने बुद्धि के सौदागर को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने मुझे ऐसी बुद्धि दी जिससे आज मेरा जीवन सुरक्षित हो चुका है। राजा ने उसे बहुत सा धन दिया, पुरस्कार दिए और अपना मंत्री बना लिया। तो क्या समझ में आ रहा है आपको अदनान जी?
1: पर्ची पे लिख करके चलना चाहिए।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। सच्ची बुद्धि वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेने में हमारी सहायता करे।
1: सही बात है।
0: किसी भी काम को करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, यानी बोलने के पहले भी सोच विचार कर लेना चाहिए। जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है।
1: बचा जा सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम करते हुए सोचते हैं,
0: बिना सोचे समझे अचानक जो है किसी की बातों में आके कुछ ना कुछ गलत कर डालते हैं, या खुद से भी तत्काल निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है।
1: बेशक सही बात है। और मुझे लगता है ये सीख आप तक भी पहुंच गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगारे आपनो जग में हो थसाए।
1: सही बात है।
0: तो ऐसे काम, मतलब बुद्धि इसीलिए होती है कि सोच विचार कर तब काम करें।
1: बिल्कुल। और आज के बाद से आप भी इस बात की गांठ बांध लीजिए जो राजा ने किया था।
0: हाँ बिल्कुल।
1: कुछ भी करें तो ये लाइन आपको तुरंत लिखी हुई दीवारों पर दिखाई दे अपने मन में, कि कुछ भी करने और कहने से पहले खूब सोच लो।
0: बिल्कुल।
1: तो कैसी लगी स्टोरी हमको कमेंट करके बताइए। क्यों दीदी?
0: बिल्कुल करना चाहिए कमेंट्स। और हमको तो बस इतना ही चाहिए कि अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते रहे और हम अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों तक पहुंचाते रहे।
1: बिल्कुल। फिलहाल गीता दीदी पहुंच रही हैं उन नन्हे मुन्नों के पास और लेकर आ रही हैं उनको प्रोग्राम में आप बने रहिए रेडियो ज्ञान 9.6 FM के हम टी टम टी विद गीता दीदी प्रोग्राम।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: घर नानी के घर जाएंगे।
1: नानी के घर, नानी के घर, नानी के घर जाएंगे।
0: हलवा पूरी, मीठी चूरी और जलेबी खाएंगे। नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाएंगे। नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाएंगे।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
4: क्या माँ?

0: निकले जादूगर में। पलक के जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ?

देख के राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।

0: VWXYZ. Now I know my ABCs.
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो लो, काफी इंतजार के बाद हम आ गए हैं हम्प्टी डम्प्टी के मंच पे और अपने शैतान बच्चों को ले करके।
1: तो गुड मॉर्निंग दीदी।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो भाई, आज तो जानते हो क्या है? आज बोलो क्या है? आज
2: नवरात्रि है।
0: हाँ, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो आप लोग के घर में कुछ तैयारियाँ चल रही हैं?
2: यस मैम।
0: तो सबसे पहले अनन्या, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आई हो। आज नवरात्रि शुरू हो रही है, मम्मा ने पहनाया इतना अच्छा कपड़ा। तो आज क्या सुनाओगी?
1: पोयम।
0: तो एक मिनट पोयम तो सुनाओगी। पहले हमारे साथ जो बच्चे हैं उनका परिचय आपको दे दें। हमारे साथ आराध्या है, हमारे साथ अनन्या है, हमारे साथ माही है और हमारे साथ सौम्या है और माही है हमारे साथ। तो बहुत सारे बच्चे हैं और आज सब रंग बिरंगे परिधान में है जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो चल तो अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ क्या सुनाओगी अनन्या?
1: तेरी पतंग वाली पोयम।
0: पतंग वाली पोयम। अच्छा तो सुना दो पतंग वाली पोयम जल्दी से।
1: रंग बिरंगे उड़े पतंग अपन।
0: जोर से बोल दो, जरा सा खाना नहीं खाया आज, व्रत है क्या? खाना नहीं खाया है, जोर से बोलो। हाँ,
1: लाल उड़े पतंग।
0: हाँ,
1: अपना रंग।
0: हाँ, क्या सुना रही है इसको? कुछ ये धीरे से बोलती है, इतनी धीरे बोलती है, जोर से सुनाओ। रंग बिरंगी उड़ी पतंग।
1: रंग बिरंगी उड़ी पतंग
0: खूब जमाती
1: अपना रंग आसमान में पाते करती।
0: हाँ, और देख सभी रह जाते दंग। देखो भाई, इनकी पोयम बहुत अच्छी है। रंग बिरंगी उड़ी पतंग खूब जमाती अपना रंग आसमान से बातें करती, देख सभी रह जाते दंग। तो भाई बहुत अच्छी पोयम लेके आई हो। और हमारे बीच में है

0: माही माही आज क्या सुनाने वाली हो?
1: तो बोलो मैं आज नवरात्रि के इस पे मैं आज एक माता जी का गाना सुनाना चाहूंगी।
0: ओहो भैया आज तो नवरात्रि है, आज तो भाई माता रानी के भजन सुनने हैं, तो देखते हैं आज ये कौन सा भजन सुनाती हैं। और हाँ तो चलो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं।
1: निमिया के डाल मैया नावेली झुलुआ हो के झूली झूली ना, निमिया के डाल मैया ना

0: दवाना।
1: वेरी नाइस वेरी नाइस। बच्चों तालियां तो बजा दो। कितना अच्छा गाती हो माही, किसने सिखाया है तुम्हें बच्चा? अच्छा ऐसे ही अपने आप से सुन सुन के सीखा है?
2: बहुत अच्छा। रोज प्रैक्टिस करती हूँ।
1: अच्छा अच्छा वाह। देखो हमारे साथ छोटी सी माही है और इतना लगाव है इनका कि ये डेली जो है घर पे प्रैक्टिस भी करती है सिंगिंग की। बहुत अच्छा सुंदर। और आप क्या सुनाएंगी? चलिए आप भी कुछ सुना दीजिए, तो दोनों मिल के गा लेते हैं, है ना कुछ? हाँ हाँ चलो। देखो भाई दोनों लोग जो है मिल करके गा रही हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बच्चे क्या सुना रहे हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो चलो फिर से

0: धाम पधारो।
1: थैंक यू,
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तालियां कौन बजाएगा? वाह भाई वाह। तो भाई बच्चों बहुत सुंदर सुनाया है ये गीत, मुझे तो ये बेहद बहुत ज्यादा मतलब हृदय से बहुत अच्छा लगता है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अभी तो आराध्या है। आराध्या आज क्या सुनाने वाली हो? आराध्या
2: दीदी कहानी है।
0: कहानी?
2: अच्छा
0: तो कहानी सुना दो भाई। कौन सी कहानी सुना रही हो आज?
2: लालची कुत्ते।
0: लालची कुत्ते की कहानी सुना रही है।
2: एक कुत्ता भोजन की खोज में घूम रहा था। रास्ते में उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसने रोटी अपने मुंह में दबा कर नदी पार करने लगा। नदी के पानी में कुत्ते
0: उसको
2: ने अपनी परछाई देखी। देखा। उसने सोचा इस कुत्ते के पास भी रोटी है। मैं इस रोटी को छिपा लेता हूँ, फिर आसमान से खाऊंगा, आराम से खाऊंगा। कुत्ता भोजन तले कर जा रहा था। जैसे ही उसने भौंकता, उसके मुंह से रोटी पानी में गिर गया।
0: अच्छा तो फिर क्या हुआ बेटा?
2: कि मुंह से रोटी पानी में गिर गया।
0: तो देखो इससे क्या ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। क्या हुआ कि भाई देखो इस हमारी बच्ची है, कहानी तो बहुत कोशिश करी, बहुत प्यारी से सुनाई, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मैं बताती हूँ कि वो कुत्ता रोटी दबा के जा रहा था, तो उस नदी के किनारे उसको अपनी परछाई दिखा दी। उसने देखा, हाँ ये मेरा कंपटीटिव कौन आ गया, ये मुँह में कैसे रोटी लियो, हम मैं इसकी रोटी छीन लूँगी। तो ऐसा करके उसने उसके ऊपर गुर्राया, दहाड़ा और झट से जो थी रोटी उसके मुंह में जो दबी थी वो पानी में गिर गई। और इस तरीके से जो उसको रोटी मिली थी वो भी वो नहीं खा पाया और लालच बस उसने वो रोटी गंवा दी। तो चलो भैया चलते हैं हमारे बीच में हमारे प्यारे से क्यूट से शशकर जी बैठ कर। शशकर जी नमस्कार।
3: नमस्ते।
0: तो आज श्रेष्ठकर जी क्या सुनाने वाले हैं?
3: आज मैं आप सभी को महाराजा अग्रसेन जी के बारे में बताने वाला हूँ।
0: महाराजा अग्रसेन
3: जी?
0: ओ चलिए सुनते हैं महाराजा अग्रसेन के बारे में।
3: महाराजा अग्रसेन जी भारतीय इतिहास और परंपरा में एक महान राजा के रूप में स्मरण किए जाते हैं। उन्हें अग्रवाल समाज का संस्थापक माना जाता है। उनकी राजधानी अग्रोहा मानी जाती है, जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है।
0: अग्रोहा हरियाणा में है।
3: महाराजा अग्रसेन जी को समानता, अहिंसा, सहयोग और समाज सेवा के आदर्शों के लिए जाना जाता है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब लोग सभी लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की सहायता करें। उनसे जुड़ी एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार अग्रोहा में आने वाले नए परिवारों की सहायता के लिए प्रत्येक परिवार एक ईंट और एक मुद्रा देता है। इससे नए परिवारों को घर बनाने और अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलती है। यह परंपरा सामूहिक सहयोग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराजा अग्रसेन जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों की सहायता करने और समाज के कल्याण के लिए कार्य करने में महत्वपूर्ण।
0: बिल्कुल भाई, देखिए हम लोगों को भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब भी कोई परेशानी में हो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसके साथ खड़े रह सकते हैं, उसकी परेशानी को हल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है कि अगर हम खड़े हो गए हैं किसी के साथ, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप परेशान मत हो और जल्दी ही कोई हल निकल आएगा, तो इतना ही बहुत है। आज के समय में किसी के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है कि वो एक दूसरे की मदद करे। तो बच्चों आप लोग मदद करोगे ना?
2: जी दीदी।
0: हाँ, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं और कोई झगड़ा नहीं करता है। बहुत दिन से हमारे ग्रुप में झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो अक्सर करके झगड़ा हो जाता था। तो भाई झगड़ा नहीं करते हैं और हम ले लेते हैं एक छोटा सा अर्ध विराम। तो अरे भाई अर्धग्राम विराम तो बाद में लेते हैं, एक छोटी सी कहानी मैं भी सुनाने वाली थी, सुनना है बच्चों?
2: जी दीदी।
0: तो चलो सुनाते हैं आज हम एक छोटी सी कहानी जो बहुत प्यारी। भाई आज तो बहुत गड़बड़ और बच्चे भाई देखो मोबाइल लेने करके आ जाते हैं और बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। सारे तो आजकल मोबाइल का यूज करने लगे। नहीं बच्चों, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, है ना? तो चलो आज वैसे भी जो है माता का दिन है, शुरुआत हो चुकी है, तो मैं उसी के बारे में छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, है ना? तो देखो क्या होता है कि जो ये नवरात्रि चल रही है, ये नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो बच्चों आज मालूम है किसकी पूजा होती है? आज माता दुर्गा की प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ नहीं जानते होंगे आप लोग, शैल का मतलब तो समझते होंगे कि बड़े बड़े पहाड़ होता है, यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। शैलपुत्री को प्रकृति, शक्ति, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मालूम है इनके मस्तक पे क्या है? इनके मस्तक पे अर्धचंद्र सुशोभित है और ये बैल पर सवार रहती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प विराजमान रहता है। तो माँ शैलपुत्री के जन्म की कथा सुनोगे ना? तो चलो सुनाते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक समय प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। तो जब माता रानी को अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे वहां जाना है, वहां जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं है। तो फिर क्या हुआ, लेकिन जो माता सती थी यानी पार्वती जी थी वो नहीं मानी और जिद करने लगी कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। अंत में भगवान शिव ने कहा ठीक है, अब इतनी जिद कर रही हो तो जाओ तुम वहां पे। जब माता जो सती थी अपने पिता के घर पहुंची तो वहां उनका कोई पूछनहार नहीं था, मतलब उनका आदर सत्कार तक नहीं हुआ। और इसके विपरीत जो प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के प्रति बहुत सारी गलत बातें बोली, यानी कि अपमानजनक बातें कही, अपने पति का अपमान माता सती सहन नहीं कर पाई, फिर बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। तो उन्होंने वही जो यज्ञ कुंड जल रहा था उस यज्ञ कुंड में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। अब जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो बहुत क्रोधित हुए और दुखी भी हुए। उन्होंने माता सती के जो पार्थिव शरीर यानी कि जो मृत शरीर था उसको उठा करके भयंकर तांडव किया। शिव का तांडव तो सभी को मालूम होगा ना?
2: जी दीदी।
0: तो तांडव शुरू कर दिया और इसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया और इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। तो कैसी लगी कहानी बच्चों?
2: बहुत अच्छी दीदी।
0: तो ताली बजा दो। तो अब तो ले सकते हैं ना ब्रेक? आपने कहा था कि छोटी सी कहानी के बाद भी ब्रेक लीजिए, मैंने आपका इशारा समझ लिया था। तो चलो अब तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: चकरकची चाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो।

0: तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हम्टी डम्टी के मंच पे हाजिर हैं और तो अभी सानिध्या हमारे साथ जुड़ी हुई है जो काफी नाराज है कि दीदी ने मुझे आज बिल्कुल मतलब मिस किया है कि नहीं किया है, मिस नहीं किया है, यही तो आज क्या लेके आई हो तुम सबको? आज तो नए साल की जो है वो नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आज क्या सुनाने वाली हो इस अवसर पे? आप क्या सुनाओगी?
1: दीदी इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड।
0: ओहो, आज इंटरनेशनल गर्ल या चाइल्ड डे है और उस पे हमारी सानिध्या कुछ बोलने वाली है।
1: तो मैं हूँ आपकी नन्ही दोस्त सानिध्या और आप सुन रहे हैं हमारा प्यारा सा रेडियो कार्यक्रम। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। इस दिन का उद्देश्य है कि दुनिया की हर बेटी को शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने सपनों को तो पूरा करने का समान अवसर मिले। बेटियां किसी से कम नहीं होती, वह पढ़ सकती हैं, खेल सकती हैं, वैज्ञानिक बन सकती हैं, डॉक्टर, शिक्षक, पायलट, पुलिस अधिकारी या देश की नेता बन सकती हैं। हमें बेटियों को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान और समान अधिकार भी देना चाहिए। एक बेटी अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाती है और अपने सपनों को समाज को नई दिशा देती है, इसलिए हमें हर बेटी को कहना चाहिए तुम पढ़ो, तुम बढ़ो और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ो। आइए आज हम सभी मिलकर यह संकल्प ले कि हम बेटियों का सम्मान करेंगे, उनकी शिक्षा तो प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें अपने सपने पूरे करने का पूरा अवसर देंगे। और अब समय है एक छोटी सी प्यारी सी कविता का।
0: ओ, पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी, ये संदेश है हमारी छोटी सी आराध्या का।

है भाग्यलक्ष्मी है बर तट वो सोने धरती खुशियाँ सार वो माता हाथ बताती वो पापा तो समझाती परिवार की हल उलझन तो

0: पंडिता यहाँ।
1: वाह भाई, तालियां बजा दो हमारी छोटी सी सानिध्या के लिए। इतनी प्यारी सी पोएम, आज तो बेटियों का दिन ही है और हम लोग के समाज में तो कन्याओं को एक देवी का दर्जा दिया जाता है और बेटियां तो मुझे भी बहुत प्यारी है। और हमारे आज इस हम्प्टी डम्प्टी के मंच पे हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर आई हुई हैं जिनका नाम है सागरिका। वो बताएंगी कि उनको बेटियां कैसी लगती हैं।
2: नमस्ते, सब श्रोताओं को शुभ नवरात्रि। आज नवरात्रि के पहले दिन पर हमारी रेडियो स्टेशन के तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये मेरी तो दो बेटियां हैं और मुझे बेटियां बहुत पसंद है।
1: मुझे भी बेटियां बहुत अच्छा, और हमारा तो पूरा ये हम्प्टी डम्प्टी का जो मंच है बेटियों से ही भरा रहता है।
2: बिल्कुल, बेटियों से ही ये मंच
1: खिलखिलाता है। हमारे सानिध्या जब तोतली भाषा में कोई पोयम, कोई स्टोरी कुछ सुनाती है तो सारे श्रोता इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो भाई सभी को ये जो नवरात्रि है शुभकामनाएं, और हम तो कहेंगे कि बेटियों को खूब आगे बढ़ाएं, उनके सपनों को पंख दे ताकि वो आसमान में उड़ सके और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकें, क्योंकि बेटियों से ही रौनक है इस दुनिया की।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात
1: जी। तो चलिए हमारे साथ अब हमारे बहुत प्यारे से एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है समर, यानी समर ठंडी हवा का झोंका। तो आज देखते हैं इस ठंडी हवा के झोंके में कितनी गर्मी है। तो समर आज क्या सुनाने वाले हो?
3: अरे आज तो वैसे बहुत कुछ है, बहुत कुछ स्पेशल है, और सानिध्या ने इतना कुछ बोल दिया कि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है।
1: सच में आज प्लान किया गया था कि आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा माता जी के ऊपर, लेकिन हमारे सामने तो कई सारी माताएं साक्षात बैठी हुई हैं, फिर कहना ही क्या। है ना आराध्या?
0: जी दीदी।
1: आराध्या हमारी बहुत शर्माती हैं और सानिध्या हमारी बहुत हमसे लड़ती भी है। तो चलो हाँ, हम समर की ओर चलते हैं और समर आज बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं।
3: तो वैसे तो आज कुछ बहुत खास है और वैसे तो आज बहुत कुछ खास है, उसी के साथ जैसे देखते हैं हम कि लगातार कुछ ना कुछ हमारी रेडियो स्टेशन में कुछ स्पेशल चला करता है।
1: बिल्कुल,
3: और
1: बिल्कुल।
3: वैसे ही आज भी स्पेशल है, लेकिन फिर भी मेरा जो मेन मोटिव है वो मैथमेटिक्स पे है, तो फिर उसी को लेके चलते हैं। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर।
1: बड़ा लंबा सा नाम, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर।
3: हाँ, ही वाज अ मराठी।
1: मराठी कापरेकर आपने कहा तो समझ गए कि ये मराठी ही होते हैं, जिसमें कर लगा हो वो मराठी ही कहलाते हैं।
3: तो उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया और ऐसा योगदान दिया जो हाई स्कूल मैथमेटिक्स के आसपास का है, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों को जिसने आज तक जिन पैटर्न्स को आज तक हमने नहीं खोजा था उन पैटर्न्स को उन्होंने दिखाया। जैसे 81 स्क्वायर ऑफ 9
1: 81
3: हाँ, और अगर 8 और 1 को ऐड करें तो भी 9
1: आता ही आता है।
3: इसी तरह 2025 इज स्क्वायर ऑफ 45 और 20 + 25 करें तब भी 45। इसी तरह 88 + 200 9 का होल स्क्वायर होता है 88209। इसी तरह 99 का स्क्वायर होता है 9801 9801, और 98 और 1 को ऐड करें तो 99 आता है। मतलब स्क्वायर को सारे जो स्क्वायर आता है उसको ऐड करने पे उसका स्क्वायर रूट आ जा रहा है। ऐसे ही 55 का स्क्वायर होता है 3025 और 30 और 25 को ऐड करें तो 55। इसी तरह एक
1: मतलब ये मैजिक चल रहा है, मैजिक।
3: ये तो एक ये इसको उन्होंने नाम दिया कापरेकर नंबर्स, कापरेकर संख्याएं। उसके बाद उन्होंने एक दत्तात्रेय संख्याएं ली, क्योंकि मराठी में वो उधर महाराष्ट्र में एक हम तो शायद नहीं जानते लेकिन उधर एक बहुत फेमस गॉड है, उनको कहते हैं दत्तात्रेय। तो उनके मानते हैं कि 3 सर थे और उन्हीं के नाम पे दत्तात्रेय मैथमेटिशियन का नाम पड़ा था, तो उन्होंने उनके नाम पे भी एक संख्याओं को खोजा। जैसे 49 तो 49 में तीन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं, चार भी परफेक्ट स्क्वायर है, नौ भी परफेक्ट स्क्वायर है और 49 खुद भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 169 में इसमें ये पूरा 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 361 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 361 19 का स्क्वायर है और 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं। उसके बाद एक सबसे जो इनका मेन जिसको हम खोज मानते हैं वो था कापरेकर स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट। जैसे एक कोई दुनिया में अगर आप कोई भी नंबर ले लें और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, जैसे मान लीजिए कि 4 to 9 लेते हैं, अब असेंडिंग ऑर्डर इसका होगा 2 4 9 और इसको घटा दें इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में से यानी कि 9 4 2 तो मिलेगा 6 9 3 और फिर इसके साथ वही करें 9 6 3 - 3 6 9 फिर मिलेगा 5 9 4 और फिर इसके साथ ऐसे करें, इवेंचुअली लास्ट में हम 4 9 5 पे ही जाके रुकेंगे और इसी को कहते हैं कापरेकर स्थिरांक। और ये तीन अंक के साथ ही नहीं है, चार अंक के साथ भी है। फिर अगर कोई चार अंक की संख्या के साथ ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे तो लास्ट में 6 1 7 4 61 74 पे रुकेंगे और इसी तरह बहुत सारी संख्याएं। उसके बाद इन्होंने एक जादुई चौकोर बनाया यानी कि मैजिक स्क्वायर जिसको हर तरफ से जोड़ने पर एक ही अंक आता है। मैं बोलता हूँ अगर आप लिख सकें तो लिख लें और उसको जोड़ के देखें, उसका आंसर हर तरफ से जोड़ने पे 89 आएगा, साइड बाई साइड डायगनली और कोई भी चार अंक उठा के जोड़ लेंगे तब भी। पहली ऊपर की सबसे पहली रो है 15 08 1947, 48 18 11 12, 9
1: बच्चों नोट कर लीजिए ये और देखिए इस मैजिक में कितना मजा आने वाला है।
3: 9 14 46 20 17 49 13 10। अब इसको अगर साइड बाई साइड ऐड करेंगे 15 48 9 17 तो भी 89 आएगा, डायगनली ऐड करेंगे 15 86 46 10 तब भी 89 आएगा, हर तरफ से 89 ही आएगा। और उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है इसका जो पहला रो है 15 8 1947 ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त 1947।
1: तो चलिए भाई भाई समय हो रहा है और हमारे साथ सत्यम जी शामिल हो चुके हैं, ऐड हो गए हैं।
4: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते सत्यम, आपके पास समय बहुत कम है लेकिन फिर भी आपको हम कहेंगे कि आप जल्दी से कम शब्दों में ज्यादा बातें कह दें तो बेहतर होगा।
4: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे दिन की जो बेटियों को सम्मान, उनके अधिकारों और उनके सपनों से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बेटियों को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने का मौका मिले तो वह क्या क्या कर सकती हैं? आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना, उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करना है। अब सवाल आता है कि इस दिन की शुरुआत कब हुई? संयुक्त राष्ट्र ने साल 2011 में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का फैसला किया था। पहली बार यह दिवस 2012 में बनाया गया। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में लड़कियों की समस्याओं पर ध्यान देना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। श्रोताओं, लड़कियां हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे पढ़ाई, खेल, विज्ञान, कला, खेती और व्यापार की देश की सेवा जैसे हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। आज हमारी बेटियाँ डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और अधिकारी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन आज भी कई जगह लड़कियों को पढ़ाई के बराबर मौके नहीं मिलते। कुछ लड़कियों को कम उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, कहीं उनके साथ भेदभाव होता है तो कहीं उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता
1: जी।
4: हमें मिलकर इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, बेटी को पढ़ाना केवल एक परिवार को आगे बढ़ाना नहीं है बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाना है। जब एक लड़की पढ़ती है तो वह अपने साथ अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी बेहतर बना सकती है। धन्यवाद।
1: तो आज एक बार फिर से आप सभी को बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भाई बालिका दिवस 11 अक्टूबर को ही पड़ा है और हमारी जो मतलब धर्म के अनुसार बेटियों की पूजा की जाती है इसी दिन से।
4: जी दीदी।
1: तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ यशराज भी, वो अथर्व भी शामिल हो चुके हैं। और अथर्व, आज क्या बताने वाले हैं आप?
5: तो दीदी, आज जो मेरा टॉपिक है वो हमेशा की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आज मैं आपको श्री नाना जी देशमुख जी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कह सकते मजबूत स्तंभ की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने मतलब कह सकते सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और खास करके जो आज हम अपने चारों तरफ जितने भी गांव देख रहे हैं, वो गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कह सकते हैं जो जहां पर वो रहते थे उनके गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना इंप्रूव हुआ है वो उनके ही अंडर में इंप्रूव हुआ है। तो इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितना हो सके गांवों को डेवलप किया जाए, विलेजेस जितने भी ज्यादा डेवलप होंगे, क्योंकि हम हमारा ही गोंडा भी पहले कभी गांव ही हुआ करता था,
1: जो कि अब जो
5: हाँ पहले वहां पर लैंड ही था। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज इनका बर्थडे है और 11 अक्टूबर 1916 को इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के कडोली जिले में हुआ था। शुरुआती जीवन में इनके पास ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज थे और पढ़ाई
1: पहले भी सभी मतलब बहुत सारे ऐसे,
5: क्योंकि देखिए 90s की बात है और 90s के स्टार्टिंग की बात है, 1916 की बात है। तो वहाँ पर जितना आज हम लोग देख रहे हैं हमारे पास इतना ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वहाँ उस समय उतना नहीं था। और उनको पढ़ाई जारी रखने के लिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता था, अपनी रोजी रोटी वो उन्हीं से कमाते थे। आज हमारे पास देखिए इतनी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, मोबाइल से भी हम लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन सोचिए वहाँ पर उस टाइम ऐसा मोबाइल जैसा कुछ था ही नहीं, सब ऑफलाइन ही अर्निंग करना पड़ता था।
1: जी, और आज भी कोई ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है की जहाँ अगर
5: मुंबई में जाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि आप कोई मतलब इस लगता है दूसरे कंट्री के दूसरे सिटी में पहुंच गए, इतना ज्यादा उस वहां पर आप डेवलपमेंट देख सकते हैं कितना हुआ है। और नाना जी को भारतीय जनसंघ के प्रमुख संगठनकर्ताओं का एक नेता बनाया गया था और 1977 में बलरामपुर में लोकसभा चुनाव में वो जीत गए थे।
1: ये हमारे गोंडा के बगल वाला बलरामपुर,
5: बस वही पर। और ये थोड़ा सा प्राउड फील करने वाली बात
1: है, देखिए हाँ हमारे जो अटल जी थे उन्होंने भी यहाँ से ही अपने जीवन यात्रा शुरू करी थी, यानी कि जो नेतागिरी वाली यात्रा थी वो यहीं से शुरू करी।
5: और अगर नाना जी देशमुख जी की बात करें तो जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का अवसर मिला तो उन्होंने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया। अब आप सोचिए ऐसे कोई पावर हम लोग को मिल रही है जिससे हम लोग दे सकते हैं, कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग को भाव मिल सके, हम लोग कह सकते हैं रोड़ा जमे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पावर उनको मिल रही थी लेकिन उन्होंने कुछ अलग नजरिए से सोचा था कि मैं कुछ
1: देशभक्तों की यही निशानी होती है।
5: और नाना जी ने आगे चल के, मैं उनके और डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो ग्रामीण विकास है जिनका उनके ऊपर मेन फोकस था ग्रामीण मतलब गांव के एरियाज पर, उसको उसके विचार को आगे बढ़ाया। और चित्रकूट में उनका जो काम था केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं सीमित था, मतलब उन्होंने चित्रकूट तक का भी काम किया था, वहां तक का उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ले गए थे। और उनका उद्देश्य था, जरूरी नहीं है कि उनका उद्देश्य सिर्फ विलेजेस को डेवलप करना था, उनका और भी ऑब्जेक्टिव था, जैसे एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, एग्रीकल्चर को और साथ में एम्प्लॉयमेंट, जो आज हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे भारत में थोड़े ज्यादा लोगों को आप देखने को मिल जाएंगे और साथ में हाँ, तो ये भारत की प्रॉब्लम है और अभी भी चल रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इन्होंने साथ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी आगे बढ़ाया, जैसे आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब आज के जमाने में देखा जाए तो हम लोग मोबाइल की वजह से इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए कि हम लोग को एक दूसरे से बात करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो उन्होंने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बनाया ताकि लोग आपस में खेल कूद करके आपस में थोड़े रिश्ते और बढ़ा सके। तो सोच सकते हैं आप, वो जरूरी नहीं थे कि उन्होंने विलेजेस को डेवलप किया, वो सोचते थे कि जितना हो सके बॉन्डिंग हम लोग के बीच में वो और बढ़े। और इनके बारे में बस लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि इनको 1999 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था, लेकिन उस टाइम पर इनकी डेथ हो गई थी। और इनको उनके करीबी रिश्तेदार वीरेंद्र इंद्रजीत सिंह के हाथों रामनाथ कोविंद जी ने इसको उनको दिया था। लेकिन देखिए क्या है कि अवार्ड्स किसी व्यक्ति की पहचान का केवल एक हिस्सा बताते हैं, बल्कि उनकी जो विरासत है उसका दूसरा हिस्सा उनके विचारों में है जो आज भी वो हमारे देश के लिए सोचते हैं।
1: भारत रत्न चाहे जब मिला हो, लेकिन वो भारत रत्न उनको उनके जितने भी प्रेमी थे उनके द्वारा उसी समय मिल चुका था।
5: जी
1: जी, तो चलिए भाई हमारा वक्त हो रहा है और आज बहुत सारे सभी के घरों पे काम है और हमारी छोटी सी सानिध्य फिर से एक तैयारी करके बैठी हुई है कि दीदी जल्दी से मुझे एक मौका और दीजिए, तो मैं सानिध्य को जल्दी से एक मौका देती हूँ और वो बहुत प्यारी सी क्या सुनाने वाली हो
0: दीदी? कविता।
1: कविता सुनाने वाली है, तो आज उसका पेट नहीं भरा है जब तक वो अपनी पूरी कविताएं, अपने पूरे गीत और जो भी उसके पास उसकी भावनाएं हैं वो बता नहीं देगी तब तक वो मानने वाली नहीं है। तो चलो चलते हैं सानिध्य की ओर, जल्दी से सानिध्य स्टार्ट हो जाइए।
0: लहराता बलथा तानीम, दिन भर हंसता दा तानीम, चिड़िया तौवा टोटा सबसे अपना स्नेह जताता नीम, नहीं डॉक्टर फिर भी तिन्ने रोड भदाता नीम, चले प्रदूषित वायु तभी तो उस तो शुद्ध बनाता नीम, टड़वे तन में मन तो मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम सबका मन बहलाता नीम, लेटा तभी लेटा नहीं किसी से तुझ भी पर कितना दे जाता नीम।
1: भाई आप लोग सुन लीजिए कि नीम हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमारी सानिध्या ने बता दिया है कि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी डॉक्टर वाले सारे काम करता है, यानी कि सारे डॉक्टरों की छुट्टी।
5: जैसे एक इंग्लिश में लाइन है, an apple a day keeps the doctor away।
1: बिल्कुल, तो नीम भाई आजकल कहते हैं कि नीम
5: पर वैसे एप्पल ही सब कुछ नहीं है, हम लोग को जितना भी हेल्दी रिसोर्सेस है उसको यूज करना चाहिए।
1: और हमारी माता जी का निवास भी कहा गया है कि नीम पर ही होता है। मेरे ख्याल से भाई ये तो मैथोलॉजी है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो नीम बहुत अच्छा लगता है।
5: और मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहूंगा, अगर आपको कोई और जानकारी पता हो तो हम लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
1: बस हमारे चलने का समय हो गया और हम आपसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते इसी दिन इसी मंच पे इसी समय आपसे फिर रूबरी होंगे। तब तक आप सुनते रहिए
5: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9216 9976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम है आपके ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम वाले शो में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहली बार नहीं बल्कि हर बार की तरह आरजे मनु।
1: जी हाँ देवी और सज्जनों, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन और नमन। आप देख रहे हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। ये डायलॉग हम सुनते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से और आज उनका प्यारा वाला बर्थडे है।
0: मतलब आज 11 अक्टूबर है, यानी हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे है।
1: जी
0: हमारे, मुझे याद है फिजिक्स के टीचर ने एक बार रोक करके हमसे कहा था कि ये बताओ अमिताभ बच्चन को लोग क्या बोलते हैं। मैंने कहा अमिताभ बच्चन के नहीं, अमिताभ बच्चन। तो बाद में मैंने गौर किया कि बात सही है और लगभग जो बच्चे हैं जो नहीं बोल पाते वो शॉर्ट में अमता, छोटा आ म ता पा रा की मंत्र था अमता बच्चन।
1: हाँ, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में बिग बी कर दिया गया।
0: ग्रेट, ऑफ कोर्स। और कई लोग तो बच्चन को बच्चन, मतलब ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चन है या बच्चन है।
1: हाँ बच्चन है। वास्तव में जो इसके पीछे का फैक्ट है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था हरिवंश राय श्रीवास्तव। तो हरिवंश राय श्रीवास्तव ने जब कविताएं लिखनी शुरू की तो उन्होंने अपने सरनेम से श्रीवास्तव हटाया और एक तखल्लुस अपनाया बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। और इसके पश्चात उनका जब बेटा हुआ तो उनका नाम हुआ इनकलाब बच्चन। लेकिन चूंकि वो नाम चल नहीं पाया तो उसमें उस सदी के जो कवि थे सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा था इनकलाब श्रीवास्तव से बदलकर अमिताभ, तो वो अमिताभ बच्चन। और इसके पश्चात जया भादुड़ी हो गई जया बच्चन, और इसके पश्चात अभिषेक बच्चन, फिर श्वेता बच्चन, हाँ श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। मतलब बच्चन एक ऐसा तखल्लुस है, एक ऐसा उपनाम है जो सिर्फ और सिर्फ आपको अमिताभ जी की ही फैमिली में मिलेगा, इसके अलावा कहीं कोई बच्चन नहीं है। क्या लगता है आपको इसका, है कि नहीं? और बड़ा ही प्यारा सा इत्तेफाक है अदनान सर कि आज शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ है और आज ही वर्ल्ड
0: इंटरनेशनल डे ऑफ द चाइल्ड गर्ल।
1: हाँ मतलब आज का दिन भाई वास्तव में बच्चियों को समर्पित, बेटियों को समर्पित आज का दिन भी है। इससे अच्छा इत्तेफाक और क्या हो सकता है। वो खास बात यह है कि हम दो एक साथ मौजूद हैं इस प्यारे से अवसर।
0: हम दो एक साथ मौजूद हैं मतलब,
1: मतलब हम मजा
2: तो बच्ची तो मैं हूँ।
1: ले लीजिए, देखिए तीन उपस्थित हो गए। जी हाँ, तो पहले आपको गर्ल चाइल्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप में से गर्ल बनी रहे। ये भी सही। तो क्या लगता है सर आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बेटियों के बारे में, शारदीय नवरात्र के बारे में, उनका बच्चों के बारे में, जो कुछ भी आज खास है।
0: तो ऐसी कई कहानियां हमारे घर, हमारे

0: बिल्कुल ऐसा ऐसा होता
1: आपके साथ ऐसा होता है? ऐसे कई लोगों ने मुझे शेयर किया है कि जिन फ्रेंड्स की शादी हो गई है उनकी बच्चियां हैं, या बड़े लोगों को देखा जिनके छोटे बच्चे हैं, उन्होंने हमेशा बताया कि मेरी बेटी, अभी परसों की ही बात है, एक हमारे मिलने वाले बहराइच से आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची की फ़ोटो दिखाई, कहा ये मेरी बच्ची, और जैसे ही मैं पहुंचता हूँ गाड़ी की सिर्फ आवाज़ होती है, हॉर्न की भी नहीं, और बच्ची मेरी भागती हुई चली आती है।
0: सही बात है।
1: तो ये रिश्ता, ये जो बच्चियाँ होती हैं, एक वो सीन मुझे लगता है, और एक वो सीन जब देखता हूँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, पेरेंट्स बूढ़े होते हैं, माया बाप होते हैं, स्पेशली पिता होते हैं, कोई भी माँ होती है, तो जो लड़कियां दौड़ भाग कर रही होती हैं, दवा लेकर आ रही होती हैं, टेस्ट करा रही होती हैं, तीमारदार बनकर के लोगों की भीड़ में बैठी और लाइन में

0: खड़ी हुई नजर आती है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आज ऐसा दिन है, मुझे लगता है ये सब दिन फील करने का है। पूजा हम करेंगे, 9 दिन हम मनाएंगे, लेकिन जो वो रूप हमारे घर में हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी वाइफ, हमारी बेटी का है,
1: सही बात।
0: तो मुझे लगता है शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए,
1: वहाँ से होनी चाहिए।
0: क्या ये मेरा
1: शुरुआत घर से करें।
0: करेक्ट।
1: और हम सभी अपने घर से अगर शुरुआत करेंगे तुमको लगता है कि ये शुरुआत धीरे धीरे बड़ा रूप लेगी।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: क्या बात है। और देवियों के रूप में हमारे पास कुछ देवियाँ लगता है कि आ गई है यह, तो मतलब आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। और आप जानते हैं कि हमारे पास इस समय एक देवी पहले से मौजूद थी और दो देवियां हमारे साथ और जुड़ चुकी हैं। आप सभी उनकी आवाज़ से परिचित हैं और नारायणा में पढ़ती हैं। बहुत ही प्यारी सी बच्ची हैं। अपना नाम बताएंगी, क्या नाम बेटा आपका?
2: शानवी तिवारी।
1: लीजिए, मैंने पूछा उनसे था, बता आपने दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब बता दिया है तो बता दिया है। हाँ, आप बता दीजिए आपका नाम क्या है?
2: निमिषा तिवारी।
1: निमिषा तिवारी। तो जी हाँ,
0: हमारे बीच में शानवी और निमिषा ये दो प्यारी बच्चियां और आ गई हैं। अजीता जी पहले से ही मौजूद हैं और आज वो मिसाल कायम हो गई भाई, नवरात्र शुरू हुआ है और आज जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक जुड़े हैं हमारे पास में आए स्टूडियो में, वो
1: सब कन्याएं
0: के ही अवतार हैं, कन्याएं हैं। सही बात है। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस कराते हैं। और मुझे लगता है अजीता जी हमारे पास में मौजूद हैं, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कुछ तो लिखा होगा आपने आज के लिए।
2: हाँ सर, लिखा तो है।
0: अरे वाह, प्लीज हम तक। और
2: जो मैंने लिखा है, हाँ, उससे पहले सर्वप्रथम नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक बधाई। और ये जो निमिषा जी है, एक्चुअली मेरी फ्रेंड का नाम भी निमिषा था।
1: क्या बात।
2: एक जमाने में मैं भी निमिषा की फ्रेंड थी, निमिषा मेरी फ्रेंड थी।
1: तो आज भी वो आपकी फ्रेंड है, आप बना कर दे सकते हैं।
2: आ गई छोटी निमिषा। और बहुत क्यूट है निमिषा जी।
0: हाय।
2: और फिलहाल ये सब तो चलता रहेगा। और मेरी तरफ से भी बहुत सारी बधाइयां। जैसे आज क्या है, गर्ल चाइल्ड डे, वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे। तो आप लोगों की को बहुत सारी बधाई, क्योंकि मैं तो बड़ी हो गई, आप लोग छोटी हो, कन्याएं तो आप हो, मैं तो लड़की हूँ, देवियों का अवतार तो आप हैं। और इसी के साथ में मैंने एक जो लेख आज है, एक किस्सा है समझ लीजिए, और एक जख्मी परिंदे की और उसके दोस्त का एक किस्सा है।
1: क्या बात।
2: कि शुरुआत यहाँ से होती है कि शाम का वक्त है और एक लड़का है जिसका नाम पिंकू है, लगभग 15-16 साल का है, और वो अब शाम में अपनी छत पर टहल रहा है और उसकी छत के ऊपर से परिंदों का काफिला जा रहा है और उसमें से एक परिंदा जख्मी होकर उसकी छत पर गिर जाता है और पिंकू भाव विभोर होके, भावुक होके उसे तुरंत अपनी गोद में उठाता है, देखता है जख्मी है, उसके जख्मों पे मरहम लगाता है, बार बार मरहम दवा जो भी है उसका भरपूर देखभाल करता है, यहाँ तक कि कॉलेज कोचिंग सब भूल जाता है, फ़ोन क्या है, व्हाट्सएप क्या, फेसबुक क्या, सब कुछ भूल जाता है और दिन रात उसकी सेवा में लग जाता है। और वो जो जख्मी परिंदा है, ऐसा लगता है कि वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हों। जब वो परिंदा पिंकू की तरफ देखता है और पिंकू जब उसकी तरफ देखता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, आपस में दोनों कुछ बातें कर रहे हों। क्या बातें करते हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ रही हो। टाइम पे उसे खाना देना, उसके लिए पिंजरा लेके आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और जीव जंतु उसे कोई हानि पहुंचा दे, इतना ख्याल रखता है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसके जख्म भरने लगते हैं और वो लगभग एक महीना हो जाता है। अब पिंकू क्या करता है, उस परिंदे को फिर उसी छत पे लेके जाता है। एक दिन शाम में छत पे लेके जाता है, उस परिंदे का जो पिंजरा होता है जो लेके आता है, उसका दरवाज़ा खोलता है और वो पक्षी बाहर

0: निकलता है। जब बाहर निकलता है तो वो आसमान की तरफ देखता है, फिर से एक काफिला उड़ता हुआ जाता है। और जब वो काफिले को देखता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, उसकी आंखों में नमी होती है। फिर एक तरफ पिंकू को देखता है, फिर वो और दुखी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ पिंकू का प्रेम इतना, एक महीने में उसे एकदम ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई उससे। पिंकू से भी उसको प्रेम हो जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखता है, कुछ पक्षियों का झुंड जा रहा होता है। वो उड़ना चाहता है कि मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ कि यहीं रहूँ। फिर उस नम आँखों से, खामोश आँखों से वो पिंकू की तरफ देखता है, फिर पिंकू भी उसे देखता है। फिर देखिए वो दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। उस नम आँखों से ऐसा लगता है कि वो पक्षी क्या कह रहा हो पिंकू से, अब मैं वो आपको बताऊंगी।
1: क्या बात?
0: कहता है कि भर चुके हैं जख्म मेरे, अब इस पिंजरे से बाहर निकलने दो। कहता है कि भर चुके हैं जख्म मेरे, अब इस पिंजरे से बाहर निकलने दो। पंख पसार के इस नील गगन में अब मुझे फिर से उड़ने दो।
1: क्या बात?
0: इतना प्रेम हो जाता है,
1: मतलब ही मुकम्मल
0: से कहता है। फिर कहता है, बहुत दुआएं दे रही हैं रूह मेरी, कहता है बहुत दुआएं दे रही हैं रूह मेरी, दो इजाजत अब मुझे चलने दो। बड़े से इस घर में रहने की आदत नहीं मुझे। जो बड़ा सा पिंजरा उसके लिए लाता है उसकी सेफ्टी के लिए, उससे कहता है इस बड़े से घर में रहने की आदत नहीं मुझे। बिना खिड़की दरवाजे के तिनकों के घर में मुझे रहने दो। इतना प्रेम करता है उस लड़के, मतलब उस लड़के को जो रखता है कि हाँ इससे कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो हर चीज़ों के लिए केयर करता है। लेकिन वो बताता है कि मेरे भी कुछ हैं सोल रोल। तो वो बताता है कि बिना खिड़की दरवाजे के तिनकों के घर में मुझे रहने दो, मेरा काफिला इंतज़ार में है मेरे, मेरा काफिला इंतज़ार में है मेरे, मुझे मेरे साथियों के साथ एक साथ उड़ने दो। पंख पसारे खुली हवाओं में अपनी मौज में उड़ने दो, ये तुम्हारा रोज का इतना अच्छा खाना मेरी तलाश को रोक ना दे। रोज रोज उसके लिए अच्छा अच्छा खाना पकवाता है अपनी माँ से, उसके लिए लेके जाता है छोटी सी कटोरी में पानी लेके जाता है। तो कहता है कि ये तुम्हारा रोज का इतना अच्छा खाना मेरी तलाश को रोक ना दे, मुझे खुद से खोज के एक एक दाना चुनने दो। मेरे साथी सब कहीं एक डाली पे बैठे होंगे, कुछ तो गुफ्तगू होती होंगी, मुझे भी जाके सुनने दो। एक चिड़िया मेरे इंतज़ार में रो रही होगी, एक चिड़िया मेरे इंतज़ार में रो रही होगी, जाके मुझे उससे मिलने दो।
1: क्या बात?
0: क्योंकि उसका भी घर छोड़ जाता है, सबके माँ बाप होते हैं। जिस डाली पे घर है मेरा वहाँ भी अब सन्नाटा होगा।
1: क्या बात?
0: जिस डाली पे घर है मेरा वहाँ भी अब सन्नाटा होगा, मैं भी अपनी माँ का लाडला हूँ, मुझे भी मेरी माँ के साथ ही पलने दो।
1: क्या बात?
0: तुम्हारा ये प्रेम मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, कहता है तुम्हारा ये प्रेम मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, पर अब ये पंख मेरे खुलने दो,
1: खुलने दो।
0: फिर उसके बाद में वो पक्षी कहता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। उसके आगे भी कुछ लाइनें बोलता है कि ये दोस्त मैं जब भी तुम्हें याद आऊँगा अपनी चोंच में भर के, अपनी चोंच में भर के एक तिनका इसी छत पे ज़रूर छोड़ के जाऊँगा।
1: जाऊँगा? क्या बात?
0: आऊँगा जब ध्यान लगा के सुनना, आऊँगा जब ध्यान लगा के सुनना, तुम्हें मैं आवाज़ लगाऊँगा। फिर से भर लेना तुम मुझे अपनी गोद में, हमारी दोस्ती को मैं अपने साथियों को भी बतलाऊँगा।
1: क्या बात है?
0: चाहोगे अगर उनसे मिलना तो उनसे भी मिलवाऊँगा। अब तुम अपने छत पे माटी के बर्तन में पानी भर के रखना, मैं इसी बहाने पानी पीने आऊँगा। बहुत दुआ देती देगी मेरी माँ भी तुमको, जब ये किस्सा अपनी माँ को सुनाऊँगा।
1: सुनाऊँगा, क्या बात है भाई, भावनाओं को निचोड़ के रख दिया वास्तव में। और मुझको लगता है कि ये बात पिंजरे और परिंदे और व्यक्ति की नहीं बल्कि किसी और संबंध की हो रही थी। प्रतीकों का उपयोग किया गया इस कविता के माध्यम से।
0: जैसे होता नहीं है कि ये महसूस मैंने किया कि ये जो हम हों, हमारा घर परिवार है।
1: हाँ,
0: तो जीव जंतु हर किसी का परिवार होता है, जैसे गाय का बछड़ा होता है, पक्षियों के भी घर होते हैं। उसमें हम लोग अक्सर छोटे बच्चे रहते जब, तो पढ़ाया जाता था साइंस की बुक में कि ये देखो ये नेस्ट है, इसमें बच्चों का दिखाया जाता था, ये अंडे इसको कहते हैं, ये वाला इसको बाज कहते हैं, इसको स्पैरो कहते हैं, ना जाने कितने पक्षियों के नाम हमें बताए जाते थे। बस बहुत सी चीज़ें बताई गई, वही सारी चीज़ें फील होती हैं।
1: सही बात है, मतलब एहसास तो पशु पक्षियों को भी होता ही होगा, और लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बयां किया कि एक पक्षी का एहसास क्या होता है, मतलब एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आप आई। बहुत शानदार कविता है, क्या लगता है आपको अदनान सर?
0: थैंक यू सो मच सर।
2: बिल्कुल, सो मुझे लगता है लिखने वाले ऑब्जर्वेशनिंग का बड़ा अच्छा होता है, कभी छत पर टहलते हुए, कभी किसी से बात करते हुए, कभी किसी की बातों को सुनते हुए।
0: हाँ,
2: आपको फलसफे मिलते रहते हैं।
0: एक्चुअली एक मैम है मेरी और यहाँ पे वो आ भी चुकी हैं। तो शाम में, मैं परसों शाम में मैम से मैं बात कर रही थी,
2: ओके,
0: छत पे घूम रही थी, अचानक से देखा एक पक्षी जा रहा था और वो एक ही अकेला था। तो मैंने मैम से बोला, मैम देखिए वो पक्षी बहुत स्पीड में जा रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और अचानक से मेरी नज़र पड़ी। तो मैम ने कहा, तो मैंने कहा, मैम अरे वो अपने घर जा रहा है और देखो छूट गया शायद वो, इसीलिए जल्दी से जा रहा है। तो फिर अचानक से फिर मैं देखती हूँ कि वो पक्षी जाके फिर वापस आता, फिर एक चक्कर लगाता है, एक राउंड लगाता है, एक या दो तीन राउंड लगाता है। इतने में मैं ये देख रही हूँ और मैम मेरी बोली, नहीं वो छोटा नहीं है, वो अपनी मौज में है, वो घूम रहा है, तुम जान नहीं पा रही हो। और मैंने कहा, हाँ मैम सच में वो राउंड लगा के, दो तीन राउंड लगाया फिर गया धीरे धीरे। मैंने कहा, हाँ ये छूटा नहीं है।
2: सही बात है, देखने का नजरिया होता है। और हम तो कहते ही हैं कि इंसानों को भी अब परिंदों से, जानवरों से सीखना चाहिए कि अपनापन क्या होता है और आज़ादी से जीना क्या होता है।
0: हाँ सर, देखिए ना कि बिना पगडंडी के वो उनका काफिला जो होता है, एक साथ में एक लेन में जाता है, हमें तो बताना पड़ता, थोड़ा सीधे चलो, राइट चलो, लेफ्ट चलो, नहीं कोई नहीं बताता।
1: मैशर अफरीदी एक शायर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही इसके विरोधाभास में। उन्होंने कहा कि अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, अकेला छोड़ देंगे माँ को जिस दिन पर निकल आए। मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। गंभीर, अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, अकेला छोड़ देंगे माँ को जिस दिन
0: पर
1: निकल आए। जब तक उनके पर नहीं निकलते तब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी समाज की व्यवस्था को दर्शाता है कि बहुत सारे आप लोग देखेंगे कि अगर जो वृद्धाश्रम है, अगर आप वहाँ पर जाएं कभी तो आपको ये टच लगेगा कि वो लोगों के जो बच्चे हैं वो विदेशों में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया है। मतलब वो लगता है कि हाँ, उस दृश्य को देखकर लगता है कि हम अपने बच्चों को या तो संस्कार दें या तो काल दें। अगर इन दो में से एक चीज़ हम नहीं दे पाएंगे तो शायद ये वृद्धाश्रम की संख्या, मतलब पिछले 5 वर्षों में 8% बढ़ी है सर्वे के हिसाब से। तो ये भी मतलब वो जो आप बोल रही थी तो मुझको याद आया कि परिंदों को लेकर मैं शरद ने कहा था
0: जी
1: हाँ। तो हमारे
2: बिल्कुल मुझे लगता है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक भी ले लेते हैं।
1: हाँ हाँ,
2: क्योंकि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो और कैंडिडेट्स हैं, शानवी और निमिषा। सो चलिए अब म्यूजिकल ब्रेक के उस पर वापस से आके मिलते हैं और देखते हैं छोटो छोटी छोटी जो बच्चियां आई हैं ये क्या लेकर के आई हैं, बड़ा बड़ा तोहफा हमारे लिसनर्स के लिए आज की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पर। सो चलिए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस ब्रेक के बाद वापस से हाजिर हो रहे हैं हम आपके साथ आपके अपने ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम वाले प्रोग्राम में।

0: क्या बात है, क्या बात है भाई, पंजाबी तड़का
1: बहुत जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी सॉन्ग इस वक्त चल रहा है, मतलब लोगों के वेरी टेस्टी राइट। हाँ एक्चुअली मैं सबके स्टेटस पे और कहीं जैसे मैं भी ट्रैवल करता हूँ अक्सर कोई रील डालता हूँ तो उसके पीछे ये सॉन्ग जरूर रहता है। तो बहुत ज्यादा ट्रेंडी सॉन्ग है ये,
2: और मैं खुद कई दिन से दिन रात सुबह शाम इसी गाने को गा रही हूँ। मेरी कहती पूरे दिन नहीं गाना चाहिए लेकिन मैं रोक ही नहीं पाती अपने आप को इस गाने में।
1: सही बात,
2: टू गुड।
3: अभी जो दीदी का टेस्टी तो वैसे सानू दीदी को भी सॉस लगा के खा सकते हैं।
1: लो भाई आज तो लग रहा है किसी और की आत्मा आ गई निमिषा में, आज तो वो रूप दिखा जो घर पे होता है,
0: आज एकदम काली का रूप पहले ही दिन दिखाई पड़ रहा है,
1: काली का रूप पहले दिन आ गया, ये शिफ्टिंग हो गई
0: भाई। मतलब बता रहे हैं कि टेस्टी हम भी तो चटनी लगा के इनको खा लिया जाए, तो मतलब यही पर खाया जाए।
2: तो मुझे जीने मत देना।
0: जीने नहीं दूंगा,
2: मैंने रियल के चमत्कार किए, तुम्हें क्या पता
3: क्या चमत्कार किए।
2: मैं उस दिन स्कूल से आई थी, लाइट वो दिवाली का टाइम था, लाइट नहीं जल रही थी, मैंने उसको एक बार ऑफ स्विच ऑफ करके ऑन किया, वो जल गई। सोचो सोचो
3: चमत्कार नहीं है वो, दिस इज नॉट अ चमत्कार,
0: चमत्कार।
1: ओके दिस इज नॉट चमकत, दिस इज नॉट पटकत। सो भाई ये बताइए शानवी, इसके अलावा भी आप कुछ और लेकर आई हैं सुनाने के लिए? ऑलराइट सो मुझे लगता है नवरात्र है और नवरात्र से जुड़े कुछ प्रश्न आपसे आरजे मनु करने वाले हैं, बहुत सिंपल सिंपल से जनरल से क्वेश्चंस होने वाले हैं, अगर आपको पता होगा तो आप उसके बारे में जरूर बताइएगा। okay. ठीक है सो चलिए आप पूछिए।
0: अच्छा हाँ, ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है?
2: नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जो मैं बहुत शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ कि जो महिषासुर था तो उसका क्या था कि उसका आधा शरीर भैंस का था और आधा इंसान का था, तो उसको इसलिए उसकी खुद ही के राज्य में उसको बहुत सम्मान नहीं मिलता था जबकि वहाँ का राजकुमार था, तो इस मतलब तिरस्कार से परितंग हो आकर उसने 100 साल तक बहुत कठिन तपस्या की, यानी जल ताक दिया पूरा। फिर ब्रह्मा जी आए, उसको पता था कि अगर हम अमर वरदान मांगेंगे तो मना कर दिया जाएगा, तो उसने क्या कहा कि मुझे कोई भी पुरुष ना शस्त्र अस्त्र इन सब चीज़ों से ना मारे। तो फिर ब्रह्मा जी ने उसको वार्निंग दी कि तुम सिर्फ पुरुषों से ही मांग रहे हो, फिर वो मतलब औरतों से तुम्हें कोई वो नहीं है। तो उसने कहा औरतें मेरा क्या बिगाड़ पाएंगी, मुझे बस ये मंजूर है मुझे ये शर्त। तो उसने कहा कि ठीक है मत मैं दे देता हूँ। तो उसने फिर क्या हुआ कि जब ये पाने के बाद उसने वो चाहता था कि वो तीनों लोगों का स्वामी बन जाए, तो उसने सबसे पहला अपना वो किया स्वर्गलोक पर, तो वहाँ पे जितने भी देव थे उन्होंने अपनी पूरा बल लगाकर उसको मतलब रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि जो उसके पास जो सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत ही ज़्यादा उसमें अलग अलग तरह के जीव थे जंतु थे, तो इसलिए उनको हरा नहीं पाए वो देव। तो फिर क्या हुआ कि जब देव थक हार कर गए शिव जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास, तो उन तीनों ने अपनी दैव्य शक्ति से एक औरत को एक लेडी को वो किया, तो उसमें उन्होंने उसके 8-9 भुजाएं रखी जिसमें सारे देवताओं ने अपने अपने जो अस्त्र शस्त्र थे उन्होंने उसमें डाल दिए, तो मतलब उनको दे दिया। फिर उसके बाद जैसे शिव जी ने भी अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया और ब्रह्म जी ने वो शंख दिया, तो इसी तरह से सबने अपना वो दी अस्त्र शस्त्र दिए। फिर उन्हें बताया गया कि ऐसा ऐसा है और फिर आपको जाके इसमें करना होगा, तो फिर हो गई और लगातार 9 दिन तक ये सब लड़ाइयाँ चली। फिर जो आखिरी का 9वां दिन था उस दिन जो वो थी जो माता थी वो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने महिषासुर को हरा दिया क्योंकि महिषासुर तभी नहीं जीत पाए क्योंकि उन्होंने उसने मतलब अपने कई बार अपने रूप चेंज किया, कभी किसी कभी उसने अपने आप को सिंह उसमें बदल लिया, कभी उसने अपने आप को भैंसे में बदल लिया, और मतलब कई कभी उसने अपने आप को हाथी में बदल लिया। तो मतलब उसने कई अपने रूप बदले लेकिन तब भी वो आखिर में नहीं जीत पाया। तो इसीलिए हम लोग ये 9 दिन की नवरात्रि मनाते हैं।
0: अच्छा, इसमें आप उपवास कितने दिन रखेंगी?
2: उपवास
1: मतलब जनरल क्वेश्चन नहीं था, तो पर्सनल क्वेश्चन।
0: अच्छा, और माता जी के सभी रूपों में 9 रूपों में आपको कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद आता है?
2: ये अच्छा क्वेश्चन है। बट मैं तो उसमें सारी माता अच्छी लगती है, लेकिन देखा जाए तो एक मुझे ब्रह्मचारिणी अच्छी लगती है और दूसरी मुझे कालरात्रि अच्छी लगती है।
0: क्या बात है। और अदनान सर ने आज ब्रह्मचारिणी जी का दिन मनाया है क्योंकि इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए और सर ने पहन रखा है,
1: ये थोड़ा सा नीला है।
0: अच्छा
3: सफेद नहीं पहना।
0: हाँ देखो सफ़ेद है, सफ़ेद के साथ पिंक है, देखो इन्होंने भी अपना है। हाँ अजिता जी भी सफ़ेद कुचल कर पहना हुआ
2: नहीं,
0: ये वाइट वाइट
1: वो भी पहने पहने पीली हो गई।
0: घड़ी की सुइयां बता रही है कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः आपसे मिलेंगे आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम, क्योंकि ये है गोंडा ही नहीं बल्कि हम सभी के दिलों की
1: धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9816 9876 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो गोंटा, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और घड़ी में वक्त हो चला है 2:04 और 30 सेकंड बाय स्टूडियो क्लॉक। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आर्चुनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। एंड आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और मेरी एनर्जी देख के आपको समझ में आ गया होगा कि नवरात्रि का जो वाइब है वो किस कदर मेरे सर पे सवार हो चुका है फिलहाल के लिए। कैसे हैं आप सभी, चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो अंदाजा लगा लिया है मेरी तरह आप बहुत मस्त हैं, लेकिन अब आप कैसे हैं ये तो आप आगे बताने वाले हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज का स्पेशल वाला जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम है इंडिया टॉप 20, यानी कि भारत के 20 गाने, बॉलीवुड के 20 गाने, ऑफ कोर्स जिसमें हिंदी, पंजाबी, सैड, रोमांटिक, हाई बीट, पार्टी, वर्कआउट, हर एक तरह का प्लेलिस्ट शामिल होता है। आपके पसंदीदा सिंगर्स के प्लेलिस्ट शामिल होते हैं। और आज की प्लेलिस्ट में, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने आपका दिल तोड़ दिया था सैड गाने बजा करके, तो हमने सोचा क्यों ना इस हफ्ते आपका दिल जोड़ दिया जाए रोमांटिक गाने बजा करके। इसीलिए हम आए हैं आपके लिए लेकर के शफल मोड पे आपके अपने 20 बॉलीवुड के बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग, जिनकी गानों को सुन के ही आपको लगेगा कि हाँ, जज्बातों का फुहार कहीं टूट पड़ा है और आप उस वाटरफॉल में भीगने वाले हैं, क्योंकि आवाज़ इतनी खूबसूरत होगी, बोल इतने प्यारे होंगे, संगीत इतना नशीला होगा कि अगर एक बार आप सुनना शुरू करते हैं तो आप जा नहीं पाएंगे। इस बात की गारंटी हम दे रहा हूँ ना आपको, तो मान जाइए। फिलहाल आइए ट्यून करते हैं हमारा पहला गाना, और ये गाना स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास दो थॉट होते हैं। पहला थॉट ये होता है कि भैया प्यार व्यार बहुत खराब की चीज़ है, नहीं किया जाएगा, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन जैसे ही रात की घड़ी में बजते हैं दो, वो सोचते हैं फिर भी सोच लिया हूँ मनमा। जी आप समझ गए होंगे कौन सा गाना हम लेकर आए हैं। करा तो बेशक आइए एंजॉय करते हैं शांतनु की आवाज में पीके फिल्म से लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के आपकी खूबसूरती को बयां करते हुए। तो बने रहिए एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM विद राजे उन्नति। भूलिएगा नहीं मेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम छे, लेकिन मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वाली प्लेलिस्ट है। एंजॉय
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 20.

0: ओके तो आप एंजॉय कर रहे थे लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम पीके फिल्म से सोनिकम श्रेया की आवाज में, म्यूजिक डायरेक्टर है शांतनु एंड हमारे लिरिक्स जो लिखे हैं वो लिखे हैं अमिताभ वर्मा ने। वैसे अमिताभ से याद आया कि आज तो हमारे अमिताभ पाजी का जन्मदिन है ना, है ना, है ना। हाँ तो भैया 7 करोड़ कहाँ है, क्योंकि हमने सही गैस कर लिया है। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी रेडियो चौकी रति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ और वक्त चल रहा है यानी कि प्रोग्राम चल रहा है इंटर टॉप 20 अब, क्योंकि हमारे पीके भैया जो कि पता नहीं कौन से गोले से आए थे लेकिन आकर हमको समझा गए हैं कि लव वैसे तो वेस्ट ऑफ टाइम है लेकिन फिर भी सोच लिया हूँ मनमा, क्योंकि 32 बार तो शक्ल देखते हैं, बार बार बॉटल परफ्यूम लगाते क्यों, क्योंकि किसी एक इंसान को इम्प्रेस करना है और दिक्कत ये होती है कि पूरी दुनिया आपसे इंप्रेस हो जाती है, पूरी दुनिया के आपके जज्बात पता चल जाते हैं, हर दूसरा इंसान जान जाता है कि आप किसे पसंद करते हैं सिवा एक उस इंसान को छोड़ के जिसे आप पसंद करते हैं, उसको नहीं पता चलता, कभी पता नहीं चलता, ऐसा काहे है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वो इंसान कभी नहीं जान पाएगा कि आप उसे पसंद करते हैं, उसको लगता है कि आप तो यूं ही अच्छे हैं और आप सबके साथ अच्छे हैं, लेकिन किसी ने कहा था ये हमारा जो प्यारा सा लहजा है, ये हमारी जो प्यारी प्यारी बातें हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए हैं और हम इस लहजे में हर किसी से बात नहीं करते, शायराना मिजाज हो रखा है हमारा। फिलहाल के लिए हम अपनी इस लहजे को थोड़ा सा काबू में रखेंगे और हम बढ़ेंगे हमारे अगले गाने की तरफ। रोमांटिक गाने, रोमांटिक मौसम चल रहा है। वैसे कहते हैं कि अक्टूबर में जो है ना एक नई सीज़न चल रहा होता है, इसको दूसरा साल कहा जाता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। शाम में हल्की हल्की सी ठंड पड़ती है, दिन में थोड़ी सी धूप होती है, हवा चल रही होती है और वन ऑफ माय फेवरेट सीज़न है क्योंकि यहाँ से गुलाबी ठंड की शुरुआत होती है। अब गुलाबी ठंड क्या होता है, नहीं वो रंग में गुलाबी नहीं होता है लेकिन वो ऐसी ठंड होती है जिसमें आपको पसीना नहीं आ रहा होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ठंडे पानी में छपाक कर सकते हैं, आपको बुरा नहीं लगने वाला है, लेकिन रात होते ही वो जो ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे को छू कर गुजरता है बस उसे ही मैं कहती हूँ गुलाबी ठंड का पड़ना। और ये मौसम मुझे इतना पसंद है, स्पेशली अक्टूबर नवंबर और उधर फरवरी एंड मार्च, वन ऑफ माय फेवरेट सीजन्स, वन ऑफ माय फेवरेट मंथ जिनमें मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो भैया वो ठंड पड़ती है ना कि मन ही नहीं करता है कि कंबल से बाहर निकल जाए, फिर निकलना पड़ता है, मम्मी बर्तन भी धुलवाती है तो वो सीजन को थोड़ा साइड में रखते हैं। लेकिन हाँ, अब अक्टूबर थ्योरी को लेकर के इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अक्टूबर में जो लोग मिलते हैं यानी कि न्यू बिगनिंग का सीज़न है, यहाँ से पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो अक्टूबर थ्योरी को जो लोग मानते हैं उनका ये कहना होता है भाई कि आज यानी कि अक्टूबर से या तो आपके साथ कुछ नया होता है यानी कि कोई नया इंसान, कोई नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है या पुरानी कोई चीज़ आपसे रूठ कर चली जाती है। तो अक्टूबर में अगर आपसे कोई जाने की बात करता है ना तो उसको मत जाने दीजिएगा, क्या पता अक्टूबर थ्योरी आपके लिए भी सही हो जाए। हालांकि ये सिर्फ साइकोलॉजी है, लोग मानते रहते हैं, अब आप मानते हैं कि नहीं ये तो अलग बात है। फिलहाल हम मानते हैं कि अगले गाने का वक्त हो चला है और अगला गाना हम ट्यून कर लेते हैं, अगला सॉन्ग हम लेकर आए हैं मैं हूं ना से, क्योंकि मैं हूं, ऑफकोर्स मैं हूं यहां पर, बस आप नहीं हैं, आप कहीं मिसिंग है, आपका इंतजार चैट बॉक्स में हमको है और इन्जॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 19 तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, कहना नहीं है इसीलिए सुनेंगे हम, क्योंकि हम अगर हम कहेंगे तो आप भाग जाएंगे। एंजॉय करते रहिए सुरनिगम साहब की आवाज में। एसआरके पे फिल्माया गया गाना और एसआरके के साथ इस गाने में कौन कौन था, एनी गेस, कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो चैट बॉक्स में आइए, हाजिर लगाइए, नाम बताइए और एंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 का काउंटडाउन वाला शो सॉन्ग नंबर 19। स्टे ट्यून्ड
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 19.

तो भाई इतनी एनर्जेटिक बीट के साथ कि भैया मजा आ जाता है सुनकर के। पीछे बैठ के हम डांस कर रहे थे, ना जाने कितनी बार हम इस गाने को सुनते हैं तो एंजॉय करने लग जाते हैं, वाइब करने लग जाते हैं, एनर्जी मेरे अलग अलग उंगलियों में चली जाती है। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, इस गाने को लेकर हमारे जावेद अख्तर साहब बहुत ज्यादा नाराज थे। नाराज क्यों थे ये भी बताते हैं आपको। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, जो गाना है ना इसको लेकर के थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हुए थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि ये गाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जेटिक और कव्वाली वर्जन में दिया गया था, यानी कि कव्वाली की धुन इसमें डाली गई थी। और जब ये धुन बन रही थी तो अनु मलिक साहब ने इसमें कुछ टेम्परेरी वर्ड्स ऐड कर दिए थे, जिसमें था चेक दैट, लाइक दैट, विकेट, और ये सारे वर्ड जब इसमें ऐड हुए थे और ये जब लाइंस पहुंची जा करके हमारे जावेद अख्तर के पास, उन्होंने कहा ये क्या मजाक है भाई साहब, हमने इस गाने को कव्वाली वर्जन में बनाया है और तुमने इसके अंदर अंग्रेजी डाल दी है, ऐसे नहीं चलेगा। एसआरके कोई गाना बच रहा तो एसआरके ने भी कहा था ना हम नहीं करने वाले, ये गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, ये नहीं चलने वाला है। बट जैसे तैसे दोनों लोगों को मना वना कर ये गाना रिलीज किया गया और उसके बाद इस गाने ने इतना ज़्यादा धूम मचाई कि ये इस फिल्म का आइकॉनिक सॉन्ग बन गया। तो भाई जहाँ हमें कभी कभार लगता है ना कि एक्सपेरिमेंट थोड़े से ऊट पटांग हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं, वही एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में पूरे फिल्म को सबसे ज़्यादा हिट करने में आगे होते हैं। तो भाई हर एक गाने के पीछे ना एक कहानी ऐसी होती है जो सुनने में लगती है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा थोड़ी होता है, गाने जो रिलीज़ किए जाते हैं उसमें कोई भिड़ता थोड़ी ना है, बट ऐसा होता है क्योंकि कभी कभार किशोर दा की गाने में कुछ गलत अल्फाजों की वजह से भी वो उन गानों को रोका नहीं जाता, उनको गानों को रिटेक नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें लता जी की हल्की सी हंसी आ जाती है। कहीं गाना पूरा रिकॉर्ड हो चुका होता है और घर पे जाकर नहाते नहाते याद आता है, अरे बाबा ये गाने में तो ऐसा बोलना ही नहीं था, ये गाने का मतलब ही नहीं निकल रहा है। और जब तक ये बात हमें याद आती है तब तक गाना रिलीज़ हो चुका होता है और किशोर दा नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। वहीं पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जहाँ पर ना कंपोज़र मान रहे हैं ना मान रहे हैं एक्टर, बस बस बस डायरेक्टर साहब खुश हैं कि हम इस गाने को डालेंगे, मतलब डालेंगे। डायरेक्टर कंपोज़र में चल रही है चैलेंजबाजी कि अगर ये गाना चल गया था तो तुमको पैसा मिलेगा, नहीं चला तो हम तुमको पैसा भी नहीं देंगे। और उन सब गाने की कहानियाँ आपको कभी पता ही नहीं चलती, तो पता कहाँ से चलेंगे, हम बताएंगे ना। मेरा नाम उन्नति है, मेरे पास एक कहानियों का भंडार ले करके आती हूँ आपके लिए। इंडिया टॉप 20 में कुछ ऐसी किस्से कहानियाँ आपके पसंदीदा गानों के पीछे जुड़ी हुई तो शायद आप तक कभी पहुँची ही नहीं, तो उनको पहुँचाने का काम मेरा है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो है वो आफ्टर ऑल वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग है और सिखाता है कि भैया किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती तो हो ही नहीं सकती। एक ऐसी फिल्म जिसने ये दिखाया कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप उन्हें हौले हौले करवा सकते हैं, हौले हौले इंतज़ार कर सकते हैं। और इंतज़ार थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा दर्द भरा होता है, लेकिन इंतज़ार होता बहुत ज़बरदस्त है। और आपको भी पता है जब कोई मोहब्बत में इंतज़ार करता है ना तो भाई कुछ तो फील होता है। वो जो फिल्म है ना कुछ कुछ होता है, जी हाँ ये वही होता है जहाँ इंतज़ार होता है। तो भाई हमारे पास एक ऐसे एक ऐसा रोल है एसआरके का जो हमें यह सिखाता है कि भगवान ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मंदिरों में मिले, वो मोहब्बत में भी मिलता है, वो इस इंसान में भी मिलता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, और जिसे आप प्यार करते हैं उसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं करते, उसका इंतज़ार करते हैं और आपका इंतज़ार एक दिन उन्हें आपकी मोहब्बत में डाल ही देता है। कई लोग अपने पार्टनर के लिए

0: ये बदलना नहीं चाहते, बट ये कैरेक्टर सिखाता है कि अगर यार उसे पसंद है सोनी से ज़्यादा राज, तो क्यों ना राज ही बन जाया जाए, क्यों, नाम तो सुना ही होगा। अगर उसे पसंद नहीं है शर्ट वाले लोग, तो ना टी शर्ट ही पहन लिया जाए, उसे पसंद नहीं है सादा सिंपल, तो भैया चलो कोई बात नहीं, बाइक उठाकर रेस लगा ली जाए। और उसके अलावा भी अगर हमने पानी पूरी खाकर पेट भर लिया है और उसने घर पर खाना बनाया है, तो इस एफर्ट्स की कदर करते हुए हम बिरयानी भी खा ही लेंगे, क्यों, क्योंकि मोहब्बत है जनाब, मोहब्बत है। तो जबरदस्ती जहां हर एक चीज में दिखाई जाती है कि हाथ धोकर के ना धोकर के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा, वहां पर ये कैरेक्टर सिखाता है कि भाई इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार में भी रब होता है, मोहब्बत में भी रब होता है। रब ने बना दी जोड़ी से पेश करते हैं आपके लिए सॉन्ग नंबर 18, नाम है हौले हौले हो जाएगा प्यार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसमें बहुत ही बढ़िया सी शायरी है, वो शायरी किसने बताई है हम आपको बताएंगे लेकिन इस गाने के उस पार, तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 का सॉन्ग नंबर 18 विद राजनीति।
1: रेडियो 79.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 18।

0: आपने कई मर्तबा ये लाइन सुनी होगी, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और इसी गाने में इस्तेमाल भी किया गया है। यानी कि आप सुन रहे थे सॉन्ग नंबर 18 हौले हौले हो जाएगा प्यार। लेकिन कभी ये गौर किया है कि ये गाने की जो लाइन है ये आफ्टर ऑल लिखी किसने थी? वो कौन सा सयाना शायर था जिसका जिक्र इस गाने में किया जाता है? चलिए हम बता देते हैं भाई कि वो कौन है और ये लाइन कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, क्यों क्यों इस्तेमाल की जाती है। ये तो मैं आपको बता दूँ, इस गाने में जो ये लाइन इस्तेमाल होती है ना, ये जाने बॉलीवुड कितने सॉन्ग्स के अंदर है। और इनके पीछे जो राइटर हैं, जो शायर हैं, जो सयाना शायर हैं, वो कोई और नहीं जिगर मुरादाबादी हैं। एक उर्दू के बेहद ही मशहूर और दिग्गज शायर है और ये इनकी लाइन है कि ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इसी लाइन का इस्तेमाल इस गाने के अंदर भी किया गया था, जो कि आप सुखविंदर सिंह की आवाज में इंजॉय कर रहे थे हौले हौले हो जाएगा प्यार। भैया अब आप सोचिए जरा, किसी से आपको बेपनाह मोहब्बत है और आपके पास एक ऐसा इंसान बैठा है जिसने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, उसे अगर उस दर्द को समझाना हो, उस तकलीफ को समझाना हो कि इश्क में जो दर्द होता है वो किस तरह से होता है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? और उस पर हमारे ये शायर जी हैं वो लिखते हैं कि एक आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना होता है। यानी कि आप निकल नहीं सकते हो, आप बच के नहीं निकल सकते हो। अगर आपको इश्क करना है तो उस तकलीफ से भी गुजरना होगा, उस आग के दरिया में आपको डूबना ही होगा। और अगर आप डूबते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि इंतजार का, तकलीफ का, मोहब्बत का जो एक जुनून है, जो एक चीज़ है, जो एक फीलिंग है, वो क्या होती है। तो आप समझ में आ गई ना अगली बार जब आप ये लाइन सुनेंगे ना, कह के गया था शायर वो सयाना, तो सयाना शायर कौन है? याद रखिएगा कि वो है हमारे जिगर मुरादाबादी साहब। एंड चैट बॉक्स में हमारे साथ अरविंद जी जुड़ गए हैं और आपने लिखा है कि आवाज़ जानी पहचानी है। जय माता दी, जय माता दी आपको। और ये आवाज़ सच में आपके लिए काफ़ी जानी पहचानी है, ये मुझे भी पता है। एंड इसके बाद है कि आपको इतना ज्ञान कहाँ से आता है? हाँ, इतना ज्ञान हमें कहाँ से आता है? एक्चुअली हमारी नानी कहा करती थी कि अगर ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बांटोगे ये उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। इसीलिए मैं सोचा क्यों ना यहाँ बैठकर करोड़ों लोगों को ज्ञान बांट देते हैं, क्या पता करोड़ों का ज्ञान मेरे तक आ जाए। और यही हो भी रहा है, ये बुमेरंग की तरह मुझ तक वापस आ जाता है। और इसके बाद लिखा है आपने कि लगता है बादाम का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। बादाम के साथ साथ मैंने अखरोट भी बहुत खाए हैं और मेरा फेवरेट अखरोट ही है, तो कह सकते हैं कि मैंने बादाम से ज़्यादा अखरोट का फ़ायदा उठाया है। हम मोहब्बत ही नहीं करेंगे किसी से, क्या बात है भैया, मत कीजिए। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे? इसके बाद लिखा है पप्पू जी का मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा, आज फरमाइश नहीं होने वाली है। जी हाँ, आज संडे है तो आज फरमाइश नहीं होने वाली है। फिलहाल कोई बात नहीं, आइए ट्यून करते हैं हमारे अगले गाने को। अगला गाना वैसे तो ओरिजिनल फॉर्म है हमारी लता जी की आवाज में, लेकिन हम आपको एक रिमिक्स गाना सुनाएंगे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और एंजॉय करते रहिए काउंटडाउन वाला शो इंटर टॉप 20 संडे का स्पेशल वाला प्रोग्राम, जिसमें हम लेकर आते हैं बॉलीवुड के वो 20 गाने जो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। और आज की प्लेलिस्ट हमारी रोमांटिक गानों पर है, तो रोमांटिक गाने में सॉन्ग नंबर 17 पेश करते हैं आपके लिए, जो कि हर एक इंसान जो मोहब्बत में होता है, हर वो शख्स जो किसी ना किसी के प्यार में होता है, वो यही सवाल करता है कि मेरे नसीब में तू है या नहीं, ये तो मुझे पता भी नहीं। तो एंजॉय करते रहिए मेरे नसीब में, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 17.

0: और आप एंजॉय कर रहे थे क्या मुझे प्यार है। हाँ जी, आपको प्यार है, मैं बता रही हूँ ना, मैं स्टैंप लगा के नहीं दे सकती, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको प्यार है। किससे प्यार है? हमारे वाले शो से, यानी कि इंटर टॉप 20 से और इन बॉलीवुड के गानों से। नहीं है क्या? चलिए आप बताइए, है ना। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। गब्बर इज बैक से अरिजीत सिंह की आवाज़ में पेश करते हैं आपके लिए तेरी मेरी कहानी। और इस गाने के बाद हम मिलेंगे लेकर के हमारे बॉलीवुड की गपशप, कुछ चटपटी बातें जो कि बॉलीवुड से आ रही हैं, लेकिन कौन सी हैं ये हम आपको बताते हैं इस गाने के उस पार। तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 विद राजू रति। और आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना पहला FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 15.

0: हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे सॉन्ग नंबर 14 तुम हो तो लगता है, और बहुत खूबसूरत लगता है जब तुम साथ होते हो। गुलाबशाह सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड गुड आफ्टरनून मैम, गुड गुड आफ्टरनून टू यू। और आप तो सच में आफ्टरनून गुड होने लगी है जब से अक्टूबर लगा है। हालांकि अक्टूबर ने आते आते बहुत सारी चीज़ों को दर्शन करा भी दिया है। कभी बारिश होने लग जाती है, कभी ओले गिरने लग जाते हैं, कभी लगता है कि बाढ़ आ जाएगी जिसको हमारी भाषा में एलो बोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब इस बार अक्टूबर ना फुल ऑफ सरप्राइजेज आया है। हर बार त्योहारों से भर के आता था, लेकिन इस बार मौसम के बदलाव को भी साथ में लेकर आए हैं और मौसम बहुत तेज़ी से बदल भी रहा है। तो मैं चाहूँगी भैया आप लोग अपना ख्याल रखें, किसी को जुकाम, किसी को खांसी, किसी को वायरल, किसी को कुछ होता जा रहा है, आप तक ये ना पहुँचे इसका ख्याल रखिएगा। एंड भूत मिल गया होगा खूब में। नहीं, हमको कोई भूत नहीं मिला। एक्चुअली मैं मिलना चाह रही थी बट हमको भूत मिले नहीं। भूतों ने कहा तुम हमसे बड़े वाले भूत हो इसलिए साइड में बैठो, हम नहीं आ रहे हैं तुम्हारे सामने, इसलिए हम वापस आ गए थे। इसके बाद था अमित जी की मैसेज। ओके, अमित जी का मैसेज आया था, अमित चौधरी जी का, और लिखा है आपने कि महाराष्ट्र से सभी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी, और आपकी बातें बहुत ही एनर्जेटिक लगती हैं। थैंक यू सो मच। एंड सोयाबीन निकालने का काम चालू है और गाने बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अगर मुझे बता दिया है सोयाबीन का काम चल रहा है तो मुझे आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं सोयाबीन खरीदने आ रही हूँ, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया, पूरी कायनात सोयाबीन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सोयाबीन का ये खाएंगे, सोयाबीन का वो खाएंगे, क्योंकि हम दूध दही नहीं खा सकते, इसलिए हम सोयाबीन के पीछे पड़े रहते हैं। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, वन ऑफ माय फेवरेट गाना। और अगर किसी के रोमांटिक प्लेलिस्ट में ये गाना शामिल नहीं है तो जनाब शामिल कर लें, क्योंकि नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और गाने का नाम है जिया धड़क धड़क जाए। अरे क्या बात है, तो एंजॉय करते रहिए। और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि प्रभास की एक फिल्म है जिसको लेकर के बातें चल रही हैं, चर्चे में आ चुकी हैं उनकी कुछ बातें। 23 अक्टूबर को होगा कुछ तो रिलीज, और उसके बाद 2027 की स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा कोई नया तोहफा। क्या मिलेगा बताते हैं, इंतज़ार रखिए सब्र का फल। यहाँ बॉलीवुड की न्यूज़ होंगी लेकिन इस गाने के उस पार।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 13.

0: कितनी खूबसूरती के साथ राहत फतेह अली खान ने ये बात आपको समझा दी है कि जब हम उसको देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो किस कदर हमारा जिया धड़क धड़क जाता है, लगता है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब आपसे कोई बात अगर किसी को कहनी हो और आप नहीं बता पा रहे हो कि किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे उस फीलिंग को, कैसे उसे बताएंगे कि वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं, वो हमारे लिए क्या है, तो बॉलीवुड के जो नगमे हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। बॉलीवुड के नगमे इतने बेहतरीन होते हैं माशाल्लाह कि जब भी आप उनका इस्तेमाल करोगे ना अपने जज्बातों को बयां करने के लिए तो वो ऑन पॉइंट जाने वाले हैं। इसीलिए कुछ नगमे ऐसे बनाए गए हैं जो स्पेशली सिर्फ उन्हीं को डेडिकेट किए जा सकते हैं जिन्हें हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिन्हें जो हमारे ज़िंदगी में बड़े स्पेशल होते हैं। हर किसी को हम हर एक गाना भेज भी नहीं सकते, कुछ गाने स्पेसिफिक होते हैं और वो गाने सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनको देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनके प्रेजेंस को फील करने के बाद दिल को सुकून मिलता है। जब वो आसपास नहीं होते, उनके मैसेजेस नहीं आते, उनका कॉल नहीं आता, तो एक दिल में बेचैनी सी रहती है कि और यार जिसने बंदे ने कॉल नहीं किया, जिसने मैसेज नहीं किया, पूरी दुनिया जहान आपके साथ मौजूद होती है, आप एक महफिल में बैठे होते हैं, अगर फिर भी आपका दिल नहीं लग रहा है क्योंकि वो शख्स आपके पास नहीं है, तो कुछ ऐसे नगमे बॉलीवुड में ज़रूर हैं जो आप उन तक भेज सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप भरी महफिल में भी उन्हें याद कर रहे हैं। एक उनकी कमी आपको ज़रूर खलती है, आप चाहे कहीं भी चले जाएँ और जब वो आपके साथ होते हैं तो महफिल खुद ब खुद आपके साथ होती है, फिर आपको 50 लोगों की ज़रूरत नहीं होती। 50 में भी जिसकी कमी महसूस हो रही हो उस तक ये गाना ज़रूर भेजिएगा, जिनके जिनके नाम से, जिनकी नाम को अगर कोई ले भी लेता है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो अलग बात है कि आप छुपाते घूमते हैं कि नहीं हंसना नहीं है, दोस्त लोग परेशान करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई स्पेशल पर्सन है तो ऑफकोर्स, फिर चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसकी नाम को सुन करके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। और ये गाना स्पेशली उसी को ज़रूर भेजिएगा, डेडिकेट कीजिएगा। यहाँ पर आके ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसको डेडिकेट कर रहे हैं, बस चुपके से जाइए उस इंसान के मैसेज बॉक्स को खोलिए और ये गाना उस तक भेज दीजिए और साथ ही लिख दीजिएगा डेडिकेटेड टू यू ओनली। एंड आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अब क्योंकि हम बहुत ही सूथिंग गाने इंजॉय कर रहे हैं तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए पेश करना चाहूंगी सोनू निगम साहब की आवाज में बहुत ही प्यारा सा नगमा है। लेकिन उससे पहले हम बता दें फौजी को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं। फौजी जो कि 18 मार्च 2027 को रिलीज होने की चर्चे किए जा रहे हैं। इसी के अलावा प्रभास के बर्थडे पर यानी कि 23 अक्टूबर को लेकर के, यानी कि 23 अक्टूबर के दिन फौजी को लेकर के उसका टीजर रिलीज किया जाने वाला है। तो 23 अक्टूबर रिलीज किया जाएगा फौजी का टीजर और उसके बाद यानी कि आपको 18 मार्च 2027 में थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। आई होप, उम्मीद तो यही है, अगर कोई फिल्म क्लैश नहीं करती है, कोई रीजंस नहीं होते हैं तो 18 मार्च को आपको फौजी देखने को मिलेगी थिएटर्स के अंदर। तो भैया प्रभास के फैंस तैयार रहिएगा क्योंकि प्रभास की एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारी फिल्में लगातार आने वाली हैं। हालांकि उनकी स्पिरिट जो है, जो फिल्म काफ़ी चर्चे में चल रही थी जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया है, वो सलमान खान की फिल्म के साथ क्लैश कर रही है और इसी की वजह से शायद वो पोस्टपोन होने वाली है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे गाने की तरफ और गाने से पहले हमारे चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं महेंद्र दीपन फ्रॉम राजस्थान और आपने लिखा है गुड आफ्टरनून नमस्ते आर्जुनती मैम जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और एक घंटे से हम इंजॉय कर रहे हैं इंडिया टॉप 20। अब बारी है हमारे सॉन्ग नंबर 13 की तरफ बढ़ने की, और सॉरी सॉन्ग नंबर 12 की तरफ बढ़ने की। अब मुझे रात दिन सुरनियम की आवाज में एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 12।

0: प्यारी, इतनी सूथिंग और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा राहत देने वाली आवाज है, है ना। फिलहाल के लिए विकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज कॉलिंग वाला प्रोग्राम नहीं है, जी नहीं आज नहीं है, लेकिन हाँ कॉलिंग वाला प्रोग्राम होगा, वो है आपका हेल्थ वाला शो 4 से 5। सब्र करता हूँ तो मेहनत वाले फल ले जाते हैं, सब्र करता हूँ तो मेहनत वाले फल ले जाते हैं, और मेहनत करता हूँ तो सब्र वाले फल ले जाते हैं। दोनों साइड से बड़ा दुख है सर आपको। फिलहाल कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, इस बार सब्र भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, क्या पता दोनों के फल आपके पास आ जाएं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, पेश करते हैं आपके लिए के की आवाज में इंडिया टॉप 20 का अगला गाना, एंड बैक टू बैक आप एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 11, सॉन्ग नंबर 10 के की आवाज में, और दूसरा है 90s का गाना। पहला गाना जो आपके लिए पेश करते हैं वो है दिल इबादत, एंड हमारा अगला जो 90s का वर्जन है वो है आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो। ऐसा नाम सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 11।

क्या बात है भैया, क्या ये जबरदस्त गाने एंजॉय कर रहे हैं आप। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ऐ सनम। ज़ारा खान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत करते हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, कैसी हैं आप, आपका वेलकम करते हैं। नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। एंड धर्मेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं धर्मेश जी। एंड इसी के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगला सॉन्ग। ओके, अगला सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है जिसने आपको जाते जाते रुलाया बहुत होगा, क्योंकि मुझे रुलाया था। पता नहीं क्यों, उसके पोस्टर बड़े खूबसूरत थे, ऐसा लग रहा था कि फिल्म की कितनी हैप्पी

0: होने वाली है, लेकिन जब उसकी एंडिंग हुई ना तो लगा इस फिल्म को देख क्यों लिया था। अब देखने का मन करता है लेकिन इसलिए नहीं देखते क्योंकि एंडिंग में झेल नहीं पाते हैं। और फिल्म का नाम है क्योंकि इट्स फेट, और आइए एंजॉय करते हैं उस फिल्म से क्योंकि इतना प्यार करते हैं तुमको। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9।

0: अब आपके दिल का चैन कौन है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस गाने में जो आवाज है वो हमारे दिल की चैन जरूर है, क्योंकि इतना प्यारा गाते हैं भाई, लाखों दिलों को जीत कर बैठे हुए हैं और लोग इन्हें पागल कहा करते थे। लोग कहते थे तुम तो पागल हो। और पागलपन की जब सीमा पार होती है ना, जब पागलपन की हद पार होती है, तो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कर दिया जाता है। हर दूसरा इंसान फिर उनकी आवाज़ में पागल हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसकी बात यहाँ पर हो रही है। कौन है वो जनाब? अगर समझ गए हैं तो चैट बॉक्स खुला है बॉस, आकर बताइए कि ये जनाब कौन थे जिनको दुनिया ने पागल कहा और ये जनाब दुनिया को पागल कहते थे। वो एक डायलॉग है ना कि भैया मजनू को सब पागल समझते हैं और मजनू सबको पागल समझता है, और ये डायलॉग हमारे किशोर दा पे ज़्यादा फिट होता है ना। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं, रोमांटिक गाना है ऑफकोर्स, अरिजीत सिंह की आवाज में होने वाला है आशिकी 2 से, और ये वो गाना है जिसने अरिजीत सिंह की पूरे करियर को बदल के रख दिया। अरिजीत सिंह जो एक कंपटीशन में भी गए थे जहां से वो जीत नहीं पाए, लेकिन हाँ उन्होंने लगातार अपनी आवाज़ पर काम किया, घंटों रियाज किया, और रियाज की में जो मेहनत होती है ना उसका फल जो मिलता है, देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। हाँ वो अलग बात है कि कभी कभार बुड्ढे हो जाते हैं फल लेते लेते, बट जब भी मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। और उन्हीं की आवाज़ में जब इनका पहला गाना रिलीज़ हुआ था आशिकी 2 में, तो वहां से उनके करियर को मिल गई थी वो सीढ़ियां, या फिर कहें तो वो बूस्टर मिल गया था जिसके बाद पीछे पलट कर देखना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। गाने का नाम है तुम ही हो। एंजॉय करते रहिए। आई नो ये आपके दिल को कहीं ना कहीं जरूर टच करने वाला है, बहुत ही प्यारा गाना है। इवन अगर आप इस गाने को भूल भी गए होंगे ना कि कई सालों पहले इस गाने को सुना था, अगर इसकी धुन आज भी अगर आपको कहीं कानों में पड़ जाती है, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर, किसी कार के अंदर, किसी ऑटो के अंदर, बस के अंदर, हालांकि बस में तुम्हारे 90s के नगमे ज्यादा चलते हैं और उनका वहीं पर राज होता है। और राज से मुझे याद आया कि राज मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोंडा से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। धर्मेश जी की वापस से एंट्री हुई है, हेलो मैम, हेलो, कैसे हैं आप? और आपका तीसरी बार स्वागत करते हैं फिलहाल। तो आइए एंजॉय करते हैं और सुनते रहते हैं आशिकी 2 से अरिजीत सिंह की आवाज में तुम ही हो। मिलते हैं अगले गाने पर, 90s का सॉन्ग होने वाला है, क्योंकि अभी तो आप एंजॉय कर रहे थे किशोर दा। देखते हैं आगे आगे आपके पास कौन कौन से सिंगर आते हैं, सो बने रहिए, सुनते रहिए आपका काउंटडाउन वाला शो इंटर टॉप 20 विद राजुनति, और ये है रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 7.

और आप एंजॉय कर रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में आशिकी 2 से तुम ही हो। एक लौता ऐसा गाना है ना जिसको सुनने के बाद अगर आपको किसी से मोहब्बत नहीं भी है तो भी हो जाती है, इवन आपको लोग याद आने लग जाते हैं और आपको भी नहीं पता चलता कि कौन है वो लोग जो मुझे याद आ रहे हैं। अरिजीत सिंह की आवाज, अरिजीत सिंह के गाने, मम्मी के ताने बहुत ज्यादा फेमस है वैसे भी इस दुनिया में फिलहाल के लिए। एक और ताना है जो आजकल बॉलीवुड को बहुत तेजी से मिल रहा है, अब किस फिल्म को लेकर के है अब वो भी बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। हम आपको बता दें कि नवंबर 2026 में यानी कि आने वाले बस एक महीने में ही एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका नाम कुछ ऐसा है। अब कुछ लोग तो उसके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग हमेशा से जैसे ट्रॉल करते रहते हैं वो करते रहेंगे, 50-50 हमेशा दुनिया चलती रहती है। कुछ आपके सपोर्ट में होते हैं, कुछ आपके अपोजिट में होते हैं, और जैसे ही आप हिट होते हैं वो अपोजिट वाले भी आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। ये तो रही बात हमारी असल जिंदगी की, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड में हाल फिलहाल में एक पोस्टर रिलीज किया गया है, नाम है कजिन ईशा, यानी कि चचेरी या फुफेरी बहन ईशा। अब ये कहानी घूम रही है एक ऐसे लड़के के पास जिसका नाम है अजीत। अजीत जो कि आजमगढ़ में ये फिल्म को शूटिंग की गई है, तो भैया वहां से एक लड़का निकल कर आया है अजीत नाम का, जिसको अभी अभी प्यार में धोखा मिला है। धोखा खाने के बाद उसकी जिंदगी काफी बेरंग हो चुकी है, टूट चुकी है, बिखर चुकी है, वो खुद भी टूट चुका है। और उसी शहर में एक लड़की रहती है दूर की कजिन। अब दूर की कजिन यानी कि चचेरी फुफेरी ममेरी बहन उसकी रहती है, और वो बहन जिसका नाम है ईशा वो उसकी जिंदगी में अपनी एंट्री करा लेती हैं, या फिर कहें तो कर लेती हैं। अब इन दोनों के बीच यानी कि इर्द गिर्द कहानी घूमने वाली है कि किस तरह से कजिन ईशा जो है और जो वो लड़का है अजीत उन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं, और इसी को ले करके हमारे लोग जो हैं थोड़े से परेशान हैं कि ये कहानी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अब क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ इसका पोस्टर रिलीज हुआ है, पोस्टर पर ही इतना बवाल हो चुका है कि शायद बॉलीवुड को ये फिल्म रिलीज करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, इस पर उनका सोच विचार करना तो बनता है। मे बी आपको नवंबर में नियर बाय थिएटर्स यानी कि पास वाले थिएटर में आपको देखने को मिल जाए ये फिल्म, और अगर आप देखने जाने वाले हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। बाकी रही बात रिव्यू एंड रेटिंग्स की, उसके लिए तो आपकी आजमती बैठी ही है। आप जाने से पहले यहाँ से रिव्यू ज़रूर कलेक्ट करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जाना है या नहीं जाना है, किसके साथ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, और अगर आप जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन पर पानी ना फेरा जाए, उसकी जिम्मेदारी है मेरी। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग पेश करते हैं सॉन्ग नंबर 6, एक दिन तेरी राहों में बाहों में आऊंगा। ये गाना आपको याद होगा, याद है ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है। फिल्म भले ही आप भूल गए हो लेकिन ये नगमा आप नहीं भूल सकते, इस गाने को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हो। तो एंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 का काउंटडाउन वाला सॉन्ग, सॉन्ग नंबर 6, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए आप सुनते रहिए गोंडा का अपना FM रेडियो 89.6 FM विद योर होस्ट एंड दोस्त एंड अपनी आप रेडियो चौकी होती के साथ।

0: एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, तो पेश करते हैं आपके लिए सॉन्ग नंबर सिक्स के बाद एक्चुअली सॉन्ग नंबर फाइव। महेंद्र दीपन जी की तरफ से आ गया है मैसेज, और क्या आपने 20-30 किलोमीटर की ड्राइव कर ली है, क्योंकि आप घूमने निकल गए थे ना, घूमी करने गए थे आप, मुझे याद है। सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, लगता है मैम ने मेरी प्लेलिस्ट चुरा ली है। क्या सच में ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं अपने पसंदीदा गानों को लेकर आती हूँ, मुझ पे इल्ज़ाम लग जाता है कि मैंने आपकी प्लेलिस्ट चुरा ली है? कभी गुलफ्शा जी, कभी धर्मेश जी, कभी जारा जी, कभी ये, कभी वो, लगता है मेरे पास सबकी प्लेलिस्ट है, या कहें मेरी प्लेलिस्ट ही सबके पास है। उल्टा भी तो हो सकता है ना। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। सॉन्ग नंबर फाइव पेश करते हैं आपके लिए कयामत से कयामत तक उदित नारायण अलका जी की आवाज में, ए मेरे हम सफर। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर फाइव।

0: कयामत से कयामत तक आप एंजॉय कर रहे थे उदित नारायण अलका जी की आवाज में आए मेरे हम सफर एनएसी के साथ। आप बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। इट्स कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। ओहो वाओ वेरी गुड आफ्टरनून आज उन्होंने। गुड आफ्टरनून टू यू इट्स कुमार जी, आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं हम इन द टॉप 20 में। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और आपके लिए पेश करते हैं सॉन्ग नंबर 4 यू तेरा मेरा मिलना। हिमेश रेशमिया श्रेया जी की आवाज में एंजॉय करते रहिए। सॉन्ग नंबर 3 है मरजावा फिल्म से किन्ना सोना जुबिन नौटियाल की आवाज में। इसके बाद हम मिलते हैं दो बेहद ही अंडररेटेड और मेरी प्लेलिस्ट के दो बेहद ही खास गानों को लेकर के, तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि आखिरी का जो सरप्राइज होता है ना वो सबसे ग्रेट होता है, क्योंकि वो मेरी प्लेलिस्ट का सबसे अंडररेटेड गाना और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है। तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 4।

0: हां जी, और था भाई किन्ना सोना, और हमारे इट्स कुमार जी लिख रहे हैं किन्ना सोडा, सोडा में पी गया, आई लव सोडा। ऑलराइट, फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। मिस्टर ऑप्टिकल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और पेश करती हूँ आपके लिए मेरी प्लेलिस्ट से दो बहुत ही अंडररेटेड लेकिन मेरे बहुत ही ज्यादा पसंदीदा गाना। पहला गाना है तेरे बिना लगता नहीं जिया, और सॉन्ग नंबर वन है सोनू निगम साहब की आवाज में मेरे सिवा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अब चाहूंगी आपसे इजाजत क्योंकि बच गए हैं चार और वक्त है आपसे विदा लेने का। मेरी मुलाकात होगी बस कुछ ही लम्हों में आपसे अपने अगले वाले शो हेल्थ वाले शो में, तो सुनना मत भूलिएगा। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज की प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी, फीडबैक में जरूर से बताइएगा। ख्याल रखिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम विद राज उन्नति, एंड रीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई थी। आपका स्वागत करते हैं रीना जी उत्तराखंड से गोंडा तक। कंटिन्यू रखिएगा, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।
1: यू गॉट अ 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 2।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञानस्थली का सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए स्मार्ट है अच्छी और ज्ञानस्थली की साझा पहल, जिसके अंदर बात होती है आपकी अपनी सेहत की। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौक यूनिति, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त हमारी हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी। सर, आपका स्वागत करते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी आ चुके होंगे हमारे पास, और अगर नहीं आए हैं अभी तक तो जल्दी से आ जाइए, अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए या हमें कॉल करके अपनी समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं।
0: और हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429, आई रिपीट 6393316429, जिस पे कॉल करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी हैं आपके हेल्थ से जुड़े हुए, यानी कि आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए। तो फिलहाल सर ये बताइए, आप हैं कैसे?
1: जी, हम बहुत अच्छे हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि आप कैसी हैं।
0: मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छी हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ। और इस वक्त तो भाई आजकल एक इशू है जिसको मैं फेस कर रही हूँ।
1: अच्छा, ऐसा क्या इशू है जिसको आप फेस कर रही हैं और जिसका समाधान हमें, मतलब आपको अभी तक नहीं मिला?
0: एक्चुअली ये मिल भी नहीं सकता है, रीज़न ये है कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा, तो स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ क्या इशू आप फेस कर रही हैं?
0: क्योंकि कल आपको भी पता होगा, कल 10 तारीख थी, 10 अक्टूबर को हम मेंटल हेल्थ के लिए और हमारी आंखों के लिए स्पेशली दो दिन मनाते हैं।
1: जी,
0: कल साइड डे था, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी के लिए एक बहुत ही विशेष दिन था, जो हम, क्योंकि कल सैटरडे था तो हम नहीं कवर कर पाए थे इसको।
1: जी जी,
0: तो सोचा आज इसी पे बात कर ले, क्योंकि हर एक शख्स की आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुकी है।
1: जी,
0: जो लोग ऑफिस में बैठ के लैपटॉप के सामने, पीसी के सामने बैठे रहते हैं लाइक मी, उनका तो स्क्रीन टाइम बढ़ ही रहा है, फिर चाहे वो फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो। जो बच्चे हैं उनके भी स्क्रीन टाइम को दिन ब दिन बढ़ते देखा जा रहा है, घर पे कोई है उनका भी बढ़ रहा है, हाउसवाइफ्स का भी बढ़ रहा है, मतलब हर दूसरा शख्स इसी से परेशान है कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। कई कई लोगों का स्क्रीन टाइम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि वो 22-22 घंटे स्क्रीन पर रहते हैं।
1: जी जी,
0: और इसकी वजह से आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एंड क्योंकि मेरी जो राइट आई थी स्पेशली वही स्क्रीन के सामने ज़्यादातर रहती थी, तो आंखों पर जो ज़्यादा प्रेशर पड़ा है वो मेरी दाई आंख पर ही ज़्यादा पड़ा है, और इसका इम्पैक्ट भी मुझे पड़ा। अब इससे पहले कि ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट होती, मैंने तो चश्मा बनवा लिया ये सोचकर कि चलो कुछ तो फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा नहीं ब्लू कट बनवाया है ताकि मैं यूवी रे से बच सकूं। बट इसके बाद भी जो स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, और ये लोगों को आई थिंक मेंटल इश्यूज़ भी क्रिएट कर रहा है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेंटल इश्यूज क्रिएट कर रहा है स्क्रीन टाइम आप जो बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जो आजकल की लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस, जैसे जो प्रोफेशनल काम है उनमें भारी मात्रा में कंप्यूटर और ऐसे गैजेट्स का यूज़ हो गया, टैब जैसे गैजेट्स का लॉन्ग टर्म यूज़ हो गया, और जिनको ऐसा कोई कार्य नहीं भी करना है वो भी अपना जो पर्सनल मोबाइल फ़ोन चलाते हैं वो उन गैजेट्स का यूज़ हो गया। ये बहुत ही बड़ी आप परिवर्तन देखने को पाएंगे कि आज के लगभग 10 से 15 वर्ष पहले का समय 20 वर्ष आप मैक्सिमम मान सकते हैं, और उन 20 वर्षों के बाद फिर क्या परिवर्तन आए हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत ही तेज़ी से जो है ये ब्लू लाइट और ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करना स्टार्ट की हैं, और जिसके वजह से बहुत सारे नए आँख के पेशेंट्स, कई सारे यंग पेशेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो हमको बेसिकली पहले बहुत ही कॉमन देखने को मिलता था कि किसी छोटे बच्चे को आँख में मोटा चश्मा लगा हुआ है। चश्मा भी छोटे को बहुत कॉमनली देखने को मिलता था, जब दिखता भी था तो ये लगता था कि अरे इस बच्चे को कोई दिक्कत है, बट अभी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम आप क्लास में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप देखिए आपको बहुत से ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो चश्मा लगा करके पढ़ाई करते हैं या फिर वहाँ रहते हैं। तो बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इसका बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसके कई गंभीर परिणाम हैं, और जो सबसे ज़्यादा एक जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी मतलब चलते फिरते नहीं हैं, उनको दूध पिलाया जाता है या चल फिर रहे हैं अभी, वो पढ़ने नहीं जाते हैं, उन बच्चों को क्या है कि वो रोते गाते हैं तो उनको डाइवर्ट करने के लिए उनको पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ये उनके ना सिर्फ जो नेत्र है, आँख है, उसके विकास पे या उसके हेल्थ पे प्रभाव डाल रहा है, ये उनके मनोवैज्ञानिक, हमारे शरीर के जो मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट होती है, जो साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है, उस पे एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और गहरा छाप ये डाल रहा है। इस पे चर्चा करने का मुझे लगता है कि आज ये बहुत ही अच्छा समय और समय टाइम सब कुछ एक बहुत अच्छा

0: बन रहा है।
1: बिल्कुल, क्योंकि कल ही हमारे पास ऐसी दो चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, आपकी आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है स्क्रीन की वजह से वो आपके मेंटल प्रेशर को भी क्रिएट करता है। और आजकल आप नोटिस करेंगे कि पहले जो हमारे पास फोन नहीं होता था
0: जी,
1: तो हम याद करते थे कैसे, छत पर जाते थे, अपनी किताबें उठा लेते थे, घूम घूम के टहल टहल के याद किया करते
0: पढ़ते थे,
1: रटते थे बैठकर कि नहीं याद होगा, और एक एक वर्ड हमें याद होता था। बट आजकल ऐसा है कि हर एक सवाल का जवाब हमें चैट जीपीटी दे देता है, तो हम ना खोजने की कोशिश करते हैं ना उसे याद करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इवन ये हमारे पास जो दिन भर गैजेट्स होते हैं, इनकी वजह से हमारी मेमोरी और हमारे फोकस में भी परिवर्तन आया है। ऐसा मुझे लगता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा फोकस बार बार कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है। मन करता है 5 मिनट के लिए रील्स देख लें, 5 मिनट कब वो हो जाता है कि 5 घंटे हो चुके हैं, और पता चलता है कि अगली सुबह एग्जाम है, फिर एक प्रेशर क्रिएट होता है, फिर सोचते हैं फिर पढ़ ले, फिर सोचते हैं अरे यार चलो कोई बात नहीं 5 मिनट का फिर ब्रेक लेते हैं, तो फोकस नहीं बन रहा है। पहले हम घंटों घंटों जब तक वो याद नहीं हो जाता था एक चैप्टर, हम लगे रहते थे। अगर बोर हो रहे हैं तो आसपास के नज़ारे देख रहे हैं, खेलने में बिजी हो गए, बट फोन का इतना यूज नहीं था
0: जी।
1: और बच्चों का आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें फोन दे दिया जाता है, और वो लत इतनी गंदी लगती है कि फिर वो खाना भी नहीं खाते जब तक उन्हें फोन नहीं मिल जाता।
0: जी बिल्कुल, अमूमन ऐसा सभी घरों में होता है। मैं अपने घर में भी देखता हूँ जो बच्चे हैं वो ऐसी गतिविधियां करते हैं, तो इससे क्या क्या दुष्परिणाम हैं, उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, या आपके घर में भी ऐसा कोई समस्या इससे संबंधित है तो बिल्कुल आप हमसे साझा करिए। और चलिए आज हमारी चर्चा में जानते हैं कि
1: चलिए आपसे एक सवाल करती हूँ मैं
0: जी।
1: क्या आप सुबह उठते सबसे पहले आपका जो हाथ होता है वो कहाँ जाता है, मतलब फोन के पास जाता है?
0: फोन पे नहीं जाता है मेरा हाथ जी, मेरा हाथ फोन पे नहीं जाता है। हाँ, मैं उठने के बाद एक बार ये जरूर चेक करता हूँ कि कई बार मुझे क्या होता है, कई सारी कॉल्स मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही आना स्टार्ट हो जाती है,
1: वो एक मैसेज चेक करने की जो आदत है कि कहीं इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, उसके बाद फोन रख दिया जाता है।
0: जी जी, बस केवल ये होता है कि कोई अर्जेंट कॉल्स ना ही हो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग भी कई सारे पेशेंट्स वो कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सिर्फ वो नोटिफिकेशन चेक होता है, उसके बाद फिर मैं अपना पानी वानी और ये सब चीजों की तरफ ध्यान देता हूँ।
1: चलिए, और हम बता दें भाई कि मैं दूसरों को सलाह देने से पहले खुद भी यही करती हूँ कि मेरी सुबह मेरी कुत्ते की आवाज से होती है
0: जी।
1: और उसको उठाते ही सबसे पहले फोन को चार्जिंग से निकाला जाता है, एंड मैं अपना फोन भी दूसरे रूम में लगा कर आती हूँ
0: जी।
1: उसके बाद उसको साइड में रख दिया जाता है चेक करके किसी का कोई मैसेज नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आते भी नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे कॉल्स नहीं आते हैं
0: जी,
1: इसलिए मुझे और भी सुकून है कि फिक्र ही नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आता है तो अलग बात है, अदरवाइज ना मैसेज है ना कॉल है, फोन रख दिया गया है, कुत्ते के साथ बाहर घूम के आए हैं, आकर वापस से ब्रश और अपना गर्म पानी पीना, एंड इसके बाद जाकर के कहीं फोन उठता है जब मुझे खाना बनाने की बारी आती है
0: जी। तो बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स में जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कई सारे इससे गंभीर समस्याएं भी हमारे आसपास इर्द गिर्द हो रही हैं, हमारे शरीर में हो रही हैं, फिजिकली मेंटली एंड साइकोलॉजिकली हर तरह से हो रही हैं। रेडिएशन से लेकर के इसका जो ब्लू लाइट है वो तक हमारे लिए कितना हार्मफुल है, इस पर आज हमारी ये चर्चा आधारित होने वाली है। और चलिए जानते हैं कि उन्नति मैम का क्या है अगला प्रश्न।
1: पहला सवाल तो मेरा यही है कि हम जो दिन भर स्क्रीन पर रहते हैं ये हमारी आंखों को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है?
0: बिल्कुल, देखिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको आप बेसिकली हो सकता है हमने सुने हों और हमारे लिसनर्स ने भी सुने होंगे वो टर्म्स। जैसे एक होता है ब्लू लाइट हजार्ड, अभी आपने चश्मे के बारे में ये वर्ड यूज़ किया कि ब्लू कट कराया है, तो जो स्क्रीन की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो मतलब जो इसका प्रोटोटाइप होता है कि ये किस तरह से लाइट को ट्रांसमिट करेगी और जो इससे निकलने वाला जो प्रकाश होता है उसमें अल्ट्रा वायलेट के पार्टिकल्स के भी कण होते हैं, और वो जो ब्लू लाइट होती है जो स्क्रीन से निकलती है उनको, अच्छा एक चीज़ और है, जैसे किसी भी गैजेट को हम बहुत दूरी से नहीं देखते हैं, जैसे अगर जैसे हम सिनेमा की बात करते हैं तो वो प्रोजेक्टर लाइट होती है, बट वो जो डिस्प्ले होता है वो बहुत दूरी पर होता है,
1: काफी दूर,
0: तो हाँ दूर कर दिया जाता है। बट जो ऐसे स्मॉल गैजेट्स होते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में हम करते हैं, जो हम फोन चलाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि रात में लेटते वक्त जो फोन यूज करते हैं तो वो फेस के बहुत ही ज्यादा करीब लोग करके उसको यूज करते हैं।
1: रात में फोन फोन तो यूज करते हैं लेकिन हम ऑडियो सुनते हैं, वीडियो नहीं।
0: हाँ, तो मतलब जो भी चीजें लोग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसकी जो लाइट है वो डायरेक्ट हमारी आंखों में जब पेनिट्रेट करती है तो हमारे विजन को धीरे धीरे इम्पैक्ट करती है। छोटे जो बच्चे होते हैं, अब जैसे जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट हैं, जिनका आईज लेंसेज ब्रेन ऑप्टिक नर्व्स ये सारी डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिनको उनको जितना एलेबोरेट करना था वो कर चुके हैं, सीख चुके हैं बेसिक चीज़ें, उनके लिए तो चलिए ठीक है, वो सिर्फ आँखों तक ही सीमित है वो समस्या या जो रेडिएशन हमको प्रॉब्लम कर रही है। बट जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी 2-3 साल के हैं, ये फ़ोन को लंबे समय तक यूज़ करते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बच्चों की साइकोलॉजी पर इतना गंभीर इम्पैक्ट डाल रहा है, जो हमारे ब्रेन का जो मेमोराइज करने वाला हिस्सा होता है, जो हमारे ब्रेन का किसी भी चीज़ को एलेबोरेट करने वाला हिस्सा होता है, प्रोसेस करने वाला हिस्सा होता है कि हम इस चीज़ को कैसे करें, जो क्यूरियोसिटी जहाँ उत्पन्न होती है किसी भी कार्य को करने की, जो ये ब्रेन की एबिलिटी होती है कि वो नया कुछ ट्राई करके किसी भी पजल को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, इसको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलब पावरफुल तरीके से ये जो फ़ोन का यूज़ करना है ये कंप्रेस कर रहा है बच्चों में। और इसके वजह से बच्चे फिर क्या है कि वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो देख नहीं रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं। जब बाहर जा रहे हैं तो जिस तरह एक बच्चों की गतिविधि होनी चाहिए, ये क्या है वो क्या है, ये क्यों होता है वो क्यों होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों में अभी लैक कर रही हैं, कम देखने को मिल रही हैं। और इससे मतलब इसके बहुत ही गंभीर परिणाम की आशंका जताई जा रही है भविष्य में।
1: बिल्कुल, क्योंकि किताबें और बाहर की दुनिया आपको सोचने का मौका देती है, आप बाहर निकलते हैं आपका दिमाग चीज़ों को देखता है। अब मुझे याद है मैं बहुत सवाल करती हूँ हर बात पे, क्यों क्या कैसे किस लिए, और इससे कई बार लोग मेरे घर में इरिटेट हो जाते हैं कि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। बट मुझे लगता है कि जिन बच्चों के दिमाग में ये क्यों का जो एक सवाल रहता है, इनके पास सोचने की पावर भी होती है, ये हर एक चीज़ को सोचते हैं। अगर आपने कुछ कहा है तो क्यों कहा है, किसने कहा था,
0: बिल्कुल
1: कहां से आया है।
0: बिल्कुल, अभी कल ही किसी चर्चा में एक कोई मीटिंग हो रही थी डॉक्टर्स की, और उसमें कुछ ऐसा ही टॉपिक पे एक डिस्कशन चल रहा था, टेबल डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें किसी टॉपिक पर मैं ही बोल रहा था और मैंने ये बात रखी कि ये जो क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा, ये क्यों है, कैसे है, ये क्यों होता है, कब होता है, कहाँ से आता है, कब से स्टार्ट हुआ, यही वो चीज़ है जो हमें नॉलेजेबल बनाती है, यही वो चीज़ है जो किसी के ब्रेन को शार्प बनाती है। और वही वो बच्चे होते हैं जो आगे चल के कुछ बड़ा करते हैं, जिनके मन में बचपन से ही प्रश्नों का, आप किसी भी बड़ी हस्ती को देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक, जितनी भी ऐसी
1: हस्ती। हम माफी चाहेंगे, हमारे पास एक कॉल।
0: बिल्कुल, हमारे किसी लिस्नर का।
1: हेलो,
2: आनंद बोल रहे हैं।
1: हाँ जी आनंद जी, बताइए, आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञानश्री में।
2: मैं डॉक्टर साहब से बात करना।
1: बेशक बेशक
0: जी। आनंद जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं?
2: जी जी बिल्कुल
0: जी। कैसे हैं आनंद जी आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी आपके आशीर्वाद से हम भी बहुत सही हैं, आपने जो ट्रीटमेंट किया
0: जी
2: वो बहुत, जान लीजिए बहुत अच्छा रहा, हमारी जान समझ ले कि अब बहुत मैं स्वस्थ।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपने ये कीमती फीडबैक साझा किया। और यदि अब आपने फ़ोन किया ही है तो हम थोड़ा सा आपसे ये चाहेंगे कि आप बताएं कि आपको क्या समस्या थी।
2: नहीं नहीं, मेरा आप स्वस्थ बहुत सही।
0: अच्छा, आपको पहले क्या समस्या थी जिससे आप परेशान थे? आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा अपना अनुभव साझा करिए।
2: मैं इतना परेशान था कि 2-3 डॉक्टर को दिखा चुका था।
0: अच्छा अच्छा, क्या तकलीफ थी आनंद जी आपको?
2: जब मैं आपके पास आया तो आपने ट्रीटमेंट किया, अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ।
0: अच्छा अच्छा, अब आप एकदम स्वस्थ हैं?
2: जी जी।
0: अच्छा ठीक है, तो आप रेडियो ज्ञानस्थली को क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ये रेडियो सुन करके इसके माध्यम से कुछ सहायता मिलती है स्वास्थ्य से संबंधित?
2: नहीं, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। आप जो ट्रीटमेंट देते हैं बहुत अच्छा देते हैं।
0: चलिए, बहुत ही आपने अपना कीमती फीडबैक साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्या इसके अलावा कोई प्रश्न भी है आनंद जी आपका?
2: सर मेरा प्रश्न कुछ नहीं, बस मैं केवल आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
2: अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आप जान लीजिए कि बहुत बढ़िया है मैं, मेरा स्वस्थ।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत हम
2: आपने जो खून टेस्ट के लिए बारे में बताया थे, अभी हमने टेस्ट नहीं कराया हूँ।
0: ठीक है, पर आप वो टेस्ट आने वाले 2-10 दिनों के भीतर करा करके एक बार हमें अवश्य दिखाएं वो टेस्ट।
2: बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे सर जी, बिल्कुल दिखाएंगे।
0: ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी हमारे रेडियो पर कॉल करने के लिए। हमारे एक प्यारे से लिसनर थे और इन्होंने अपना एक अनुभव भी साझा किया। कुछ दिन पहले ही आए थे हमारे पास ये, और इनको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं थी और इन्होंने फ़ोन करके अपना अनुभव भी साझा कर दिया। हम एक बार तहे दिल से इनका हार्दिक शुक्रिया करते हैं।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे उन बच्चों की जिनके अंदर सवाल करने की आदत होती है, हर एक चीज़ पर सवाल करते हैं। इवन अगर आप उनसे कहेंगे कि सेब खाया करो, सेब अच्छा होता है, तो वो इसमें सवाल करेंगे कि किसने कहा कि सेब अच्छा
0: जी, और सेब क्यों अच्छा होता है, ऐसा सेब में क्या होता है जो वो अच्छा होता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल, और अगर आपका बच्चा ये सवाल नहीं कर रहा है तो उसको सवाल करना सिखाई है।
0: बिल्कुल, और
1: क्लासरूम में वो बच्चे काफी इरिटेटिंग लगते हैं जो हर बात पे पटाख से जवाब देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये बच्चों के मानसिक स्तर को, जैसे जिसको हम IQ लेवल कहते हैं कि कोई का IQ लेवल इतना ज्यादा है, किसी का इतना ज्यादा है, तो ये मानसिक स्तर को दर्शाता है कि बच्चा अपने मस्तिष्क में किन किन चीजों को और किस किस स्तर के चीजों को प्रोसेस कर सकता है।
1: बिल्कुल
0: जी, क्योंकि आज भी आप देखिए, अभी पिछले विगत कुछ वर्षों में यदि देखें, एक 10-12 वर्षों में, 15 वर्षों में, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है इसमें। देखिए जो मोबाइल फ़ोन है ये पूर्णतया नकारात्मक या पूर्णतया सकारात्मक नहीं हो सकता है, ये हमारे प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो अभी पिछले विगत 10-15 वर्षों में यदि हम देखें तो जो हाई स्कूल इंटर तक के बच्चे थे वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी ऐसे ही विषयों के बारे में बात करते थे और चर्चा करते थे। आगे चल करके वो स्नातक या परास्नातक की डिग्रियां लेकर के कुछ शिक्षक, इंजीनियर, ऐसी चीज़ों में बनने का बात करते थे। आज यदि आप देख रहे हैं तो वो बच्चे कंप्यूटर साइंस, IT सेक्टर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो डेटा साइंस है, जो एयरोनॉटिक्स है, स्पेस साइंस है, मेडिकल साइंस है।
1: एक और कॉल है, माफी चाहूंगी।
0: जी ज़रूर।
1: हेलो,
2: नमस्कार, गुड इवनिंग।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: हम तो अच्छे हैं, लेकिन दूसरे का सवाल था।
1: हाँ जी पूछिए, आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञान असली में।
2: लोगों का दो सवाल पूछना है
0: जी। आप आपका शुभ नाम बताएंगे प्लीज? जी नमस्कार, नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएंगे?
2: श्री देवी प्रसाद
0: जी, नवरात्रि भी लग चुकी है और देवी प्रसाद जी के दर्शन भी हो गए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए देवी प्रसाद जी, क्या प्रश्न लेकर के आए हैं आप?
2: तो ये सवाल है
0: जी,
2: जैसे कोई मिलता है तो हम कहते हैं मुझे जानकारी बताइए, हम डॉक्टर सर से जानकारी करके बताएंगे कि रेडियो ज्ञान असली से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए, बताइए।
2: हम 4-5 रहते हैं
0: जी,
2: नंबर भी दे देते हैं इस स्टूडियो का
0: जी, जी
2: बोल नहीं करते हैं लोग।
0: ठीक है, आप उनका प्रश्न हाँ करके बताएं।
2: प्रश्न यही है सर
0: जी
2: कि जैसे थोड़ा शरीर फूलने लगता है
0: जी,
2: और उसके बाद में पैर वेर में थोड़ा थोड़ा जैसे दाबो तो इकट्ठा हो जाता है।
0: ठीक है,
2: और दूसरा सवाल है एक लोगों का
0: जी,
2: कि वो जैसे रहते हैं
0: जी, थोड़ा जल्दी पूछने का प्रयास करें देवी प्रसाद जी।
2: पूछ रहे हैं सर
0: जी,
2: तो सर जैसे इसी तरह रहते हैं फिर उसमें पता नहीं कैसे भी गिर जाता है का।
0: अच्छा क्या हो जाता है, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया ठीक से।
2: जैसे वो रहते हैं
0: जी,
2: ऐसा कहीं पर
0: जी
2: तो गिर जाता है सर।
0: अच्छा अच्छा, उनको वीर्यपात की समस्या हो जाती है
2: जी।
0: हाँ जी ठीक है, आगे
2: और कुछ नहीं सर।
0: ठीक है, देखिए देवी प्रसाद जी, मैं आपका
2: दो सवाल में
0: जी जी बिल्कुल मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। और जी कोई देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके पहले पेशेंट हैं उनकी आयु कितनी है, एज कितनी है?
2: उनकी आयु तो लगभग 30 के अंदर है
0: जी,
2: मतलब मान लीजिए 26 से 30 के बीच।
0: ठीक है, जिनके पैर में गड्ढा पड़ जाता है
2: जी।
0: अच्छा, और जिनको वीर्यपात की समस्या है उनका आयु कितना है?
2: लगभग होगा 32 से 35 वर्ष।
0: ठीक है ठीक है, अब आप ऑन एयर आप सुनिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ
2: जी सर।
0: जी हमारे साथ देवी प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, दो प्रश्न इन्होंने रखे हैं और मैं जल्दी से इनके प्रश्नों का उत्तर दे करके इनको जवाब इनका प्राप्त करवाने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न जो इन्होंने पूछा है कि पैरों वगैरह में, हाथ पैर में या शरीर में सूजन आ जाती है और दबाने पर हल्के गड्ढे भी पड़ते हैं। देखिए ऐसा बेसिकली दो तीन कंडीशन में होता है, किसी प्रकार की किडनी की गुर्दा की संबंधित समस्याओं में, किसी प्रकार की लीवर से संबंधित समस्याओं में, परंतु लीवर में जब बहुत गंभीर हो जाता है तब ये लक्षण आते हैं। तो किडनी या फिर लीवर से संबंधित समस्याओं में थायराइड जैसी बीमारी से भी संबंधित समस्या हो सकती है और बीपी के बढ़ने घटने से भी संबंधित ये समस्या हो सकती है। तो ऐसे मरीजों का बेसिकली हम LFT KFT CBC थायराइड की और कोलेस्ट्रॉल की जाँच करवाते हैं और इसमें देखते हैं कि पहले ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं। इसके अलावा कई बार पेशेंट की बीपी वगैरह भी नापने की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं चाहूंगा कि आप पेशेंट को हमारा एड्रेस बताएं और वहां आकर के वो निशुल्क कंसल्ट कर सकते हैं, बिना कोई फीस दिए हुए वो हमसे अपनी समस्या के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरे जो आपके पेशेंट हैं जिनको वीर्यपात की समस्या हो जा रही है, देखिए ये बेसिकली कुछ हमारे खान पान, हमारे रहन सहन और कुछ चुनिंदा तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं, UTI यूरिन में इन्फेक्शंस होती है, जैसे धात का गिरना, सफ़ेद डिस्चार्ज आना, ये समस्या इसमें हो सकती है। ऐसे में आवश्यक होता है कि पेशेंट से एक बार मिल करके उनकी समस्या का और उनकी कुछ प्राइवेट प्रश्न ऐसे होते हैं जो उनके गुप्त जीवन से जुड़े होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब प्राप्त करके हम अच्छे से एवेल्युएट करके बता सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप पेशेंट को हमारे पास भेज दें, जो वो हमारे पास आकर के निःशुल्क कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा जवाब इनको संतोषजनक लगा होगा। इसके अलावा हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक ये था कि जो स्क्रीन टाइम
1: जी
0: हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है। अगला प्रश्न उन्नति मैम आपकी तरफ।
1: अगला प्रश्न आपके लिए ये था
0: जी
1: कि हमारे स्क्रीन टाइम की वजह से आपने कई बार नोटिस किया होगा आंखों से पानी आता है, आंखें गर्म महसूस होती हैं।
0: जी
1: ऐसा मेरे साथ पहले हुआ करता था, फिर मैं चश्मा लगाना शुरू कर दिया, अभी थोड़ी राहत है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आंखों में ये जो फील होता है ये क्यों होता है, आंखों से पानी क्यों आता है, आंखें बंद करने पर ये गर्म क्यों महसूस होती है और उन्हें आप प्रॉपर बंद भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप बंद करते हो एक टिंगलिंग सी महसूस होती है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो मैं उसी दृष्टिकोण से आपको समझाने का भी प्रयास करता हूँ। देखिए हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन यदि वो मतलब हैवी यूज़ में है, जैसे उसको हैवी ड्यूटी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, अगर हाथों का आप कोई भी ऐसा इंसान जो हाथों से, कई ऐसे आपने वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब पर जो कोई वर्कर्स हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं हाथों से ही, यदि आप उनके हाथों का तापमान नाप करके और उनके शरीर के बाकी हिस्से का जो मेन ये पोर्शन होता है पेट छाती और नीचे का, इस पे आप टेम्परेचर में जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा 1-2 डिग्री अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो, मसल्स का मूवमेंट ये बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है। ठीक यही चीज़ें हमारे आंखों में भी होती हैं, जब हम आंखों पर भारी जोर दे करके और इससे लंबे समय तक कार्य कराते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी आंखें जितनी बार मतलब बंद होती हैं, जो हमारे पलकों के बंद होने का कारण है, ये आंखों को ल्यूब्रिकेट करके रखना होता है ताकि ये आंखों को बराबर ल्यूब्रिकेट कर सकें और पलकें अपने हिसाब से लाइट को भी एडजस्ट करती हैं। तो जब हम ऐसे लंबे समय तक कार्य करते हैं तो चूंकि कई बार क्या होता है कि जब जोर लगा करके देखने पर कोई बहुत ही जो सेंसिटिव डेटा है उसको कार्य करने पर, चूंकि जो कंप्यूटर से संबंधित कार्य होते हैं उसमें बहुत ही सेंसिटिव कार्य होता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको करना पड़ता है, ऐसा करने की वजह से हमारी आँखों पर जोर ज़्यादा पड़ता है और आँखों के आसपास का जो सर्कुलेशन, जो आँखों की मसल मूवमेंट्स हैं, जो आँखों का जो हमारा ऑप्टिकल लेंस होता है उसको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्प्ले देख रहे हो तो आपका लेंस एक जगह पे एडजस्टेड है, अगर आप डिस्प्ले पे से थोड़ा सा नज़दीक किसी चीज़ को देखने लग गए जो जिसका डिस्टेंस आपकी आंखों से और डिस्प्ले से कम है तो आपका फोकस को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप दूर का कोई पीछे से किसी एम्प्लॉय ने, कोलीग ने आवाज़ लगा दी, आप उसकी तरफ देख रहे हो तो आपकी आंखों को फिर से एडजस्ट करना पड़ता है वो लेंस, तो वो ऑटो एडजस्ट पे होता है जो फोकस होता है हमारे लेंस का। तो ये मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारी आंखें नॉर्मल से थोड़ा स्टमक गर्म फील होती हैं, और चूंकि क्या होता है कि जब आँखों में ज़्यादा इस पर जोर पड़ता है, ज़्यादा डेटा को हमारे रेटिना से होकर के गुजरना पड़ता है, तो वो लिक्विड को रिलीज़ करती है, जो आँखों के अंदर का बड़ा फ्लूइड होता है उसको रिलीज़ करती है, जिससे कि थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने का और ल्यूब्रिकेशन का काम हो पाता है। और जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो हमारे जो पलकें होती हैं, जो इनका एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन होता है कि एक मिनट में इतनी बार ये खुलती बंद होती हैं, ये ड्यूरेशन घट जाता है, क्योंकि ये आँख पलकें जो है वो बार बार बंद होना कम हो जाती हैं, वो लंबे लंबे समय पर जो है डिप होती हैं, और इसके वजह से भी हमारी आंखों से पानी आना, जलन होना, टिंगलिंग और ऐसी समस्याएं फील होती हैं।
1: और अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, ज्यादा स्क्रीन देखने से, लगातार स्क्रीन देखने के बाद तिरछी नजर से देखने से सर में दर्द क्यों होता है?
0: बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप कभी भी स्क्रीन देखते हैं और स्क्रीन के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं जिस पे उसका जो डिस्टेंस है वो उससे कम या ज्यादा होता है, तो आपकी आंखों को फोकस करना पड़ता है। हमारे आंखों में जो लेंस लगा होता है, जो उत्तल लेंस लगा होता है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव, तो ये जो लेंस होता है ये इसका फोकस एडजस्ट करना पड़ता है। लाइक आप इसको अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझें कि हम सभी ने कभी ना कभी लाइफ में माइक्रोस्कोप वगैरह देखा होगा स्कूल में, अगर सामने से नहीं भी देखा है तो उसमें देखा होगा, रील्स वगैरह में, वीडियोस में देखा होगा।
1: मैंने तो बहुत यूज भी किया है, वन ऑफ माय फेवरेट काम यही था लैब में जाने।
0: जी बिल्कुल, तो जब आप उसको देखते हैं तो उसका पहले पिक्चर धुंधला होता है, फिर वो कुछ एडजस्ट करते हैं, फिर वो पिक्चर थोड़ा ऊपर नीचे जाता हुआ दिखता है, और उसके बाद वो पिक्चर क्लियर हो जाती है, कोई माइक्रोस्कोपिक चीज। तो वो क्या होता है, वो लेंस का जो फोकस होता है, ये हाई स्कूल और इंटर के चैप्टर में भी है, मानव नेत्र और उससे संबंधित ये फिजिक्स भी उसमें पढ़ाई जाती है, तो जो फोकस होता है वो एडजस्ट होता है। हम अपनी आँखों का फोकस जितनी ज़्यादा बार एडजस्ट करेंगे, हमारी ऑप्टिक नर्व पे उतना ज़्यादा प्रेशर जाएगा, और हमारे जो ब्रेन का जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है, अब आप समझिए, मतलब हमारे ब्रेन के कई हिस्से को काम करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ हमारी आँख को ऑपरेट करने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए कि मतलब एक छोटा सा कोई इक्विपमेंट है, उसको ऑपरेट करने के लिए कई सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और कई सारे डिवाइसेस लगी हुई हैं, तब मिलकर के वो छोटा सा एक चीज ऑपरेट हो पा रहा है। तो जितना ज़्यादा, अब जैसे एक जो हमारे मोटर कॉर्टेक्स होता है वो हमारी आँखों का जो फोकस होता है एडजस्ट करता है, हमारी आँखों को इधर उधर घुमाता है, ऊपर नीचे घुमाता है, लेफ्ट राइट करता है, आगे पीछे फोकस करता है, आईलिड्स को बंद चालू करता है। इसके अलावा एक जो कॉर्टेक्स होता है जिसमें मेमोराइजिंग की होती है, मतलब हम जो भी देख रहे हैं वो याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो प्रोसेस करता रहता है कि इधर से आवाज़ आई है तो आँखों को इधर घुमाना है, इधर से कलर आ रहा है तो इधर घुमाना है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमें इधर देखना है। मतलब सिर्फ आपकी दो आंखों को चलाने के लिए ब्रेन के कई हिस्से को एक साथ काम करना पड़ता है। जब जब आपका ये फोकस ऊपर नीचे होता है, एडजस्ट होता है, हमारी आंखों को दाएं बाएं होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये कंट्रोल दूसरा करता है और वो कंट्रोल दूसरा करता है। बट जब आगे पीछे, मतलब जो फोकस चेंज होता है, मतलब दूर की चीजें और नजदीक का चीजें जो है, इसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ता है हमारी आंखों पे, ऑप्टिक नर्व्स पे, जिसके वजह से हमें सर में दर्द होता है। और इसी के वजह से आंखों में जब लेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिनको 1.5 या 0.12 जितने का भी पावर होता है, उनके उन पेशेंट्स में, उन इंडिविजुअल्स में भी सर दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। मतलब आंखों की साइट डिस्टर्ब होती है और उसके वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो हेडेक के आते हैं, मतलब सर दर्द के लक्षण आते हैं।
1: ऑलराइट, और अब मेरी बारी है आपसे सवाल करने की नींद की और हमारे पोस्चर के बारे में।
0: जी,
1: क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखने से या लगातार फ़ोन का इस्तेमाल करने से लोगों का पोस्चर जो है वो बिगड़ रहा है।
0: जी,
1: ये बात शायद किसी ने नोटिस ना की हो, लेकिन मैं नोटिस करती हूँ जब हम स्क्रीन लगातार देखते हैं तो हमारी गर्दन नीचे रहती है।
0: जी,
1: और जो एक पीछे का बम्प होता है, इसको
0: सर्वाइकल का हिस्सा,
1: ये जो पार्ट होता है थोड़ा सा फूल जाता है, बाहर निकल आता है।
0: जी,
1: और इसको हम नोटिस नहीं करते जब तक कोई हमें आकर बताए ना कि तुम्हारी गर्दन के पीछे का जो हिस्सा, जो बैक का पार्ट है, वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा लग रहा है,
0: या जब तक उसमें दर्द नहीं होता है।
1: हाँ, जब तक उसमें दर्द नहीं होता, वो एक हैम्प सा नहीं आ जाता, तब तक हमको पता नहीं चलता। इसके अलावा ये है कि लगातार स्क्रीन टाइम, रात दिन भर आप काम कर रहे हो, बहुत थक चुके होते हो और आप बेड पे पहुंचते हो इसलिए कि हमें सोना है।
0: जी,
1: लेकिन सोने से पहले एक आदत होती है कि लाओ 5 मिनट देखे फोन के अंदर चल क्या रहा है।
0: जी,
1: आपने शुरू किया था 10 बजे, रात के 3 बज जाते हैं और लगातार आप स्क्रोल ही करते रहते हो। आप तो थके हुए थे, सोने आए थे, ये नींद कहाँ गई?
0: जी बिल्कुल, देखिए जो आपका प्रश्न है कि एक तो पॉस्चर और दूसरा नींद, बिल्कुल आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे बॉडी का ये मैकेनिज्म होता है कि जब हम कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें से खाना पीना उठना बैठना चलना ये सारे हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। अभी खाने का मन नहीं है, एक घंटे बाद खा सकते हैं, या मन भी है भूख भी लगी है बट टाइम नहीं है तो एक घंटे बाद खा सकते हैं, ये हमारे बॉडी का वॉलेंट्री मूवमेंट है, वॉलेंट्री कंट्रोल है। हमारे बॉडी में बहुत सारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं जैसे नींद का आना, बट ये इसमें सेमी वॉलेंट्री और सेमी इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। नींद में आप सो रहे हैं, किसी ने जगा दिया भाई ये काम करना है बहुत अर्जेंट है तो आप उठ जाएंगे, आपको नींद थोड़ी देर आएगी उसके बाद थोड़ी देर भाग जाएगी नींद थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये सेमी इनवॉलेंट्री होता, तो होता क्या है जब आप लेट रहे हैं, जब आपने कुछ देखना स्टार्ट किया उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आ जाती हैं, तो ये हमारी नींद को प्रभावित करता है, हमारे दिमाग को ये ब्रेन को ऐसा सिग्नल देता है कि अभी हम कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं या कोई जरूरी काम कर रहे हैं जो कार्य हमें अभी करना है, अभी सो हम थोड़ी देर बाद सकते हैं। मतलब हमारे ब्रेन का जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है वो ऐसा फील करता है, उसके पास ऐसा सिग्नल जाता है कि अभी हमें सोना नहीं है, तो वो नींद को कम कर देता है। अब जब यही आपकी डेली की रूटीन बन जाती है तो वो हमारे हैबिट में आ जाती है, उसके बाद फिर नींद प्रॉब्लम करता है। जो आंखों का है, जैसे आप देखिए, आप लगभग 85-90% लोगों को ऐसा पाएंगे कि जो रोशनी में नहीं सो सकते हैं
1: जी,
0: मतलब उनको सोने के लिए अंधेरा चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो मतलब आप समझिए कि हमारे आंखों के और ब्रेन के बीच में ऐसा हिस्सा है, ऐसा एक कनेक्टिविटी है, तालमेल है, कि ये जब रोशनी पाता है तो ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि अभी आपको जगना है, ये जगने का टाइम है, सो नहीं सकते हैं। तो जब हम लाइट ज़्यादा देखते हैं, स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, तो हमारे ब्रेन को एक डिफरेंट, एक फ्लक्चुएटेड सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। फिर नींद डिस्टर्ब होने की वजह से कई सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, फिर टाइमिंग डिस्टर्ब होने लगता है, और फिर वो आपके बॉडी में, आपके बिहेवियर में कई तरह के गंभीर चेंजेस लेकर के आता है, जिनको आप समझ भी नहीं पाते हैं कि इसका कारण क्या है। कई बार चिड़चिड़ाहट लोगों को बहुत ज़्यादा होती है और लोग समझ नहीं पाते कि इस चिड़चिड़ाहट के पीछे का कारण क्या है।
1: एक्चुअल में ऐसा होता है, और इंडिया में तो स्लीप शेमिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई इंसान सो रहा है तो सो क्यों रहा है?
0: जी बिल्कुल,
1: ये चीजें बहुत ज्यादा भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। बाकी लोग अगर कोई सोता है तो उसको सोने दिया जाता है
0: जी।
1: लेकिन हमारे यहाँ पर है कि जो 4 बजे उठ गया वही अपनी जिंदगी में कामयाब होगा, भले ही वो रात के 2 बजे ही सोया हो, बट कामयाब वही हो सकता है जो 4 बजे उठता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। एंड रात में सो नहीं सकता, अगर आप दिन में सो गए हो तो भी खराब है, आप कहीं और सो गए हो तो काम चोरी कर रहे हो, जाने किन किन तानों से मिलता है। अगर बच्चा देर तक सोता है तो तुमने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है, हम देखो कितनी जल्दी उठा करते थे। मुझे लगता है हर एक इंसान का स्लीपिंग पैटर्न अलग होता है।
0: बिल्कुल, और देखिए मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि स्लीपिंग पैटर्न अलग, अब जैसे बहुत सारे लोको पायलट्स को मैं देखता हूँ, जो ड्राइवर्स हैं वो मेरे, चूंकि मेरे घर में कुछ लोको पायलट्स रहते भी हैं जो कि ट्रेन के ड्राइवर्स हैं, वो मैं देखता हूँ कि वो रात की शिफ्ट होती है तो वो रात में जाते हैं, फिर सुबह में वापस आते हैं और जाकर के तान के सोते हैं खा पी करके सारा दिन, क्योंकि अगेन उनको वापस नाइट की शिफ्ट करनी पड़ती है। मैं नाइट की शिफ्ट की ड्यूटी करता था, ठीक है, 7 days a week करता था, हफ्ते में 7 दिन मेरी ड्यूटी रहती थी, तो मैं भी वहाँ पर जाता था, फिर मैं घर पर आकर के सोता था। देखिए ऐसे लोगों को अगर वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप फ़ोन चलाने के लिए जग रहे हैं, रील्स स्क्रॉल करने के लिए जग रहे हैं, और देखिए जो सोने का जो परफेक्ट टाइमिंग होता है वो रात में ही होता है।
1: हाँ, ये बात तो है।
0: रात की नींद और दिन की नींद में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा,
1: बहुत फर्क है,
0: ठीक है, आपको फर्क मिलेगा। तो आप प्रयास ये करें, यदि आप दिन का कार्य करते हैं, दिन की शिफ्ट करते हैं, तो आप अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करें, रात में समय से सोएं, ये अपना रील्स वगैरह देखने का, फोन चलाने का, इन चीजों का पैटर्न भी चेंज करें, पोस्चर का भी चेंज करें, पोस्चर पे भी ध्यान दें, क्योंकि आजकल जितने भी सर्वाइकल हो रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि 40% जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन को गलत तरीके से यूज करना हो रहा है,
1: या फिर आपके बैठने का तरीका,
0: बैठने का तरीका है, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसे गर्दन झुका के, जब आप गर्दन झुका करके फोन देखते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो गर्दन होती है, उस पर 3 गुना ज्यादा जो है प्रभाव जाता है, वजन पड़ता है
1: जी।
0: इसके वजह से वो पीछे बंप और हम जैसा जो भी है वो निकल आता है, और इससे गंभीर समस्याएं होती है। फिर वो हाथ में दर्द उतरता है, हाथों में सुन्नपन झंझना उतरता है, सर्वाइकल पेन आपको स्टार्ट होता है, और ऐसे तरह तरह की समस्याओं का जो है शुरुआत होती है।
1: तो भाई वैसे तो स्क्रीन टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें नुकसान ही कर रही हैं
0: जी,
1: कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। अगर आप ढंग का काम कर रहे हैं, आप नॉलेज क्रिएट करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं, तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि दुनिया ब्लैक एंड वाइट पे नहीं होती, सब वाइट वाइट नहीं होता, सब ब्लैक ब्लैक नहीं होता, इनके बीच में और भी कई रंग होते हैं
0: जी।
1: और इसी रंगों में कई बार ऐसा होता है कि हम खो चुके होते हैं,
0: बिल्कुल
1: हमको समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है। ना मोबाइल पूरी तरह से कभी गलत था, ना पूरी तरह से कभी सही था, आपके ऊपर है आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल,
0: आपके प्रयोग पर निर्भर करता है कि आप ये आपके लिए सही है या गलत है।
1: वही तो, किसी एक ही फ़ोन होता है, एक ही इंटरनेट होता है, अलग लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई उसे अपनी नॉलेज को बढ़ाने में कर रहा है, कोई है जो और भी ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, किसी बच्चे के पास मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि उसने एआई का बहुत सही इस्तेमाल कर लिया है, कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह, जिनके मार्क्स बहुत घट चुके हैं और उसके पीछे की वजह भी एआई है, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरी तरह से किया,
0: दूसरी तरह से हो रहा है।
1: तो आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा और आपकी नॉलेज कैसी रहेगी। फिलहाल दादा यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं और आपने लिखा है हाय हाय कैसे हैं आप। महेंद्र जी का लिखना है कुछ भी हो 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, चाहे जिंदगी में सफल हो या ना हो।
0: जी बिल्कुल, इन्होंने नींद की महत्व को समझाने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: अच्छा सर एक और बात है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, बट मैं एक बात जानना चाहूंगी, ये नींद को नंबर में किसने डिसाइड किया? अगर मेरी नींद 10 घंटे में कंप्लीट हो रही है तो क्या ये गलत है? 8 घंटे क्यों सोना है?
0: ये देखिए बिल्कुल मैं बताता हूँ, जैसे देखिए यदि कोई व्यक्ति है जो एक सामान्यतया, अब जैसे जो 6 घंटे और 8 घंटे की नींद बताई गई है
1: जी,
0: 6 घंटे की नींद ये उनके लिए बताई गई है कि जो सुबह में 5-6 बजे उठ जाते हैं, अपनी दिनचर्या वहाँ से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से अपना फ्रेश वगैरह हो करके योग व्यायाम और फिजिकल चीज़ें करते हैं, अच्छी सात्विक चीज़ें खाते पीते हैं और मतलब अपने दिनचर्या को बहुत ही नेचुरल तरीके से जीते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाते हैं, समय से अपने काम पर जाते हैं, समय से अपने काम से वापस आते हैं, ये फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते और वापस में 10-11 बजे तक वो सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 6 घंटे की नींद सफिशियंट होती है, उससे ज्यादा उन्हें नींद आएगी ही नहीं।
1: बॉडी की भी एक लिमिट है
0: जी। जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन टाइम, लंबे समय तक दिमाग और आंखों का कंसंट्रेट करके करने वाला काम कर रहे हैं, और कई बार ऐसे में आप ये देखते हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ 6-7 या 8 घंटे काम नहीं करता है, यदि आप उनकी दिनचर्या जोड़ें तो उनके काम लगभग सुबह के 9-10 बजे से स्टार्ट होता है, रात के 11-12 बजे वो घर पहुँचते हैं, तो जो व्यक्ति 11-12 घंटे काम करेगा ये उसके लिए नहीं है कि वो 6 ही घंटा सोए,
1: बिल्कुल
0: उसके लिए 8-9 घंटे की नींद की आवश्यकता है, क्योंकि उसने अपने बॉडी से काम भी ज्यादा लिया है तो उसको आराम भी ज्यादा चाहिए। जो लोग एकदम नपीतुली दिनचर्या का पालन करते हैं कि इतने घंटे हमने काम करना है, इतने घंटे ड्यूटी करना है, फिर सब्जी लेना है, इतने घंटे में घर आना है, खाना खा के टहलने जाना है, फिर आके सोना है, फिर सुबह उठना है, फिर योगा करना है, नाश्ता करना है, ये उनके लिए है और उनको 6 घंटे से अधिक वो अगर सोने का भी प्रयास करेंगे, अगर ऐसा उनकी दिनचर्या है, ऐसा उनका कार्य है, तो उनको 6 घंटे से अधिक नींद आएगी ही नहीं।
1: और एक और बात बताऊं सर मैं आपको
0: जी,
1: मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और उसमें लिखा था कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है और हमारे भारत में इसका उल्टा होता है और इसका इम्पैक्ट हमें उनके बिहेवियर में नज़र आता है।
0: जी जी बिल्कुल, देखिए स्पेशली क्या होता है कि महिलाओं को
1: शरीर, एक और कॉल है जाने से पहले। हेलो
3: हेलो गुड इवनिंग सर और मैम।
0: जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप?
3: सर मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी आपका सर सुन रही थी तो और भी ज्यादा अच्छी हो गई, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ बताई दी।
0: जी आपका शुभ नाम भी बता ही दीजिए आप प्लीज।
3: अनु पांडे।
0: अनु पांडे जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने वाले पसंदीदा शो में। बहुत ही लेट में आपने कॉल किया है, हमारे पास समय बहुत कम है तो जल्दी से आप बताइए। जी
3: मैं सर सुन रही थी ना तो अभी मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, आप जिस तरीके से अच्छी जानकारियाँ दे रहे थे बता रहे थे
0: जी
3: जुड़ी हुई
0: जी,
3: तो मैंने लास्ट में इसलिए कॉल किया कि आज का शो बहुत अच्छा था और मैं सुन रही थी काफी दिन हो गए थे बात नहीं हुई थी तो मैं कॉल नहीं कर पाई थी इसलिए कॉल भी कर दिया।
0: चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपने इतना अच्छा प्यारा सा फीडबैक साझा किया। हमारे लिसनर्स जब ऐसी बातें करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है सुन करके कि वो शो चल रहा था इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका।
3: पर अभी मैं टाइम देख रही थी, आप भी बता रहे थे कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिनके लिए कितने कितने घंटे जरूरी है
0: जी।
3: तो हमने सोचा अगर अभी कॉल कर देंगे ना तो बात कट हो जाएगी, पहले इसको सुन ले फिर कॉल करते हैं।
0: बहुत बहुत ही अच्छा किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए।
3: ओके सर
0: जी
3: बाय।
0: थैंक यू, बाय। और हमारी एक प्यारी सी लिसनर जुड़ी थी, आगे जानते हैं उन्नति मैम आगे क्या करने वाली हैं।
1: फिलहाल हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि घड़ी ने इशारा कर दिया है वक्त है विदा लेने का। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि अगर आप नींद कंप्लीट नहीं लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत चिड़चिड़े, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड और गुस्से में रहेंगे।
0: बिल्कुल, और इससे और भी कई गंभीर परिणाम होते हैं, आपके सोचने समझने की सलाहियत, कुशलता, इन सभी चीज़ों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस साइकिल को जो है मेंटेन रखने का प्रयास।
1: स्पेशली मैं अपने फीमेल से कहना चाहूंगी, आपको तो लड़कों से ज्यादा नींद की जरूरत है और आप भी सबसे कम लेते हो, इसीलिए गुस्सा करते हो।
0: बिल्कुल, इस बात को अपने शो को खत्म करते करते मैं इस बात को भी पूरा करना चाहूंगा कि देखिए महिलाओं के शरीर की कुछ बनावट ऐसी होती है जिसमें उनको ज्यादा नींद की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्भ के दौरान जब कोई भी महिला गर्भवती होती है,
1: इसका उल्टा सुनने को मिलता है कि ये दिन भर सोती है।
0: हाँ देखिए, ये चीजें तो है ही है। अब मैं इन चीजों पर भी इसीलिए बातें करता हूँ ताकि समाज में हो सकता है कि हम कुछ गलतफहमियों को दूर कर सकें। जब महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में जो कुछ विशेष तरह के जो निर्माण कार्य होते हैं, जो बॉडी जो बच्चे के मैक्रो बॉडी होती है, माइक्रो बॉडी तो चलिए किसी भी टाइम पर पे डेवलप हो रही होती है, बट जो मैक्रो बॉडी होती है, हाथ पैर शरीर मांसपेशियों, इन सब का निर्माण जो है वो जब वो सोती है आराम करती है तो ऐसे में सुगमता से हो पाता है। तो ठीक है, उस महिला को एक्सरसाइज करना चाहिए, उस महिला को फिजिकली एक्टिव भी रहना चाहिए, उस महिला को चलना फिरना भी चाहिए, पर अपनी लगभग 7-8 घंटे की 10 घंटे की नींद भी प्रॉपर उन्हें लेनी चाहिए।
1: बस यही कहना चाहेंगे हम आपसे, आप अपनी नींद कंप्लीट कीजिए और मुझे लगता है कि अब मेरे सोने का टाइम हो चुका है। मजाक है फिलहाल के लिए।
0: बिल्कुल,
1: शाम के 5 बजे नहीं सोया जाता ऐसा मेरी माँ कहती है, वो अलग बात है कि हम सो जाते हैं।
0: बिल्कुल, और शाम के 5 बजे वैसे नहीं ही सोना चाहिए। अगर कोई ऐसा शिफ्ट ड्यूटी काम नहीं है तो आप नहीं सो सकते हैं, और यदि आपको नींद आ ही रही है तो आप सो भी सकते हैं।
1: हाँ, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद घर पहुंचते ही ऐसा लगता है कहाँ जन्नत मिल गई है और अब बस सो ही जाऊँ।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिलहाल के लिए आपसे चाहेंगे इजाजत, ख्याल रखिएगा आप अपना, फिर मुलाकात होगी अगले संडे लेकर के एक और बढ़िया सा टॉपिक और आपके हेल्थ इश्यूज और प्लस आपके मिथ्स को करेंगे बस्ट, क्योंकि भैया हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिथ तोड़ने के लिए ही होती है। तो सुनते रहिएगा, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर।

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा, देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562, ये व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।
3: अरे दादाई, हमार तो गड़वा एकदम कटा जात है, और कटाई अरे राम बोला नहीं जात है, ये 9 दिन गवाए गवाए की दुलारी हमार जो नहीं कटाई एकदम चौपट कर दी ना हो, आज इनके हम कहा करिए दादा, कुछ कहा नहीं जात है।
4: है बहनी काजल?
5: हाँ चाची।
4: ये बताओ कि अर्चना नहीं आई आज, कहीं ना संघरिए चल रहे उनके लिए।
5: मावती ही जाना चाची।
4: कहाँ? दिखाओ तो दिखाओ कहाँ। घमावा बहुत तेज हो गया,
5: अर्चनाएं हो जाना चाहिए।
4: अर्चनाएं हुए? अर्चनाएं सफेद का बुसटिया पहन रही अर्चनाएं।
6: राम राम चाची, राम राम चाची।
4: राम बहनी, राम राम। हम सुन लिए हैं बहनी, अक्का बाजी कहा हम सुन लिए हैं। अई बताओ अर्चना, तू इतना घमवा घूमत हूँ तब करिया हो जाती हूँ?
6: अरे चाची, हम पहले से करिया हन तो थोड़े और हो जाए।
4: लियो अब इन्हों बात सुनो, अब सुनो, चलो चलबो अर्चना।
6: हाँ
4: चलबो उनके चटपटी चाची की।
5: काहे नहीं चाची, चलो।
6: चाची आज मन ही नहीं कहा, पता नहीं काहे, बुखार बहुत तेज है।
4: अरे तनिका चली चलो, तनी भर बैठा जाए, मजमा लगावा जाए, चल दिन जाए, खाए पी गए बहनी, उनके खाए पीते रकम रकम समनवा।
6: हाँ यहाँ बात है सही हो जाए।
4: हाँ चलो हम खटखटाई दरवाजा, ये लो आई तो गए इनके मोहरवा।
3: गोड़वा कटा जात है, कोनो दवा हो तो है भगवान, मालिश कर लेते तो ठीक हुई जात।
4: काहे
3: गोड़वा कटा जात
6: चाची,
3: है
6: चाची।
3: हेलो वालो, कैसे उठ के जाए, सब खटखटाओ थी पल्लग।
4: ये चटपटी बहनी,
3: भगवान कोनो खोल दे,
4: चटपटाओ।
3: अरे आई गए दुलारी, आई गए न मरा
4: उन्होंने, पल्ला तोड़ दे तुहार।
3: अरे पल्ला ना तोड़ो, ले आई गए। ये बताओ तो इतना कहे हमारे पीछे पड़ी हो, पल्ला तोरी डाल रही हूँ
4: बहनी। कतना घाम है मेरे, कतना गरम लागे, ठंडवा चलाओ, बैठा हूँ मैं।
3: तब बैठो, ये कहो कि ठंडवा खाए आई हो।
4: ठंडवा खाए आये है और बतवान है तुसे, बतवान ना ये दूरों से।
3: हमार एकदम तबीयत खराब है दुलारी, कुछ हम कह नहीं सकी थी। गलवा हमार जब एकदम देखा कैसे गटई हमार भुवन जाता
4: है। तो ये काहे की यही में रहेगा बहनी,
3: इतना गवाए जा रहे हो जो तो ये देवी गीत हमसे।
4: तब जब बताओ, जब सबके यहाँ कीर्तन धाई लीन का और रकम रकम जगह गए न, तब गई बहु ना, तब क्या कर बो, हम तो ढोलिया पीछे बात जाये थे, तब तू ही तो गई बहु।
3: हमें चिल्ला चिल्लाए गाय पड़ा था। अब देखो गोड़वा एकदम अलग कटा जाता है, और गटई तो पूछो ना हाल।
4: अरे तो बहिनी,
3: एक थोड़ी हम हमारे गटैया कैसे ठीक।
4: सुनो सुनो, एक थोड़ी हम नुस्खा बताई दी।
3: बताए दो नुस्खा।
4: नुस्खा ही है कि देखो पनिया धर दो, तनी गरम हो जाए।
3: हाँ
4: वो गरम हो जाए तो हमन तनी उन संधका सफेद का नुनुआ आवत।
3: हाँ बरतवन तो
4: बरतवन। हाँ। जो खावा गारा धरा हो ये
3: कोलिया एक धरा है
4: वो है नुनुआ, ओमन डाल दो किंचा भर।
3: अच्छा
4: नुनुआ डाल दी हूँ, अब तनी भर गोलकी मिर्चिया डाल दो, मिर्चिया
3: काली मिर्चिया।
4: हाँ हाँ हाँ वह पीस कर पीसा रहा है महीने एक चुटकी ऐसे उठाओ चुटकी जैसे नाई दो।
3: अच्छा
4: अब तनिया की एक का चुटकिया हल्दी डाल दो पीस।
3: अरे
4: सुन बाबू तो अब तनी जब वो गरम हो जाए गुनगुना गुनगुना मेर के तब ओका गटे में से कहके गगा उल्टे मारो।
3: अच्छा गल गला कर ले।
4: हाँ वहाँ वहाँ
3: अच्छा गलाला कही।
4: हाँ
3: गलाला कही सब
6: चाची का मतलब है सब चीज कहीं न कहीं दिखाई और बताए।
4: वो है हलाला वहाँ हलाला।
3: हलाला ना ही कहा जाते गलाला। गलाला कहा जाते गलाला कहो
4: गलाला।
3: हाँ
4: अच्छा तो गला लाला
3: गलाला
4: गलाला लाला।
3: अरे गलाला बोलो खाली गला लाला लाला ना बोलो लाला लाला का लगा गलाला
4: गला लाला।
3: हाँ गलाला बोला।
4: हाँ तो यह है कई लोग
3: तो ठीक है अब करब तो भैया है
4: तो गटेवा तुम्हारा तक निकाय जा ठिकाय जात बहनी।
3: अब तो आई हो आज है
4: तब का करी हम थकी गए ना देखो नौ दिन के तो हम नवट्टा बहनी भूखी रहे।
6: हाँ
4: तो,
6: चाची
4: तू रहे बहनी तू तो रहे।
6: हाँ चाची
4: हमारे घर आये हुए तो दहुआ पी रहा तब नौ दिन तो नवट्टा रहे
3: तो तू तो हमें दहुआ तो पिया दियो।
4: तो दहवा तो तू पिया दे भाई कहे ना पिया दे
3: तो वह तो हमारा लगत गटेवा जो है जाम हुई का।
4: हाँ ये अब हमारे चेतान तू रतियक पी रहा हो बड़ के गला समा
3: तो उसके बाद पनियो पी लिया
4: तो रतियक दहवा का है पी ली हूँ दादा।
3: भैया सबसे यहाँ बताए कि दही खाए के और पनिया ना पियो।
4: पनिया ना पियो वो कोशिश यहाँ करे कि दहवा रतियक ना खाए दिन का खाए।
3: हाँ रतियक भैया एकदम जहर हो जात है।
4: दो दशा मौसम चलत है कि नहीं
3: एकदम चलत है।
4: हमारे तो रतिया में है हम आज जार लगत रहा हम तो आज एक्चुअली धोती ओढ़ ली हमने।
3: अरे तो धीरे धीरे जार तो उठते हैं
4: तो अब जड़वा आवत है मौसम बदला जाता है कि नहीं दे बहनी।
6: हाँ चाची हाँ
4: तो जब मौसम हो बदले तो दहवो पी ले जड़वा रतिया कहीं हाँ।
3: तो है तो जिद्दी आई गई दहो नहीं पी ले नहीं पी ले हम तो नहीं पीत रहा हम कह रहा हमारा पेटुआ जो है भरा है नहीं माने तो तू पिया दियो। अब
4: देखो कौन युग जमाना आएगा कि सबके भलाओ करो और दुई लतियो सब अब कहाँ ती लियो कि तू जबरदस्ती पिया।
3: हाँ तो जब हम नाई पीत रहा तो तू कहे जद्दी आए गए कि नाई पी लियो
4: तब बही हम गिलास में घोर लाए तू का चीनी विनी मेरे लाए नहा तब कहें कि पी लो
3: पिया दियो हम बैठे हैं गला लिए ये देखो बोली तो कांटा जैसे लागत है।
4: खोखिया आवत है तोरे
3: खोखिया नाई कांटा जस गला
4: वही करो गला ला ला ला।
3: अच्छा ठीक है गलाला ना बोलो कही ली जो कर।
4: हाँ वह पनिया गरम कही के और वह कही डारो तुहर गटेवा नीक हो जाए तो बोले
3: लग बोल। तो हमका एकदम जैसे का बताई गलाला ला ला ला जो सुना थोड़ी के हाँ तो ये कतने बड़े का कही जाओ रह दे।
4: अरे तब तू सिखाई बो ना काहे खतिन हो तू
3: तो हम कही तो है कि गलाला कहो तू गाओ अब फिर कहो गलाला ला ला ला
4: ये का तो भाई नहीं।
6: हाँ चाची
4: एक बाजी हम लाओ कह दिया तब इनका देखो तनी ऋषि
6: बहुत ऋषि आप ही चाची
3: ना ही जो हमरे बतिया ना ही सीख
4: बहुत ही निके ऋषि है कतना निके ऋषि होई गवा है हम तो यहाँ ही देखी थे बहनी बिलान जाती है जा।
3: हम ना ही बिलाए जाए तो तू बिलाए जाइबो ना ढंग से बोलिए और ना कभी हमार ना बस खाली नाक कटाए रहो।
4: हम कहाँ बिलान जाते बहनी अर्चना देखा तू इनके कसिये बिलान जाती।
6: हाँ वो तो दिखाते हैं चाची लेकिन ये यस ना कहा तहार सहेली हूँ।
4: तब सहेली हूँ तब ये देखो हमारे ऊपर रिसियान ही कहा थी कि जो है तुम्हारे ऊपर हमें बहुत ऋषि लागत है माना हम नाई बोल पाए थे नीक एक तो ये कहा रिसिया थी जब जानती थी कि हम नाई पढ़े लिखे हैं
6: तो चाची समझावत थी आपका
4: देखो बहनी यही मैं समझावत जाती बहनी
3: जौन मेर हम बोली था वह मेर बोलो ना सीख लिया करो अतने तो छोट बहु मुनि के लड़का ना ही हो के ना ही बोल पाई हो।
4: बहनी ये कहती कि गला ला ला ला
3: देखो फिर बोली गला ला ला ला
6: गलाला गलाला। अच्छा ठीक है चाची गरारा कह दियो गलाला ना
4: गरारा वह है ये कहीं नहीं
6: पढ़ाई देती हूँ
4: लिया
3: और क्या बहनी सही कहा थी
6: तू यक जो आप बाढ़ कर रहा थे हर चीज में आप बढ़ाई बताओ तू
3: गला लाला हंसी लागत है ऋषि लागत है दोनों
4: तो सुनो इनके हंसी लागत है तभी हंसत नहीं लेकिन ऋषि लागत है तब ऋषि आए लेती। अरे हंसी ले बहनी हंसी ले आज हमरे हमरे ऊपर इनके
7: के हंसी बहुत लागत है। देखा थे वही काजल?
5: हाँ चाची हाँ।
3: हाँ गलाला लाला हद कह दियो भाई दुलारी हद कह दियो।
7: अच्छा देखो इतना समय हंसी हूँ, अब मैं हंसे से समय कहा था कि बनी जो हम लोग का फेफड़ है ये नीक रहा।
3: अब देखो फेफड़ कहीं फेफड़ा कहाँ जाता है फेफड़ा यार तो कही था वहाँ हम सिखाई खियाई जाई
7: थे। देखो काजल कहती
5: हाँ चाची
7: जब हम एक मात्रा लगाई थे तब कहती ज्यादा लगाई थी तू गला ला ला ला ला आए, और जब कहती फेफड़ तब कहती देखो फेफड़ कहती अब कहती फेफड़ा।
5: हाँ चाची तो तू गलत ही बोलती हो।
3: चाची अपने हिसाब से बनाए बोलती फेफड़ा हो ना अब ना कुछ हसाओ ना अब कहा एक मात्रा ज्यादा लगा तो ज्यादा लगा दियो
7: अरे देखो
3: पूरा पूर रखो तो एक कम कह दियो
7: अच्छे ना। अब देखो ये हंसी ली तो कितनी नीक लागे थी देखो हम ही रिश्मा बैठी रही तो जो ने फेफड़वा ठिकाए जाते बहनी
5: फेफड़वा कह ली।
7: हाँ तभी अब भैया बताए हम फेफड़ जानते रहे तो गाती नहीं फेफड़ा। अब देखो हम इनके आंसे नहीं बंद होते देख लो कतना ये हंसती। अब गुड़वा ठिकान के भी पिरात है
3: गुड़वा तो अब हम कोई हमारे दबोटे वाला तो है नहीं।
7: अब मैं किन बुटीवे खुद दबोट दे हूँ
5: चाची अब हम ओरिजिनल
3: दबोटे बिटेवन से हम पैर नहीं छुआई थे
7: आज चला हम ही दबोटे दे बहनी।
3: हाँ तो तू सहेली लागो तो तू दबोट दे दो
5: नहीं चाची हम लोग दबोट दे
3: नहीं बिटियन से।
7: लेकिन यहाँ है कि हम गुड़वा दबावा दबावा कहूँ गठैया ना दबाई दी बहनी दबोट
3: पर तो हियन से तो ठीक है कि हाँ चलो दबवा लो लेकिन बिटीवन से ना ही दबवा।
7: अरे बिटीवे कन्ना तो होती कन्ना
3: कन्ना
7: तो कन्ना होती है बहनी तो
5: कन्ना ना है चाची
3: तब बहनी नहीं बोल पाया बहनी नहीं बोल पाया तो कहते कि कन्ना कहते ना
5: कन्या
3: कन्या नहीं बोल पाया
7: कन्ना कन्ना।
5: अरे चाची
7: कन्ना नहीं होता बहनी
5: कन्ना
3: नहीं कन्या कहा जाता है। कल खवाई हो परसों हाँ और आज तो कन्ना कन्ना कहती हूँ
7: तो हम यहाँ कह के आए ना कि कन्ना भेज दियो।
3: अब तो कह दिए तो
5: अरे तो सब समझ गया हुए कन्ना
3: समझ गया।
7: हाँ
3: वो बात तो अलग है लेकिन सही से बोलब सीख लो कन्या कहा जाता है
5: कन्या चाची
3: कन्या छोट छोट होती है उनका कन्या कहा जाता है।
7: अच्छा जो आओ थी खनवा खाए
3: हाँ जो दो चार पाँच साल वाली कन्या हो।
7: हाँ तो ये मार धोतिया ठीक कर रही थी देखो कजरिया गई बाकी की हम तो धोती है नहीं ठीक।
5: अरे ठीक है अरे चाची बतवा हम भुला जाती तो पड़ा पता नहीं।
7: आज देखो हम लाल लाल ओढ़ के आए ना बहनी
3: देख लाकर
7: ललकी सड़िया आज हम पहन के आए ना तो ये बताओ
3: ये बताओ ललकी सड़िया पहने हो और तिवारी जी को गाना वाना सुनाई कि नहीं सुनाई।
7: कौन तिवारी
3: अब लो कौन तिवारी
7: कौन तिवारी के का गाते?
3: अरे पाड़े जी का कहता था तिवारी
7: तिवारी है
3: मोरा मैया याद आ जा
5: हमारे लागत है चाची के तेवराइन से ज्यादा बैठे
7: ये है बहनी अर्चना हमार धर्म में बिरिस्त कह दी बताओ हम मैं अब वही हम कही कि
3: पाड़े जी नहीं गाए
7: कौन तिवारी
5: हमें लगता है तेवराइन से ज्यादा बैठे लग चाची।
7: हाँ
5: तिवारी नहीं याद आता
7: तब तिवारी याद आता
3: गाना गावे चाहिए ललके ब्लाउज पे लाले सड़िया
7: नहीं गाय तो गाय तो बहनी गाय तो
3: नहीं तो हम गाय गाय दिया
7: अरे ऐसे गाय तो गाना हमें नीक लगा था
3: पाड़े जी गाँव
7: ललके ब्लाउज पे
3: ललके सड़िया
7: ललके ब्लाउज पे ललके सड़िया
3: हमर पियवा चलावे डीजल गड़िया
7: हमारे पियावा चलावे डीजल गड़िया ये कहाँ से क्यों रहा हो
3: ये बाजा थे बाजा
7: ललके बिलौजिया पालल के साड़िया हमारे पियावा चलावे डीजल गड़िया
3: हमारे
7: पियावा चलावे डीजल गड़िया। वाह हो बहुत नीक गाना है पूर जानतू ना जानतू पूर
3: ना पूर ना जानी था हम सही से सुना है बहुत नीक गाना ना होया हाँ ये सब फूहड़ गाना हो हम ना गाए थे सब
7: तो कहे फूहड़ गाना गाओ तू
3: फूहड़ ना ही कहे अब देख लो फिर अब नवा हम फूहड़ गाना कहे फूहड़
7: अच्छा वह फूहड़ वह
3: हाँ बेकार गाना है।
7: अच्छा बेकार
3: ना ही है ये गाना अच्छा, हम लोगों के गावे लायक ना ही है।
7: अच्छा
3: तब ऐसे कह दिया कि सब बजत है
7: मुराहिम गाई हुआ मुराहिम
3: मुराहिम और का
7: तो अब हम एक काम का बात बताओ
3: का
7: की करुआ कहिया परत है वो भाई मुझे बताओ करुआ।
5: हाँ, 10 तारीख का है चाची।
3: अरे दादा
5: शायद सुकवे कहिया है आज सुख है अगले सुकवा का।
3: त्योहार आवे जा
7: और देखो वही हमारे सबके थका नहीं उतरा बहनी दशहरा का।
3: चलो भाई तैयारी कर।
5: हाँ चाची
7: ये बताओ की वो देखे गयू रहा।

0: हम लोग भाग खड़ी भाई।
1: हाँ बहनी बहन को लौंडवा रहा हूँ, गोली मार दी, बंदूक लिया रहा।
0: हाँ।
1: ये हमारे हाथ पकड़ी, कहीं भागो दुलारी।
2: चाची धोतिया तो नहीं खुला रहा?
1: ना ही बहनी, भाग गए दोनों जनी। धोतिया हम पकड़े रहे ना, भागत भागत आयन सड़के, तब ये हमें रोकिन सांस ले दहन।
0: ना ही तो बच गए रहन हम लोग।
1: हाँ, तो बहनी तोरे लोग बिटिया सयान बिटिया हो।
2: हाँ, हम लोग ना जाए थे चाची कौनो मेला, अपने घरे अच्छा लाते।
1: हाँ, अपने घरे देख लो, और ना हो अपने घरे दसमुह का बना के दाग दे।
2: चाची मेरी लड़को बनाई रहा दसमुह का छुआ छुआट है, वहाँ दाग देना गोधरी।
1: बस वहाँ ठीक है भाई, गोधरी हम दाग दे।
2: हम लोग घरे छोटे छोटे लड़के मेला लगाते वहाँ देख ली।
1: बस वहाँ ठीक है बहनी,
2: कुल बनाए बनाए दाग 15-15 रुपए रावण खरीद के लाए रहा।
0: भी के लगा 15-15 रुपया।
1: बताओ हाल,
0: गजब हाल है।
1: तो ये बताओ।
2: हाँ चाची,
1: हमें का एक बात बता दो कि तुहरे अम्मा और रहती महीनी भूखी
2: कौन चीज कर हुआ?
1: हाँ
2: हाँ चाची,
1: तुहरे और रहती महीनी।
2: हाँ चाची,
1: तुहरे यहाँ होता है।
2: हाँ,
1: तू रहती हूँ।
0: हाँ,
1: तो ये बताओ हमें, हमका का पहरा जाई हो?
0: अब तो मंगा ही लियो ना ललकी साड़ी।
1: नहीं नहीं, पुरान होएगा अभी सब देख
2: ली। का कोरे पहना
1: कौन दूसरा बताओ हो?
0: तो चलो बाजार हम खरीद।
2: हे चाची, हम लोग चल भाई शॉपिंग कर। हम सब शॉपिंग कर
1: रहे की चॉपिंग करा दे।
2: शॉपिंग कर भाई चाची,
0: हमें पता रहा है बहनी, तू बजरिया बोल दे वो नीक
2: हमारे
0: जाई। बोलिए देखो चॉपिंग बोली है।
1: हाँ, वो है पिछली बार कही चलो तू चॉपिंग करा दे।
0: अबे खोद खोद वाई पूछिए,
1: तो चॉपिंग नहीं करा जाते?
0: चॉपिंग का होता है तू बताओ। अच्छा,
1: चॉपिंग होते कि बजरियम जाओ और रकम रकम के सामान चाप लो।
0: चॉपिंग नहीं, चाप लो ऐसे चुरा लो। आए तो आप हरकत से बाज ना आइयो। हां तू चोरी जरूर करियो दुकानिया जाए के।
1: देखो हम एक
2: ए चाची, जैसे सांप बोलाया था ऐसे शॉपिंग कह दियो। शॉपिंग
0: शॉपिंग शॉपिंग
1: शॉपिंग
0: शॉपिंग।
1: अभी ये महीने गोल गोल मुहा घुमाव थी, हम नहीं घुमा पाई थे।
2: शॉपिंग
1: हमारे बिलरिया आस मुहा घुमाव थी गोल गोल। ये अब ये कहा थी की का पॉपिंग
2: शॉपिंग
0: शॉपिंग का।
2: अरे चाची ना बताओ, मूड पिरा
1: चॉपिंग
2: बताओ। तो चॉपिंग समझ जाओ।
1: चॉपिंग तो बहनी हम चॉपिंग चल बहनी, तू
2: मेहंदी ले चाची मेहंदी लगावे।
0: अरे मेहरन के हम लोग लगाई थे ना।
1: हे बहनी, मेहंदी तो पियड़ होते हो मस्त सुरका जाते
2: पिया वाली
0: कुपिया वाली लगाई थे।
1: ये हुप्पी के कौन मेहंदी बहनी?
0: कुपिया कहा जाते, कुप्पी
1: हुप्पिया
0: नहीं, हुप्पी नहीं कहा जाते, कुप्पी कहा जाता है। देखो ना पहले की चलत रहा है ना, कुप्पी जलावा जाता रहा है जैसे।
1: तो कुप्पी में तो महीन तेल बार आ जाते दिवाली एक दिन।
0: वैसे महीन का आगे छेद होता है ना, वैसे मेहंदी नहीं करता है, उनका कुप्पी कहा जाता है।
1: अच्छा, वहाँ कुपिए होता है,
0: वहाँ कुपिए
1: तो अमन बहन का दबाव तो तेल निकले लगी,
2: मेहंदी निकले
0: लगी, मेहंदी निकली, तेल ना निकली बहनी।
2: चाची बको
0: अभी पकाए नहीं हम का, बहुत दृश्य लाग रहा, फिर से दृश्य। अब अभी दृश्य आ जाइए हम,
1: अब ये फिर दृश्य आ जाती बहनी। हाँ,
2: हम सब आए थे, आप दोनों लोग लड़े लागते
1: हम तो बहनी हंसी थे, हम तो रिसियाते नहीं है।
0: अच्छा,
1: ये ढाई रिसिया है, खाए हुए खाए हुए बैठी हुई बहनी की नहीं खाए हुए दुलारी?
0: बिना खाए कैसे रहा भाई,
1: चटपटी जाती खाए हुए की नहीं खाए हुए?
0: अब कल खाए रहन बढ़िया दही का बड़ा बनाए और कढ़ी बनाए रहन और उर्द भात बनाए रहन। अच्छा, उर्दू बनाए था? उर्दू बनाए रहा तो वहाँ हमारे यहाँ, तो वहाँ बना थे उरुद भात।
1: हाँ,
0: और दही बना।
1: हाँ,
0: और कढ़ी बना लिया।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ,
1: हमारे तो बनाए ना वो बनी, वो जो बनी जो सफेद का भी काट बजरिया में, यहाँ काट काट के बनाओ।
2: अच्छा, पनीर
1: पचर पचर खाती सब।
0: पनीरिया बना।
1: हाँ,
0: तो पनीरिया भाई महंग सब्जी होता है हमारे घर।
1: वहाँ बनाए ना, और के बाद वो बनाए ना जो सफेद का चनवा घस होते हैं।
2: हाँ, छुआला
1: छुआला
2: हमारे वही बना रहा
1: है। छुआला बनाए ना बनी, पूरी बनाए ना वही सफेद का।
2: हाँ,
1: हाँ, वही बनाए।
0: घर तो देसी खाना बना था, रोज चावल।
1: हाँ,
0: दही बड़ा कढ़ी बना था।
1: हाँ,
0: चटनी वटनी बढ़िया बनाई ली जाती है।
1: चटनिया तो बढ़िया बनाओ तू। हाँ, नीक बनाओ तू। तब ये बताओ की जब चलबो बजरिया, कहिया चलबो बजरिया? है बहनी
0: बजरिया?
2: हाँ,
0: जायो।
1: हाँ।

0: अब ये सोचे कहे कि नवका जो चौरा
1: हाँ, बहनी पूरा कहू चौरा तो
0: अब तो धनवाओ ना तैयार भा है।
1: हाँ चौरा कहाँ से मिली बहनी,
0: तो ये एक बड़ी अब
2: चाची हमारे सबके लाग तो है लेकिन तैयार ना है।
0: तो यहाँ तो हमारे बहनी लाग हमरे ना लगा का लेकिन तैयार
3: देर में देर में बैठाए
1: तो हमारे बहनी लाग है।
3: हाँ लेकिन करऊ हम ना तैयार
1: लिए सबका यहाँ अब की जल्दी तो परिका
0: बताई
3: देर में बैठाई धनवा।
1: हाँ पूरा कहू
0: थोर बहुत कहूँ मिल जात कहूँ।
1: हाँ मैं तो कही थे कि हमें किलो दो किलो मिल जात चौरा तो भैया के ओका बहनी झुरवा के सुखवा ले।
0: अब किलो दो किलो का चटनी बनावे खाए
1: काहे बहनी अपने घर भरे तो हो ही
0: ना ही अतना मंगनई सब जात है फरा।
3: हाँ,
0: तो किलो तो किलो का
1: हाँ मगनी तो जाए दिया पर
0: कम से कम 5-7 किलो मिले तब
1: तब बहनी कहाँ से पाए चौरा बजरिया।
0: अब बजरिया में देखे पड़ी भाई
1: बड़ा महंग मिली
0: बोले हो चाहे वो सांच बोले नवा कह के दे है।
1: हाँ अपूरन कह दे थे
0: अपूरन कह दे है। अब यह तो सोची थे कि का बताई हम कपूरन के चावल हमरे घर धरा है वहा हम
1: तब पुरन के कह रहे जो तुम्हें पुरन के बदरिया से मिली तब तू का करबो नवा लेके।
0: यह तो दिमाग नहीं काम करत है कि नवा सब बनत है नवा होता है एक तरीके से ना।
1: हाँ नवा होता है चौरा तो नवा ही चाहिए बहनी।
0: हाँ तो पूजा पाठ में तनिक बस विचार यह रहा था कि हमका चीज जोन है
1: या तो गाँव में चला जाए और सबके पता कीन जाए कि जो है कोई के नौका चौरा है
0: जैसे पंजाब से बिके आ जाता
1: जैसे पहले सब बोए दी।
0: हाँ, सब जिनके पहले लगा है उनके हाँ, पहले काटा जाए
1: उनके पहले काटा जाए।
0: हाँ तो कहूँ पता लगाओ बहनी तू कहीं चावल मिल जाए
3: हम लोग गाँव में पता लगा ले।
0: हाँ गाँव में पता लगा ले
1: तो पता कर लो गजरिया
3: ठीक है। हाँ चाची हाँ
1: पता कर लिए कहूँ चौरा मिल जाए गंगा धाम अम्मा कहूँ ना हम मिल जाए तो तो गंगा धाम से ले आया बहनी लाई जो 10 किलो ले तो 5 ही ले ले 5 हम ले।
2: हाँ हाँ चाची तब बाद में जे कर ले बते का अपन दे दे
1: बस छुट्टी हो जाए
0: तब का
3: ठीक
0: है। तो चला तो यहाँ से तो गांव बढ़िया नीक कहा जात है।
2: हाँ, चाची गांव झगड़ा बहुत बेकार हो
3: चाची खत्ती ले
1: आना। हाँ तब की हमें यह है तीसरा
3: अब सी तो है
1: अच्छा नहीं
3: अब सी होए लेकिन थोड़े लेट में होए।
0: हाँ चलो गोवा है पता लगाए रहो बहनी इधर उधर।
3: हाँ ठीक
0: है कहूँ से मांग जांच करके दे।
1: हाँ थोड़े चाचा वाचा खिया या कोई पटी
2: हमारे भाभी की साई तब देखबे चाची तो दे देबे।
1: हाँ बहनी तब दे दियो हम मैं दे दियो ना दियो चाहे ना दियो
2: ठीक है
0: ये तो है भाई उन्हों खतिर ले
1: हमरे खातिर कहे
2: हम हम इनका चाची खतिर ले बे
0: भैया ये सब वो देखे के बात है
1: ये बहनी
0: सहेली वहेली ना हो
1: मजाक की है मजाक
0: मजाक कर दो तुम अपन मजाक अपने पास से रखा
1: हे आज ये का खाई नहीं इनके बड़ा रिसी
0: ना ये रिसी क्या हम हमरे ताई चौन है कई दिन के इनका दिए
1: अरे बहनी दादा जब वो 5 किलो दे तो 2.5 तू है देबे 2.5 हम
2: हाँ, दे चाची
1: धोए धाय तो, दे बाय
0: तो दुलारी बहुत चालाक हुई रही हो हम जा नहीं गए
1: लिए लिए हां
0: अब चालाकी ना चली तोहार
1: ये तू वही ग्रिसा तो नहीं उतारे थी।
0: हां नहीं तो हम जाए थे पाणे जी से कही था अब तोहार से काय देखियो
1: काय तेवारिस कह दियो
2: चाची
1: चाची
2: बकवाई डारी दू यानी हमारे अर्चना के भूख लग गवा।
1: अच्छा चाची तो ला भैया बिरयक ले लो और खा ही जाए कुछ।
0: हाँ तो आज हम बनावा है चना मसाले वाला।
2: हाँ मुँह में पानी आएगा चाची
0: तो खा लियो दोनों जने।
1: हाँ ठीक है ठीक है तो चलो बिरयक ले लेते।
4: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स कचहरी रोड DM आवास के बगल गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी आपकी अपनी शॉप।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: देखो जब से हम बैठी हैं तब से ये बड़की मोबाइलिया पाई गई ना, ये बर्बाद हो गई बहनी, ये बेकार हो गई। देखो जब से मोबाइलिया देखा थी ये,
4: तब भी इतना चिड़चिड़ापन है, तब भी
3: ये बहनी कहे क्रिश्चियानी, आज जानी कहे क्रिश्चियानी है, ये वल्ली मोबाइलिया चलावत रही हुई है। और पहुँच गए हम, अब इनका लाग हो लो, अब आए गए दुलरिया, अब तो हम मोबाइलिया ना चलाए पे। देखो
5: ये कौनो बात नहीं है दुलारी, थका लगा है,
3: अतना नीक नीक
5: लगा है,
3: अतना नीक नीक चना खवाए हुए है,
5: चार जगह बहुत बढ़िया चना रहा। मूर्ति गयन देखे पैदल तो गए, कौन हमरे लिए गाड़ी घोड़ा खाए।
3: तो बहनी हम हूँ पैदल वे गए ना,
5: तो जांगर है,
3: बैलगाड़ी
5: नहीं है, बस यहाँ जाना।
3: तो हर जंगलवा कहाँ चलागा कुल,
5: अब 9 दिन बरत नहीं रहे,
3: तो हमहू तो बरते रहे 9 दिन बहनी।
5: तोहरे दूध पैदा होत है,
3: पैदा कहा थी तोरे दूध पैदा होते, मने हमारे लड़कियां बच्चा पैदा की, अब दूध पैदा करे लगे बुढ़ापा में, जा चटपटो बेकार कह दी हो सब।
5: हर मतलब समझो तोरे दूध
3: हमारे घरे गाय भैंसी, हमारे घर दूध हो
5: है, वहां कहीं रहा है,
3: तब बाल्टिया भर भर तोरे घर में पहुंचाए नहीं,
5: तो हमारे घर खर्चा दादा लिए बताई हमका, जो कितना दूध
3: ले बहनी
5: ले समय जानी थे। शिवम का लड़कवा है तो वो पिए जा पी डालत है, उनकी दुल्हनिया पियत है, वो खुद ही पियत है, और रहे सहे जो
3: हाँ, हाँ,
5: लोटन चाचक चाही हमरे लिए बचते नहीं है।
3: अच्छा देखो पी करवा चौथ पर हमें दुई लाइन एक मिली गावत रही लड़किया,
5: हाँ तो तैयार कर लो करवा चौथ गाय खाएगा।
3: तो देखो ये गनवा निक लागत है बहनी, तू तो रही हमारे संगरिया, जब वो बिटिया गावत रही तो देखो हम पूरे हम सही गई थे।
4: ठीक है ठीक है।

0: बस एक का लान याद कर पाऊं
1: तो जीवा गावत रही था वो के सुन सुन के बहनी इतना रटी पाएं और का कही
0: तो चलो ठीक है इतना ये सुनाई दिए बहुत तो
2: है चाची एक ठू सुरे गनवा है कोयल कूके घूक उठाई तनी गाय
1: इनका बहुत नीक लागत है मन बंदूक बंदूक तो मारत है तब इनका बहुत नीक लागत है गाय दे वहां दोनों
0: हां चाची गाय
1: हो कोयल कूके हुक उठाई।

0: देखो
1: नीक लगा,
0: बहुत नीक लगा, लेकिन ये जान लियो ये नए जमाने के कुल गनवा है मुला हमरे लोग यही नते गायन है कि जे जगह जगह मर्द पर दिया
2: नवा पुरान की कोनो बात नहीं है।
0: हाँ।
2: जो उन गनवा ठीक लागत है ना, मतलब जियरा में बस ही जात है।
0: हाँ।
2: वहाँ गाय सके थे हम लोग, नवा पुरान की कोनो बात नहीं, हम तो पुरानियों गाय थे, नवो गाय थे, जो नीक लागत। देखो म्यूजिक जौन है ना,
0: हाँ म्यूजिक क्या,
2: हाँ तो यहाँ ऐसे म्यूजिक जौन हर चीज की दवा हो।
0: हाँ, हाँ।
2: तो गावे चाहिए, अब हसाओ ना
0: कहते हैं। देखो देखो म्यूजिक अगर सुन ही लियो,
1: अरे चाची म्यूजिक ना है, म्यूजिक
0: वो है म्यूजिक क्या,
2: चलो हम आज बोल दिए ना,
0: एक बात जान लो ये चाची, एक बात जान लो, हमार सबके जो नहीं गौनैया अब केहन है ना कि घरे आ जाओ परदेसी तुहार देशवा बुलावत है।
1: हाँ।
0: तो ये हम लोग एक ठो सनेसो दिहन है।
1: हाँ।
0: कि मैंने जे बहिरे हो जेके जेके मर दे,
2: ए बहिनी सुनो, जेके जेके तो जौन है उनके बारे में सोचो, जौन सैनिक हो
0: नहीं का कहीं थे
2: यहाँ पर खड़े हैं।
0: हाँ, बंदूकियाँ जे चलावत है,
2: अकेले यहाँ बरत रहती है, नौनो आंसू रोवत हुई है।
0: तो हमारे सभी प्रार्थना करी था कि उनके सबके जिंदगी बनी रहा है ना।
1: हाँ,
0: ये सब करा हुआ पूजत रहा है। हाँ। पूजत रहा है, बुढ़ाए जाए पूजत पूजत, और उनके सबके जिंदगी बनी रहा है, और सबके जिंदगी बहनी बनी रहा है।
2: तो हम तो यह अतनी प्रार्थना करी थी कि जो हमारे फौजी भाई है।
0: हाँ।
2: हुआ सेना वहाँ भर्ती
0: है,
2: और सीमा
0: पर खड़ा है,
2: सीमा पर खड़ा है हम लोग।
0: हाँ।
2: रक्षा खातिर,
0: रक्षा खातिर,
2: तो
0: हाँ, हाँ।
2: वही सब सलामत रहे, हम तो यह दुआ करी थे।
0: हाँ।
2: कि उनके जो जिंदगी बनी रहे।
0: हाँ।
2: और उनकी जो महरारू है, उनकी जो पत्नी लोग हैं।
0: हाँ।
2: तो वो हमेशा सुहागिन बनी,
0: सुहागिन बनी रहे हमेशा। हाँ। करुआ
2: पूजा, करुआ पूजा।
0: हाँ,
2: और
0: हाँ।
2: सुख चैन से रहे भाई।
0: अब यह कई मर्द वे बहिरे हो सब
2: सब यही कही थे कि खाली वह नहीं।
0: हाँ, हम वैसे रहती हूँ, मर्दवा सुखी रहा है, जब खिड़कियाँ मत से झांका कर रही हूँ। और का
2: तेराइन का कह रही है।
0: हाँ, जब देखो तब हम लोग आए थे, तब खिड़कियाँ मत से झांका कर रही, आप देखो
2: तो तेराइन आज बड़ी नीक लागत थी।
0: हाँ, हाँ, देख लो
2: गुलाबी गुलाबी वो सड़िया
1: पहने। हाँ। तेराइन इतना नजरिया जाती है।

0: रही है कि इन लोगों के पास बहुत गाना है, बहुत गाना, लेकिन हमार गुलाबी धोती और गाय दिन गुलाबी धोती गाना
1: तो हमारे लोग जोन कपड़ा के पहने रहे, हम लोग वही पे गाय देव बना बना
2: जी हो। हम लोग तो गाना याद आवत है लेकिन थोड़े सोच ली तब गाई।
0: हाँ सोच लियो बहनी, सोच लियो
1: तब कस के सोची जाओ के सोच वा हुआ चला गवा।
2: अरे नहीं यार
1: हाँ ओके सखी आई ओके वही बैलिया छीन ले गई है बहनी, बैलिया को छीन ले गई तब तू कस के गई वो
2: गाय था चाची।
0: हे गुलाबिया बैलिया
2: हम लोग ट्रांस बैलिया
1: गाओ मो बैलिया है बहनी छोट ऐसे कहली
2: चाची हो। हम लोग सेंड कर लेते तुरंत
1: मनी फेंड का होते है चाची, फेंड का होते
3: भेज लेते हैं सेंड
0: कहीं ना सेंड
1: सीएंड।
0: हाँ
1: अच्छा सीएंड कहीं ना
2: सेंड कहीं गाई
1: गाओ गाओ बहनी गाओ
2: कहबो की भूखी हम लोग रहे थे गाय नहीं
1: लाए नहीं बहनी
0: काल का दे तुम्हों लोगन का तो करवा पूजा है
1: ये हो ग्राहक परी गंगा नामम रहा थी
0: हम लोग
1: का तो करवा रहा है इनका
0: परी छोड़ रहे ना। हां हमारी महतारी रहा वही कहा है तू पूजक है हमारे नान मुनी करवा हुआ बाजार से और अपने संगे पूजावत रही और जौन गाय हम गई आज हम गाय थे नीक सुख गाय थे अपनी महतारी की वजह से
3: बिल्कुल
0: वही सिखाई है ऐसे तू लोग सीखियो
2: और
0: घर जब जइयो तो तू उनके घर की
1: जो गाओ गाओ बहनी गाओ बच्चा।

0: हाथों की मेहंदी लगा
1: काक वही नहीं हंसा लगी मेहंदी नहीं लगा दी हो का
2: नहीं अरे खान का कानून वाला तो मैं तो दुई मात्रा आगे ना बढ़ाई लो खान
0: चाची की खन खन खन खन
1: मेहंदी गाय तो मेहंदी कैसे है अम्मा।

0: वारे बहनी अर्चना, वारे बहनी, बड़ा नीक गाउन है,
1: बहुत बढ़िया।
2: धन्यवाद चाची, थैंक यू।
0: अब कह दी फेंक दू,
1: कहे
0: बहनी
1: थैंक यू कहे ना,
0: तो थैंक यू कहा, थैंक यू,
2: थैंक यू ना सिखाई नहीं मैं टीचर।
0: हाँ
2: थैंक यू
0: बहनी, गोल का मुँह हम ना कहे
2: चाची, कहा थैंक,
1: अच्छा ये
0: थैंक
2: यू चाची को ऐसे
1: बताओ कि चावल आटा पिस जाए और हरा वरा बनाइयो कि ना बनाइयो,
0: बनाई बे कहने बने वही खाती तो चौरा मांगी थी,
2: खाती भूखी रात
1: तो। हाँ नए पिस से जानती थी हरा बनाओ
0: बहनी, नए तो हम ना ही जानी थे,
2: तो चाची जैसे मोमोज बनाया था इससे हरा बनाया विधि
1: ना ही बहनी, देखो ये परंपरा वाली चीज है, मोमोज का नाम ना लियो।
2: अच्छा
1: हाँ ये सब ना ही, ये सब
0: मोमोज कहाँ बनो तुम चाची, तो हर मुँह न चले
1: चीनी
0: सियाने ही बहुत,
1: हम लोग फरा बनाई थे तो उका बहुत विधि विधान से बनत है, पूजा पाठ की चीज हो ना
0: उका बहनी, वही फरवा के तो पूजा कर खाबे
1: तो वो मोमोज कहाँ से आएगा,
2: ये ना है चाची जैसे की उके बर्तन नए विधि से बनाया जाता है
1: ना ही, तो हम देखो हम का करते अपने बात चलनिया है तो चलनिया अगर मान लो ज्यादा फरवा बना है तो हम दो तरफ चढ़ा ली थे,
2: अच्छा
1: है तो एक भगौना ले ली थे और भगौना के ऊपर एक रुपट्टा उपट्टा तमाम पड़ा रहा था,
2: अच्छा।
1: हाँ तो सूती कपड़ा बांध दो चाहे गौछुआ बांध दो कुछ बांध दो भगौना के ऊपर, जब पानी खौले लगे तो उसके ऊपर फरा भर भर के धाई दो
0: कपड़ा,
1: हाँ और ऊपर से बंद कर दो,
0: हाँ
1: उतना बढ़िया बना था,
0: अच्छा
2: चाची कितना बढ़िया अकिल बताए थी, जेकरे थरी वाला रहा
1: चलनी बनाई,
2: हाँ वो चलनिया जेकरे ना रहा तो
1: कपड़ा बांध दे भगौने के ऊपर बांध,
0: हाँ हाँ बल जाए
1: लगाए तो फरा बना बनाए के और ऊपर से ढाक दे बढ़िया से, और एकदम बढ़िया उसे जात है पक जात बहुत बढ़िया
0: है। बहनी बताओ हम जो है एक जन के घर आ गए ना बड़ा मनेगी रहे, तो उनके यहाँ कुछ सोवन धरा रहा, वही में भूज भूज खात रही निकाल निकाल,
1: सोवन
0: हाँ
1: इस सोवन का होता है,
0: सोवन एक ठो मशीन रहा
2: चाची,
0: वही मशीनिया में यहाँ आलुआ धाई दे भूज जाए,
1: इस सोवन कौन मशीन चला है,
0: हाँ सोवन एक ठो मशीन है,
2: अवन अवन
1: अवन कहा जाता है, ओवन सोवन नहीं ओवन,
2: फ्राई हो जाता है और
0: बिजलियम लगा देते हैं लग दे बच जाते,
1: हाँ का ओवन कहते सोवन नहीं कहते, दुलारी सीख लो नहीं बहुत बेइज्जती हो जाइए समझे, वो ओवन होत है काली
0: ओवन,
1: हाँ करिया करिया
0: हाँ वही में बनी
1: चौकड़ी,
0: वही में प्लेटवा में आलू धरे अलुआ भूजेगा,
1: अलुआ उसे जाए वह
0: नहीं कछू नहीं पानी वानी डाले
1: धोए धोए आलू और धई दे वही मां,
0: और वही में वो दे दिन का बरेडवा, बरेडवा बहनी वही में वो भूजेगा,
1: तो बढ़िया चीज तो है ये भाई, लेकिन हम लोग नाई चला पाए थे ना,
0: हाँ
1: हमारे लोगन के बस की बात नाई
0: है चाची, थोड़े नाई है वो वह मशीन
1: हम नाई धरे है के चलाई हमारे अतना हम लोग कहाँ जानी थे पढ़ा वड़ा तो उतना जो पढ़ा वड़ा लिखा होता है वो सब मशीनिया सीनिया धरत
2: है, सुकुवार होते चाची,
1: सुकुवार हुए हम लोग तो सब
2: कहे चाची, हमें सबसे नीक चूल्हा खाना निकला था,
1: हाँ तो वहाँ बढ़िया होते बहनी, और ये गैस वैस से तो गैस पैदा हो जात पेटे में,
0: तो इनके गंगा धाम बहनी चैला उला है बार बार फार फार बनाई लेती, हमारे सबके कहाँ है इतना चैलवा,
2: है चाची गंगा धाम
0: लेकिन हमारे तो बहनी वहाँ बरत है गैस वा
1: गैसो बनाओ
2: चाची, भैंस रखे गोबर बेच दे,
1: देखो गैसो रोटी ना बनाओ कर रोटी चूल्हे बढ़िया हो
2: चाची, हो
1: भैंसे आजाद है
2: भैंसे रखे हो कंडा पात पात बेच दे,
1: बेच दे दी
0: बुरे कहा तू, बुरे कहा तू
2: चाची, यहाँ बुलाए गयी की हम भैंसिया रखी,
1: का नाम है गोबर है माँ माटी मिला मिले पाँच हजार
0: लियो, अब यह बगदाइन जाओ चटपटो निकराओ तू निकराओ यह मासे निकराओ
2: चाची होकर तो
0: के हाँ अब गोबर है माटी के मेरा वो थे बहनी अतना नहीं, अभी
1: अभी
0: सुनो अभी अतना अंधियर नहीं है
2: चाची, तू ऐसा चुरी हूँ कौन पता वही में है चुरी
0: ना ही, तो बहनी
1: देखो रसगुल्ला चुराम है तो कहीं अब जाए तो एक पिछली साल जाए करवा जाओ साड़ी में लुकाई ली, ऐसे
0: तो जब तू हमें सिखाई रहा तब कहाँ करी थे बहनी मना नहीं जब माने तो धई ले थे कुछ छोट मोट चीजिया अब धनतेरस धनतेरस वक्त जब जाब
1: तो
0: बर्तनवा लेब तो गिलासा ऐसे गुड़मुड़िया लेबे धोती हम
1: देखियो देखियो इनकर ईमानदारी
2: चाची साफ साफ झलकत है ईमानदारी
0: तो ये किठो को धरी तो हो गए भगवान माफी देते हैं माफी को भगवान कह देते हैं
1: अब तो चाहे जो कुछ कहो चोरी चोरी हो भगवान ना ही माफ कर सकते है बड़का कैमरा लगाए हैं देखा था सब
2: बड़ा कैमरा हुए लाग
0: ये भगवान लोग यहाँ कमरा लाग है
1: हाँ, उनके तो लगाए है कैमरा
0: अरे मोरी मैया जैसे
2: यमराज लगाए रहा
0: जैसे ही दू लगाए हो घर में आई
1: जौन करियो जौन करियो गलत काम सब हाँ। कैद हो जाए
2: हाँ चाची
0: हाँ टीएम तो हो ही
1: तो देखो भैया पहले तो सबका जो है अब हम सबसे यह है कहीं से कि तू लोग सुन लो करवा आवे वाला है ढंग से तैयारी कर लियो है और करवा से पटाखा अटाका छुटावे लगत है सब हाँ। जब चांद निकलत है
0: हाँ हाँ
1: तो पटाखा एकदम छूटे लागत
2: है घर बता दे अपने हमसे तो रहते ही नहीं
1: माँ तारीख बताई थी अपने और सब सावधानी से अब आवत है जो पटाखा टाका वाला टाइम ही बड़ा सावधानी समय होता है कौनो हादसा हो सकत है होता लड़के बच्चे का सबका जो संभाल
0: के रखो बहनी
1: बस यहाँ
0: और सब खूब खुश हो के मनायो
1: मनायो
0: घर में झगड़ा और सबका बोली हप्पी करवा और का हप्पी करवा चौथ
1: तो देखो फिर मिली है हम लोग आए तो हाँ, फिर से बधाई
0: दे हमेशा मिल भाई और का जब मिलब तब बहनी बधाई दे दे भाई और का
1: तो चलो भाई अब टाइम हो तो बोल दिया जाए
0: हाँ,
1: कि ज्ञान स्त्री
3: 89.6 FM
0: गोले
3: गोंडा शहर की धड़कन
4: पशु में बुखार मुंह या नाक से बहाव दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें बाड़े में मक्खी मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें ध्यान रहे ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है सतर्क रहे पशुओं को सुरक्षित रखें पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी
5: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9268-9976-9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: इलाज।
1: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस्किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562। ये व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। तो फिर आज तो भाई बहुत सारी खास बात है, और इतनी सारी खास बात आपके साथ मिलकर करनी है। आपके साथ रूबरू होंगे हम, बातचीत करेंगे, और हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। और हम ही नहीं, हमारे साथ भाई जुड़ चुकी हैं आपकी को होस्ट यानी आरजे जी, जिनको आप खजाने के नाम से जानते हैं, जिसकी आवश्यकता सबको होती है। तो भाई उन्हीं का पर्याय है निधि। तो निधि जी, आपके ही कार्यक्रम में आपका ही अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत।
1: धन्यवाद सर।
0: और कैसी हैं आप?
1: जी सर, मेरा भी यही सवाल है, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ।
0: अच्छा, एकदम, मतलब हम लोग एक दूसरे का हाल चाल लेता रहे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
1: जी बिल्कुल।
0: क्या बात है। और आज का दिन तो है बहुत खास।
1: बहुत ज़्यादा ही खास है सर। अभी मार्केट से आए होंगे, आपको पता ही चल गया होगा।
0: चल गया होगा, मतलब लगता है कि धूम मची है।
1: बिल्कुल, धूम मचाले मन में, गाना बज रहा है।
0: अच्छा जी जी जी जी। और इसके पश्चात भाई मेरे साथ हरिश्चंद सविता जी मौजूद हैं। उन्होंने लिख दिया भाई जय माता दी जी, आपको भी जय माता दी। हाँ, तो भाई आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।
1: आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी हाँ, और हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी भी हैं, और विकास मनु सर जी, गुड इवनिंग। एंड निधि जी नमस्ते, मेरा गाना जिंदगी क्या है एक लतीफ़ा है। जी हाँ, हरिश्चंद्र सविता जी हैं। तकदीर खुल गई भाई हमारे साथ। आज जानते हैं आज कौन है?
1: जी सर, कौन है?
0: हमारे चैट बॉक्स में उपस्थित है, गोंडा में रह चुके स्टेशन अधीक्षक पोस्ट ऑफिस में अधीक्षक के पोस्ट पर श्री मान अशोक त्रिपाठी जी। और आज मतलब वो एक व्यक्ति नहीं, कभी आपकी उनसे मुलाकात जरूर कराएंगे, एक व्यक्तित्व तो है वो।
1: जी सर बिल्कुल करवाएगा, हम भी ऐसे शख्सियत से जरूर मिलना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, और मतलब वो दुनिया के भिन्न विभिन्न हिस्सों में उन्होंने भ्रमण किया, और विश्लेषण किसी चीज़ को लेकर बहुत शानदार करते हैं। और देखिए, पहली सूचना ये थी कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, और दूसरी सूचना मिल चुकी है आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, और ऐसे अवसर पर मैं प्रयागराज में हूँ, उन्हें पत्र लिख रहा हूँ।
1: जी बहुत अच्छी बात है ये।
0: और जानती हैं अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, उसके पश्चात एक दिन और है आज, जानते कौन सा?
1: जी कौन सा?
0: इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, आज बेटियों का भी दिन है।
1: जी बिल्कुल, बेटियों का दिन तो है।
0: और नवरात्रि के साथ साथ बेटियों का दिन है, इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है।
1: जी सर बिल्कुल।
0: और आपको बताएं, अच्छा ये बताइए निधि जी।
1: जी सर,
0: कई वर्षों से आप दशहरा मना नहीं होंगी।
1: जी।
0: और दशहरे के ठीक पहले आपने नवरात्र कई बार मनाई होगी।
1: जी सर।
0: तो ये दशहरे के ठीक पहले नवरात्रि को मनाने का क्या कारण है, क्या कोई विशेष कारण है?
1: सर हम मतलब जैसे कहा जाता है कि अच्छाई पे बुराई की जीत, तो 9 दिन हम देवियों की पूजा अर्चना करते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे जीवन में भी होता है, कोई मुसीबत या कुछ आती है तो हम पहले रुकते हैं, सहते हैं, फिर 10 दिन के बाद हम बिल्कुल 10 दिन बाद दशहरा में जैसे रावण को जलाया जाता है, वैसे ही जो बुराइयां होती हैं उस पर अपने जीवन में विजय पाया जाता है।
0: बुराइयां तो हैं, लेकिन मतलब ये जो प्रथा चली
1: जी
0: कि हमने दशहरे को जो है वो जन्मदिवस, मतलब रावण का पुतला हमने फूका, रावण का दहन किया
1: जी,
0: लेकिन उसके पहले जो 9 दिन का नवरात है, ये कहाँ से और कैसे प्रारंभ हुआ, क्या इसकी जानकारी है आपको?
1: नहीं सर।
0: नहीं है, क्या बात है। तो चलिए, चूंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है और अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिवस है, तो भाई ज्ञानी लोग और विश्लेषण करने वाले श्री अशोक त्रिपाठी जी, इनसे अच्छा विश्लेषण शायद ही कोई कर पाता हो, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो 4 चांद लग गए। और आज धर्मेंद्र मोहन जी बताते हैं हर अग्रसेन जी का भी जन्मदिन है, क्या बात है, बहुत लोगों का आज बर्थडे है
1: जी।
0: आपका तो नहीं है?
1: जी सर मेरा तो।

0: जी हाँ, तो भाई और क्या बात है, अमिताभ बच्चन को अगर पत्र लिखा जा रहा है तो अगर उत्तर प्राप्त होता है तो हम ये चाहेंगे जरूर कि एक बार उत्तर हमको जो है वो भेजा जाए। क्या बात है, ये होती है कि आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है तो उनको हम पत्र लिख रहे हैं।
1: सर, इस जमाने में भी पत्र क्यों लिख रहे हैं?
0: क्या बात है, अब आप बताइए, क्या एक चीज बताइए
1: जी,
0: ईमेल का जमाना आ गया
1: जी
0: और व्हाट्सएप का जमाना आ गया
1: जी,
0: लेकिन जो खत होते हैं ना, जो लेटर्स होते हैं, वो आपके हाथ में एक स्टफ होते हैं, एक वस्तु होती है जिसको छू करके महसूस करके आप कुछ बहुत प्यारा सा फील करते हैं। मतलब कागज का चलन था, है और रहेगा। और मुझको लगता है कि अब आपने जो कि कह दिया कि पत्र क्यों, तो उत्तर ये है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के।
1: तो वाह सर, बहुत अच्छी बात कही ये आपने।
0: हाँ, मतलब कागज़ का अपना एक महत्व है कि हम उसको हाथ में लेकर देखेंगे कि हाँ हमने पत्र लिखा था और ये पत्र उन तक पहुंचा था और उधर से ये जवाब आया था। तो हमको लगता है कि वो जो आप हाथ में लेकर के महसूस कर सकते हैं, वो ईमेल या वो व्हाट्सएप का वो संदेश, वो कोई स्टफ नहीं है जो उसको आप महसूस कर सकें। और कागज़ पर आपने लिखा, कलम आपकी चली, तो और श्री अशोक जी ने हमको APJ अब्दुल कलाम का पत्र दिखाया था, उनके बेटे ने उनको जो है वो शुभकामनाएं दी थी, उधर से APJ अब्दुल कलाम साहब ने पत्र लिखा। वो पत्र अभी भी मेरे व्हाट्सएप में सुरक्षित है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साइन भी है। सोचिए सोचिए, अब कागज़ ना हो तो इंसान साइन कैसे करे, व्हाट्सएप पर हम साइन तो कर नहीं पाएंगे।
1: ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हम कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है ये आपने जो किया है बहुत अच्छी बात है। किसी को स्पेशल फील कराने का अपना नया नया तरीका होता है, किसी को हम मिल लेते हैं, खत लिख देते हैं, मैसेज कर देते हैं, और ज़्यादातर होता है जब किसी का बर्थडे रहता है तो हम कॉल कर लेते हैं, वैसे कभी बात नहीं होती पर उस दिन हम कॉल जरूर।
0: बताइए, अमिताभ बच्चन का फ़ोन नंबर ना मेरे पास है ना आपके पास है, लेकिन पता हम सभी के पास है, तो उन्हें फ़ोन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ईमेल भी शायद नहीं कर सकते, लेकिन उनको उनके पते पर पत्र लिख सकते हैं। और ये चलन चलना चाहिए
1: जी, बिल्कुल चलना चाहिए। और सर ने बिल्कुल अच्छा किया है जो उन्हें खत लिख दिया।
0: हाँ, कम से कम क्या बात है। तो नवरात्र क्यों मनाई जाती है, इस पर आते हैं
1: जी। बिल्कुल,
0: भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, सारे जो रावण की तरफ के सारे शत्रु थे वो मारे जा चुके थे, उनका वध हो गया था। और राम और रावण की जब लड़ाई चली तो एक दिन क्या हुआ कि रावण जो है वो प्रचंड तरीके से लड़ा, मतलब उसने उस दिन जो है वो विभीषण मूर्छित हुए, हनुमान जी मूर्छित हो गए, सुग्रीव मूर्छित हो गए। और भगवान शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान राम के मन में बड़ी निराशा थी, मतलब क्या हो गया ये। जामवंत सेना में सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने भगवान राम को समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी दिन होता है, आज रावण का दिन था और फिर युद्ध होगा, फिर जीत लेंगे हम। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं जामवंत जी, ऐसा नहीं है, आज रावण नहीं लड़ रहा था, आज रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, दुर्गा लड़ रही थी, और अगर वो उनके पक्ष में रही तो शायद ये युद्ध हम यहां से हार जाएंगे। अब क्या किया जाए, तो ये था कि भाई हमको माँ का ध्यान लगाना होगा और उनको अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो रावण की तरफ है। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो हमको नवरात जो है वो पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए उसको नवरात्रि कहा जाता है। और भगवान राम ने 108 जो है वो नील कमल जो होते ना
1: जी सर,
0: उनका संकल्प लिया कि हम माता दुर्गा को प्रसन्न करेंगे ताकि वो हमारी तरफ आए और हम लंका पर विजय प्राप्त कर सकें। अब हनुमान जमन ने कहा ठीक है प्रभु, अगर ऐसी बात है तो ठीक, आप ये लड़ाई लड़िए और युद्ध हम लोग संभालते हैं। तो 9 दिन तक भगवान राम ने दुर्गा माता की पूजा की, शक्ति की पूजा की और 108 कमल के फूल मंगाए। और जब 9वां दिन आया तो ऐसी स्थिति में माता ने परीक्षा लेने के लिए जो 108 कमल के पुष्प थे उनमें से एक कमल का फूल चुरा लिया। अब 107 फूल चढ़ चुके थे और जब भगवान राम ने हाथ बढ़ाया तो कमल गायब, आँख खोली। अब अगर वो वहां से उठते तो पूजा भंग हो जाती, 9 दिन की साधना भंग हो जाती। अब क्या किया जाए, ऐसी स्थिति बड़ी मुश्किल है, किसी को आवाज देंगे, पूजा के बीच में व्यवधान होना नहीं चाहिए। उस समय भगवान राम ने कहा कि धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। तो उनका क्या करें, अब परिस्थिति तो विपरीत है, किया क्या जाए। तो उनका मेरी माँ मुझको कहती थी कि मेरा जो बेटा है वो नील कमल जैसा है, कमल के समान खोल, आपने सुना होगा नीलांबुजम श्यामल को।
1: यस सर, सुना है।
0: भगवान राम ने कहा कि अब मैं अपनी आंखें समर्पित कर दूंगा माँ को, और उन्होंने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसको अपने आंख के एकदम पास लेते हुए चले गए। और जब माँ को लगा कि अब ये वास्तव में अपनी आंखें निकाल लेंगे तो माँ प्रकट हुई, उन्होंने कहा जय होगी पुरुषोत्तम नवीन, आपकी जय होगी, मैंने आपकी इस पूजा को स्वीकार किया। तो भगवान राम ने माता की 9 दिन की पूजा की थी, इसीलिए तब से हम 9 दिन की नवरात्रि मनाते हैं। और उनसे आशीर्वाद पाने के पश्चात उन्होंने 10वें दिन रावण का वध किया था जिसको हम दशहरे के नाम से जानते हैं।
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो ये प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई थी। तो आइए भाई, अब माता जी का समय है और ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि कोई एक प्यारा सा वचन हमारे साथ राखी जी हैं भाई, और वाह वाह आपको भी धन्यवाद, और कैसी आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और ऐसी स्थिति में नवरात्रि का पहला दिन है तो क्यों ना शुरुआत हम किसी माँ के प्यारे से भजन के साथ करें।
1: बिल्कुल सर।
0: तो हम देख रहे थे कि द्वार सजे हुए हैं, तो आइए कुछ धूम मचाते हैं और लखबीर सिंह लखा को लेकर के आते हैं। और आइए अब आपको ले चलते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये एक प्यारा सा भजन आप सभी के लिए। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, क्योंकि ये गोंडा ही नहीं अब बन चुका है हम सभी के दिलों की
1: धड़कन।
0: जी हाँ, तो धड़कन बन चुका है, धड़कते रहिए साहब। और फिलहाल ये प्यारा सा भजन आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, तो बोलिए
1: जय माता दी।
0: हाँ, साचे दरबार की जय। जी हाँ, जय माता दी। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बढ़ते हैं आज का जो दूसरा बिंदु है, और वो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिनका नाम वो रखते हैं हरिवंश राय श्रीवास्तव। आगे चलकर ये जो बच्चा है ये अपना करियर वो बनाते हैं, बनाना चाहते हैं कवियों की दुनिया में। और जब कवियों की दुनिया में आते हैं तो वो एक पेन नेम होता है, सीडो नेम, जिसको तखल्लुस भी बोलते हैं उर्दू में। तो उन्होंने हरिवंश राय श्रीवास्तव से उसको हटाया और हरिवंश राय बच्चन। गोंडा में आपको, पूरे गोंडा में नहीं, आपको पूरे भारत में बच्चन नाम के सरनेम से और कोई व्यक्ति कभी मिला नहीं जी?
1: नहीं सर,
0: नहीं मिला जी। क्योंकि ये हरिवंश राय जी ने अपना उपनाम दिया था बच्चन
1: जी।
0: और उनका बेटा हुआ तो उनके बेटे का नाम रखा उन्होंने इनकलाब बच्चन। और उस समय में उनके जो, चूंकि हरिवंश राय बच्चन एक बहुत महान कवि रहे, तो उनके समकालीन छायावाद के एक बहुत अच्छे कवि जिनका नाम आपने सुना होगा, सुमित्रानंदन पंत।
1: जी सर बिल्कुल, सभी ने सुना होगा।
0: तो इनकलाब श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के बचपन का नाम था और ये नाम बदल कर सुमित्रानंदन पंत ने रखा था अमिताभ। और अमिताभ का मतलब क्या होता है तो आपको पता ही होगा।
1: नहीं सर, अमिताभ का मतलब क्या होता है?
0: अच्छा, अमिताभ का मतलब होता है उगते हुए सूरज की लालिमा।
1: वाह, नाम का ही जब इतना अच्छा हाँ, मतलब है तो व्यक्तित्व कैसा होगा?
0: कैसा होगा, क्योंकि नाम का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। इसे अगर किसी का नाम अशोक है, इसका मतलब शोक उनसे बहुत दूर भागेगा।
1: वाह सर,
0: हमारे साथ धर्मेंद्र हैं, यानी धर्म और इंद्र दोनों उनके साथ हैं। हरिश्चंद्र है, देखिए हरीश भी हैं और चंद्र भी हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो मतलब कहीं ना कहीं नाम का असर होता है। और अमिताभ बच्चन ने जब फिल्म जगत की दुनिया में कदम रखा तो ऐसी स्थिति में उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई और उन्होंने मन बनाया कि अब वो रेडियो पर जाएंगे, जरा सा आवाज़ में बोलेंगे। तो ये हुआ कि वहाँ पर ये कहा गया कि आपकी आवाज़ इतनी मोटी है कि समाचार पढ़ने के लायक नहीं है, आपकी आवाज़ अगर पतली होती तो हम आपको शायद देखते। तो वहाँ से भी निकाल दिए गए
1: जी।
0: हाँ, मतलब अमिताभ बच्चन को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था क्योंकि उनकी आवाज़ मोटी थी। और उस समय उनको ये लगा कि अब लगता है कि कुछ बचा नहीं जीवन में। और ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं फिर से अपनी मातृभूमि की ओर। और इसके पश्चात आपको बताएं, कभी कभी इंसान जो है वो एक मौके का भूखा होता है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: हाँ, और इससे पहले उनके करीब 11 या 12 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी थी। मतलब 7 हिंदुस्तानी उनमें से प्रमुख थी जिसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी
1: जी।
0: तो उनको लग रहा था कि फिल्म की दुनिया शायद उनके लिए नहीं बनी है, तो वो वापस जा रहे थे। उस समय प्रकाश मेहरा एक मूवी बना रहे थे और उस मूवी में उन्होंने लिया था जिस एक्टर को, वो जानी उनका तकिया कलाम था, आप आवाज़ पहचान गए।
1: जी जी
0: कौन?
1: अमिताभ बच्चन जी की।
0: जी नहीं, ये राजकुमार बोलते ना जानी। तो उस फिल्म बन रही थी और ये प्रमुख रोल में थे राजकुमार। तो उन्होंने अपने सर पर कुछ ठंडा सा तेल लगाया हुआ था, तो प्रकाश मेहरा जी गए उनको समझाने के लिए कि भाई जरा ऐसा है कि आप जब ये तेल लगाए हुए हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई ठंडा तेल लगाया रहता है तो हल्का सा आपको अगर नहीं पसंद है तो इरिटेशन होती है कुछ लोगों।
1: जी सर, परफ्यूम से, तेल से या तेल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं।
0: तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अपना ये तेल सजरा बदल लीजिए और हमको दिक्कत होती है। तो राजकुमार ने कहा जानी हम अपना तेल नहीं बदलेंगे, तुम फिल्म का हीरो बदल दो। और इतना कहकर राजकुमार चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि प्रकाश मेहरा उनको बुलाएंगे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात हो गई।
1: जी सर, प्रकाश मेहरा जी की।
0: जी, इत्तेफाक से, मतलब एयरपोर्ट पर वो जा रहे थे और वो सोच रहे थे कहीं निकलना पड़ेगा।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा फिल्मों में काम करोगे, अंधा क्या चाहे दो आँखें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। और जब वो सेट पर लेकर के पहुंचे तो जो फिल्म बन रही थी तो उस फिल्म का नाम था जंजीर।
1: जंजीर
0: जी। और फिल्म में एक्ट्रेस थी जया भादुड़ी। और उस समय जया भादुड़ी एक मानी हुई एक्ट्रेस थी, मतलब एक अस्तर था उनका। जब प्रकाश मेहरा लेकर के आए तो उन्होंने कहा इस लंबू के साथ कौन काम करेगा भाई, कहाँ उनकी लंबाई देखिए, कहाँ जया भादुड़ी की लंबाई।
1: जी।
0: तो ये बात सीन ही नहीं जमेगा भाई, लगेगा ही नहीं कि हम जोड़ी ही नहीं जमेगी। उन्होंने कहा काम कीजिए, देखा जाएगा। और काम हुआ और ईश्वर ने पहली सुपर डुपर हिट फिल्म डाली, रातों रात एंग्री यंग मैन के नाम से परिचित हुए, फेमस हुए अमिताभ बच्चन।
1: वाओ सर, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किया है।
0: हाँ, स्ट्रगल मतलब संघर्ष उनके जीवन का एक हिस्सा है। और मैं मानता हूँ कि संघर्ष सभी के जीवन का हिस्सा है। आपके जीवन में संघर्ष नहीं है? अगर है तो बताइए क्या है।
1: जी सर, संघर्ष तो सभी के जीवन में होता है। मेरे जीवन में जैसे उनका संघर्ष था, उनकी 11 फिल्म फ्लॉप गई, मेरे भी जीवन में हो सकता है कोई एग्जाम ना क्लियर हो रहा हो या किसी चीज़ की समस्या हो। तो मैं ये सीख रही हूँ कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो रुकना नहीं है। अगर वो अपने तीसरे या चौथे फिल्म पे रुक जाते तो आज उनका करियर नहीं होता। उन्होंने लगातार मेहनत की।
0: हाँ, संघर्ष किया और अंततः ईश्वर ने उनको परिणाम दिया, वो चले जिस पथ पर उसका नाम था
1: अग्निपथ।
0: देखिए उनकी एक कविता है और उनके ही पिता ने लिखी है।
1: जी बिल्कुल।
0: वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ,
1: अग्निपथ।
0: तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कल शपथ, कल शपथ, कल शपथ, अग्निपथ,
1: अग्निपथ,
0: अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।

0: वो फिल्म पहले वही बना रहे थे
1: जी,
0: और उनको उम्मीद थी कि उनको बुलाया जाएगा और वो फिल्म चल गई, तो उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं इनके साथ फिल्म नहीं बनाऊंगा। हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें अमिताभ बच्चन और राजकुमार दोनों हों, जबकि इन दोनों ने अलग अलग कलाकारों के साथ बहुत फिल्में बनाई। देखिए तिरंगा बनाई, उसमें राजकुमार के साथ नाना पाटेकर, उन्होंने राजकुमार जी ने फिल्म बनाई जंगबाज, उसमें गोविंदा उनके साथ हैं। अमिताभ बच्चन जी ने गोविंदा के साथ फिल्म बनाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दिलीप कुमार के साथ बनाई गई शक्ति, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बनाई, सबके साथ बनी, लेकिन सिर्फ दो अभिनेता ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ कभी काम नहीं किया फिल्म जगत के, और समकालीन होते हुए भी उनके नाम हैं अमिताभ बच्चन और राजकुमार
1: जी। सर बिल्कुल।
0: और बाद में चूंकि उसी फिल्म से इनको ब्रेक मिला था, एक सुपरस्टार हुए थे, तो उन्होंने विवाह भी फिर जया बच्चन के ही साथ किया।
1: बहुत अच्छी बात है,
0: प्रेम को निभा। जी हाँ। और अब आपको ले चलते हैं उस गीत की तरफ जो भाई, जो फिल्म थी जंजीर, बहुत ही पैसा गीत, और जो भी गीत फिल्माया जा रहा था, आपको बताऊं तो लता जी और रफ़ी जी इस गीत को फिल्मा रहे थे, मतलब गा रहे थे
1: जी।
0: जो भी गीत गाया जा रहा था, तो अमिताभ बच्चन ने, मतलब रफ़ी साहब ने गीत गाया, तो ये कहा गया कि, लता जी ने कहा कि भैया जरा इसको दोबारा गाते हैं, तो रफ़ी साहब ने सोचा कि अच्छा ठीक है, लता जी कह रही, क्योंकि वो भाई बहन मानते थे, लता जी राखी बांधती थी रफ़ी साहब को, तो उन्होंने कहा ठीक है लाओ दोबारा गा लेते हैं। अब दो बार गा लिया, अमिताभ बच्चन को देख रहे थे, उनकी पर्सनालिटी देख रहे थे, उनकी आवाज़ देख रहे थे, तो जब दूसरी बार गा दिया तो फिर लता जी ने कहा कुछ जमा नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं
1: जी। कभी कभी किसी के पर्सनालिटी पे कोई चीज़ें नहीं जमती हैं।
0: हाँ, अब हुआ क्या, तो फिर उन्होंने पूछा कि आखिर में क्या है, बात क्या है, तो वास्तव में जो फिल्म में दृश्य है, ये गीत फिल्माया जा रहा था गुलशन बावरा के ऊपर, जो एक बहुत अच्छे मतलब कवि हैं
1: जी,
0: और बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, तो उनको ये पता था कि ये गीत फिल्माया जा रहा है अमिताभ बच्चन के ऊपर, जबकि ये गीत फिल्माया जा रहा था गुलशन बावरा के ऊपर। तब उनके समझ में आया, ओहो दिस इज द ब्लंडर, यहाँ हम गलती कर रहे थे। तीसरी बार उन्होंने जब गुलशन बावरा का व्यक्तित्व देखा, तो उनकी आवाज़ में फिर उन्होंने वो गीत गाया। आइए हम आपको बताते हैं कि वो गीत कौन सा था। जी हाँ, रंजीत फिल्म का ये पैसा गीत, जिसे रफ़ी साहब ने तीसरी बार में पूरा किया था। मेरे साथ अरविंद जी हैं, जय माता दी, आपको भी राखी जी प्रणाम करते हैं। और अब चलिए आपको सुनाते हैं वो गीत जो रफ़ी साहब ने तीसरी बार गाकर इस गीत को फाइनल किया था, जो फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन के ऊपर नहीं बल्कि गुलशन बावरा।
1: जी हाँ, तब तक सुनते रहिए आप रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन
0: जी।

0: जी हाँ मनु सर, मैं आपको एक बात बताऊं,
1: जी
0: आज
1: बिल्कुल।
0: अमिताभ बच्चन और नवरात्रि स्पेशल के अलावा भी कुछ खास है।
1: कुछ खास है? वो क्या खास है भाई?
0: सर, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है।
1: हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है,
0: जी
1: तो इसका
0: बिल्कुल।
1: मतलब आपको हमको चॉकलेट खिलानी चाहिए,
0: आपको मतलब मैं आपको क्यों खिलाऊंगी, आप मुझे खिलाएंगे?
1: क्योंकि आपका दिवस है, आपका बर्थडे है, तो आप खिलाएंगे। इसका बर्थडे होता है, खिलाता है।
0: नहीं सर, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है
1: अच्छा,
0: जो
1: ये
0: दुनिया भर में मनाया जा रहा है उनकी
1: जी
0: अधिकार, सुरक्षा और शक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए। तो सबका फर्ज बनता है कि जो भी उनके घर में लड़कियां हैं उनको एक एक चॉकलेट जरूर खिला दें या उनको बिसी कर दें, उनको लगे कि आज उनका दिन है।
1: हाँ, मतलब आज भाई अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, तो ये होना चाहिए, मतलब सबको एक स्पेशल फील कराने का मौका होना चाहिए। फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे। अच्छा, ये वाइफ्स डे कभी मनाया जाएगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? अंतर्राष्ट्रीय पत्नी दिवस मनाया जाना चाहिए?
0: सर वो कोई दिवस नहीं है, वो रोज मनाया जाता है, आप भूल गए?
1: अच्छा, वो रोज मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: जी हाँ, वो मतलब रोज मनाया ही जाता है, मतलब पत्नी को रोज मनाना ही पड़ता है, ये कहना चाहती हैं आप?
0: नहीं, पत्नी को रोज नहीं, अब उनका कोई दिन नहीं रखना, उनके बिना आपका एक दिन भी दिन अच्छा नहीं जाता होगा। आप सोच लीजिए, कभी कल्पना करिए आप लोग कि आप अपने पत्नी के बिना एक दिन रहें।
1: हाँ, मतलब तो हमारे दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी वाली ससुराल मायके जा रही है।
0: ये सब बस कहने की ही बात है सर, ढूंढते हुए वो घर से निकलते हुए वो जो बाइक की चाबी होती है और हाथ में पहनी हुई घड़ी नहीं मिल रही होती है, अपना रखा चार्जर नहीं मिल रहा होता है, जाते समय कोई टिफिन नहीं पैक कर रहा होता है।
1: ओहो, मतलब थोड़े से दुख के बदले अगर इंसान को बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ जाए तो दिक्कत है।
0: सर आप ये ऐसे कैसे कह सकते
1: मतलब
0: हैं?
1: ने कहा थोड़ा सा दुख, मतलब ये हुआ कि हमको उनके जाने का दुख ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं।
0: नहीं सर, दुख बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। और
1: हाँ
0: पत्नी को लेके हम कोई वो नहीं सुनते भाई, पत्नियां जिनके भी जीवन में होती हैं वो बहुत खुश रहते हैं।
1: बहुत खुश रहते हैं और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि
0: जी
1: पत्नी खुशी का एकमात्र जरिया है। वाइफ का फुल फॉर्म होता है,
0: क्या होता है
1: समझा?
0: सर?
1: वाइफ का फुल फॉर्म नहीं आते आप?
0: नहीं सर
1: विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम।
0: बिल्कुल, क्योंकि हम उसी से लड़ते हैं जिनको जानते हैं कि लड़ सकते हैं, वैसे आप राह चलते किसी महिला या पुरुष से लड़ नहीं सकते
1: नहीं लड़ सकते, तो पत्नी इसलिए बनी है ताकि पति और पत्नी लड़ते रहें।
0: सर। उसका भी एक कारण है,
1: अच्छा, हाँ
0: क्योंकि देखिए एक लड़की जब से बड़ी होती है उसे सब बहुत लड़ा करते हैं, फिर उसके जीवन में कोई एक ऐसा पुरुष आता है जब लगता है कि बस अब मेरी बारी है, अब
1: हाँ
0: सिर्फ मैं लड़ूंगी।
1: अब सिर्फ मैं लड़ूंगी।
0: जी बिल्कुल,
1: अरे, लड़कियां हिम्मती होती हैं भाई,
0: बहुत ज़्यादा।
1: और क्या। जैसे अगर देखे तो 150 लोग किसी, 100-150 लोग किसी को लेने जाए, वो अकेले चले आए, तो मेरे तो बस की बात नहीं है कि मेरे दरवाजे पर 150-200 लोग आए, हम उनके साथ अकेले चले जाएं।
0: बिल्कुल सर, अक्सर ऐसा होगा कि सबको आप भेज देंगे, कहेंगे चलो हम आ रहे हैं
1: हाँ,
0: पीछे।
1: लेकिन लड़की कहती है लक्ष्मी भाई कि चलो बेटा अब तुमको बताते हैं, जिंदगी का मजा खट्टे में है,
0: जी बिल्कुल, मीठे में भी है।
1: मीठे में भी है। जी हाँ, और हमारे साथ भाई राखी जी हैं, लिखती हैं आपकी और बहुत प्यारी है। निधि जी धन्यवाद दे दीजिए आप
0: बिल्कुल
1: भाई।
0: राखी जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हाँ, और मुस्तफ़ा जी सऊदी से हैं, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। और पप्पू हार्डवेयर गोंडा से हैं, गुड इवनिंग और भाई शुभ संध्या आपको। और जी हाँ, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं और वो मुकद्दर के सिकंदर हैं। उनकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी और उनका भाई बोला हुआ, उनकी आवाज़ में कुछ सुनते हैं खास, आपको सुनाते हैं। उसके बाद समय वो आ जाएगा जब आप गीत वो बजेंगे जो आप चाहेंगे। फिलहाल अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है तो उनकी आवाज़ में कुछ होना चाहिए,
0: जी सर बिल्कुल।
1: और आइए आपको कुछ सुनाते हैं।
2: अगर मुझे मालूम होता कि मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं जिसने नाम कमाने के खातिर ये टिकट खरीदे, अगर मुझे मालूम होता कि यहां मेरी खूबियां आप लोगों पर जाहिर की जाएंगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। एक एक भाई अगर दूसरे भाई का पेट भरता है तो अपना फर्ज निभाता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, समाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप इजाजत दें तो।

जी हाँ, वो घड़ी आ गई आ गई। अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काटकर जीना महीने में। महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई से तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब तक गीत वो बज रहे थे जो आप चाहते थे, और अब गीत वो बजेंगे साहब जो हम चाहेंगे। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो उल्टा बोल जाएंगे। हम ये बोलेंगे, अब तक गीत वो बज रहे थे जो हम चाहते थे, और अब गीत वो बजेंगे जो आप चाहते हैं। जी हाँ, मुस्तफ़ा जी सलाम करते हैं आपको। अनिल शास्त्री दादा चरण स्पर्श, और उम्मीद करता हूँ कि आप कैसे होंगे। बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता हमारे श्री राजेश कुमार सिंह जी भी उपस्थित हैं। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और शशि सिंह जी भी आ चुके हैं। चलिए अब इस गीत के बाद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं।

और अब फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं आरंभ। जी हाँ, हमारी पहली फरमाइश कहाँ से आई है आप सोच भी नहीं सकते। ये मुस्तफ़ा जी की तरफ से है, जो पहली फरमाइश हमारी सऊदी से है। ओहो, जाते हो जाने जाना, फिल्म परवरिश का गाना। चलिए हम सुनते हैं आप सबके साथ।

जी हाँ, आपने जो गाना सुना वो तो बहुत अच्छा था। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी फरमाइश की तरफ। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। तो हमारी दूसरी फरमाइश है उन्नाव से। जी हाँ, रोशनी रावत जी की फरमाइश है, जो है जुग जुग जिए सुललनवा। जी हाँ, हम ऐसे गाने का इंतजार ही कर रहे थे कि ऐसा गाना भी आ गया। चलिए फिर हम सुनते हैं, थोड़ा गाते हैं।

आइए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो है राजेश कुमार सिंह जी की। जी हाँ, चंदा मामा से भी प्यारा मेरा मामा, जो है किशोर कुमार जी का गाना। तो चलिए सुनते हैं, चंदा मामा से भी प्यारा मेरा मामा। और बताइए आपको क्या अपने मामा की याद आई ये गाना सुनते हुए।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

जी हाँ, हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली फरमाइश है शशि सिंह की तरफ से। जी हाँ, मंजिलें अपनी जगह हैं। जी हाँ, आपकी मंजिलें किस जगह हैं, पर हमारी मंजिलें अभी यही हैं, इसी जगह। तो चलिए इनका गाना सुनते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं।

जी हाँ, हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में हरिश्चंद्र सप्ता जी की ओर। जा रे पवनिया पिया के देश। जी, पवन को ये पिया के देश भेज तो रही हैं, पर हम लोग अपने देश से कहीं जाने वाले नहीं हैं। और आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी आरजे निधि। सुनते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

जी हाँ, हम बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो है अरविंद जी की तरफ से। जी हाँ, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। जी हाँ, हम इस गाने को सुनते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं।

0: चांद।
1: जी हाँ, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ, तो हमारी अगली फरमाइश है राखी जी की तरफ से, तेरे जैसा यार कहाँ। जी हाँ, इन्होंने अपने दोस्तों को याद कर लिया है। आप भी अपने दोस्तों को याद कर कर एक फरमाइश जरूर भेजिए।

जी हाँ, फरमाइश की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आप ऐसे सुनते रहिए प्यारे प्यारे ज्ञाने। और हमारी अगली फरमाइश है निब्बर भाई की तरफ से। जी हाँ, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। इन्होंने कोई फूल ज़रूर खिलाया था जिसको कोई तो चुरा ले गया है। चलिए हम इनका गाना सुनते हैं और सब लोग इंजॉय करिए।

जी हाँ, आइए हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गाना। तो अगली फरमाइश है हमारी बहराइश से। जी हाँ, प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पे हम गाना बजाने जा रहे हैं, जीना है तो हंस के जियो। बिल्कुल सही कहा आपने, हमको हमेशा हंस के और मुस्कुरा के ही जीना चाहिए। जीवन में हंसना मुस्कुराना चलना ही रहना चाहिए, और ये गाना भी चलता रहेगा।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आप सुन रहे हैं फरमाइश शो के दौर में हैं इस समय। तो अगली फरमाइश है हमारी, आप सोच सकते हैं कहाँ से है, जी हाँ, मनकापुर से। तो अगली फरमाइश हमारी है मिंटू जी की तरफ से। मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। पता नहीं इनका दिल किसने चुरा लिया है, पर हमारे इस गाने ने आप सबका दिल जरूर चुरा लेंगे। तो आगे चलिए ये गाना सुनते हैं।

जी हाँ, इस गाने ने तो हम सबका दिल चुरा लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की, जो है उस्मान खान जी की तरफ से। ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। जी हाँ, ये दिल वालों की बस्ती है और चाहत का इलाका है। प्रीति शुक्ला जी लिखती हैं, मैम थैंक्स अ लॉट, वेलकम प्रीति जी, आप ऐसे ही फरमाइश करते रहिए, हम आपको सुनाते रहेंगे। हेलो सुमन जी, कैसी हैं आप? आइए हम सुनते हैं ये गाना, फिर बढ़ते हैं आपकी तरफ।

जी हाँ, हम बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपकी आरजे निधि। तो जी, मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ और नागेश्वर जी आपका स्वागत हो चुका है। और आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। और अरविंद जी, जी आपका भी स्वागत है, आप हमारे लिसनर हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हम अगली फरमाइश बजाने जा रहे हैं सुमन जी की। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, पर भाई हमें अपने सभी लिसनर से काम है। तो मैं सभी के चैट पढ़ती हूँ, देखती हूँ और मैं सबका रिप्लाई देती हूँ और सबका स्वागत कर चुकी हूँ पहले से। नागेश्वर धाकड़ जी, हम क्षमा चाहते हैं जो आपके मैसेजेस छूट गए हों। बाकी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, सुनते रहिए।

जी हाँ, हम बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ जो है निशा जी की तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी हाँ बिल्कुल, ये गाना भी उतना ही अच्छा है जितनी अच्छे हमारे लिसनर्स हैं। तो चलिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी आरजे निधि, और सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, और अब फरमाइश की बारी आ चुकी है हमारे दर्द कुमार और सुरेश कुमार जी की। और गीत के बोल वही हैं जो दर्द में डूबे हुए हैं, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है।

ढूंढ रहा है। जी हाँ, अब चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और जो है एहसान जी की, ये दिल तो दीवाना है, रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

0: पूछ रही हो?
1: यूं ही।
0: अब दिल से पूछो।

बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया भाई, मोहम्मद रफीक जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं मनोज कुमार मिश्रा जी, जो हमको सुनते हैं खरको जातपुर से, उनकी फरमाइश है रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुगाएगा। ये सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ, इस प्यारे से भजन के बाद अब आइए चलते हैं भाई अनु जी की तरफ। और फरमाइश है भाई, आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और गीत भेजा है, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है।
1: नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल

0: खाली दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे, आप रहने दीजिए। लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा।

0: 33 53 94 और 872 661 8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। अरे सुना
1: क्या,
0: यही की गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 53 46।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92-60-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करे आप आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की ही नहीं बल्कि अब तो हमारे और आपके दिलों की धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और आज जिस दानिश्वर को आपके बीच लेकर आए हैं उनका नाम है जावेद मुशीरी। जिंदगी के कई पन्नों को पलटते हुए उनकी गजलें कभी हालात पर बात करती हैं और कभी तमाम सारी ऐसी मसलहत हैं जिन पर इन्होंने अपनी कलम चलाई। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मतला ही मुकम्मल हो गया, मतलब एक पंक्ति बोली और लगा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि कोई दीवार है न दरवाजा, कोई दीवार है न दरवाजा, ऐसा बिखरा है घर का शिराजा। शिराजा मतलब एकता, यूनिटी। कोई दीवार है न दरवाजा, ऐसा बिखरा है घर का शिराजा, सहन के साथ बट गए दिल भी, सहन के साथ बट गए दिल भी, अब कहाँ आएगी हवा ताजा। दर्द की शाम ढलने वाली है, दर्द की शाम ढलने वाली है, जख्म होने लगे तरोताजा, बेसदा चीखने से क्या होगा। सदा मतलब आवाज, बेसदा चीखने से क्या होगा, कोई आवाज है ना आवाजा, अपने पुरखों का कर्ज है जावेद, अपने पुरखों का कर्ज है जावेद, जिसका भरना है हमको खामियाजा। जी हाँ, जावेद मुशीरी साहब एक मुख्तलिफ अंदाज उनका गज़ल लिखने का, बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात को कहने वाले बहुत अच्छे शायर। हमारे साथ जेके शाह जी हैं। वेलकम सर जी, खैर मकदम, आपका आदाब करते हैं आपको, और शुभ संध्या आपको भी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। और आइए अब आपको ले चलते हैं गज़लों की दुनिया में। और बहुत ही प्यारी गज़ल, मुझे याद आ रहा है कि एक बार रेखा जी का इंटरव्यू लिया गया था, और इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने पूछा था कि आपने इतने सारे गीत सुने और गज़लें सुनी, आपकी सबसे प्यारी गज़ल, सबसे फेवरेट गज़ल कौन सी है। तो लता जी ने गुनगुना कर कहा था कि मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। बहुत ही प्यारी गज़ल है। आइए आज के बहारे गज़ल की शुरुआत करते हैं उस गज़ल से जो रेखा जी को बेहद पसंद थी। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की ही नहीं बल्कि हम सभी के दिलों की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। वास्तव में भूल पाना इतना आसान काम नहीं होता है, शायद बहुत मुश्किल होता है। और रिश्ते जब बन जाते हैं तो फिर उन्हें भूल पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। रिश्ते, एहसास, शायद यही तो है हमारी जिंदगी में सबसे खास। भावनाओं का दूसरा नाम ही जीवन है। हमारे साथ सविता शास्त्री जी हैं, क्षण स्पर्श करते हैं आपको शुभ संध्या। और सही जो निकला ये इश्तखारा, तो क्या करोगे, नहीं हुआ मैं अगर तुम्हारा तो क्या करोगे। आय हाय, क्या बात है। और स्टीव जी लिखते हैं, दिस सॉन्ग ग्रेटली कैप्चर्स इमोशंस एंड फीलिंग एज समवन सेड इट्स लास्ट रिफ्यूज ऑफ मैनकाइंड। क्या बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वास्तव में लास्ट रिफ्यूज ऑफ मैनकाइंड है। बशीर बद्र ने कहा था कि ये सोच लो कि आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो कि आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई डर न मिलेगा। वास्तव में नहीं भूल सकते हम। चलते हैं जावेद मुश्री साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि आप कुछ देर तो ठहर जाएं, आप कुछ देर तो ठहर जाएं, राह से हाथ से गुजर जाएं, कौन अब मुतमईन है दुनिया में निश्चिंत, मुतमईन मतलब कौन अब मुतमईन है दुनिया में हादसे आज किसके घर जाएं। वास्तव में, और जब हादसों की बात करते हैं तो पंक्ति आती है कि खजाना कौन सा उस पार होगा, खजाना कौन सा उस पार होगा, वहाँ भी रेत का भंडार होगा, ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है, यकीनन कल कोई त्योहार होगा। तो कौन अब मुतमईन है दुनिया में हादसे आज किसके घर जाएं, रंग लाएगी आबला पाई। मतलब अगर आप चले हैं और आपके पैरों में आबले पड़े, छाले पड़े हैं, तो वो रंग लाएगी, रंग लाएगी आबला पाई, आईने देख लें तो डर जाएं। संघर्ष साहब हम सभी के जीवन का हिस्सा है। और सोना चमकता है लेकिन उसको कितना तपना पड़ता है वो सोना ही जानता है। रंग लाएगी आबला पाई, आईने देख ले तो डर जाए, ऐसे बदले हैं वक्त ने चेहरे, ऐसे बदले हैं वक्त ने चेहरे, आईने देख ले तो डर जाए। जिंदगी लाई है वहां जावेद, जिंदगी लाई है वहां जावेद, सांस भी लें तो घुट के मर जाए। मतलब जिंदगी इस मोड़ पर खड़ी है कि अब लगता है सांस भी लेंगे तो घुट के मर जाएंगे। बहुत प्यारी पंक्ति लिखी कि नए ताल्लुक की नाव लेकर चले हो तुम भी, नहीं मिला जो कोई किनारा तो क्या करोगे। आहा, क्या बात है। और ऐसी स्थिति में अगर हमको किनारा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे जेके शाह साहब। उस समय हम कभी अपने हालात पर और कभी अपनी जिंदगी पर रोएंगे और क्या करेंगे। इसके अलावा और विकल्प ही क्या बचता है जी। नहीं मिलेगा तो कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। आइए बहुत ही प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM। और जी हाँ, इस गज़ल की खास बात है कि हम इसी गज़ल को आपको दो आवाज़ में सुनाएंगे। भाई और बहन दोनों ने गाई है, लता जी ने भी गाई है और रफ़ी जी ने भी गाई है। तो पहले भाई उसके बाद बहन, कभी खुद पे कभी हालात पे।

कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। वास्तव में कितना दर्द छिपा हुआ है। और जी शुक्रिया, एक मुद्दत से तेरी याद भी आ रही हमें, और हम भूल गए होंगी तुझे, ऐसा भी नहीं। डेडिकेटेड टू टीम गैनस्ली फ्रॉम एन ओल्ड लिस्नर। अरे भाई, आप जो कोई भी हैं बहुत अच्छा लगा। और जी, और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल होल वर्ल्ड, वी कैन से एज मदर्स डे ऑफ होल वर्ल्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, संपूर्ण कायनात माँ में सिमट गई। उठाए फिरते हो सूरज है क्या तमाशा, उठाए फिरते हो सर पे सूरज है क्या तमाशा, बिखर गया जो ये नूर सारा तो क्या करोगे, क्या बात। चलिए फिर चलते हैं जावेद मुश्किली जी की तरफ। जिंदगी में बहुत से लोग खुशियां संभालते हैं, लेकिन गम संभालना बहुत जरूरी है। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही प्यारा शेर है, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। बहुत प्यारी लाइन लगी थी मुझको। उन्होंने कहा कि चांद ज्यादा रोशन है तो होने दो, चांद ज्यादा रोशन है तो होने दो, जुगनू भैया दिल मत भारी किया करो। आप अपने हिस्से का चमको, वो अपने हिस्से का चमके, क्यों किसी से तुलना। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यही है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, तो शायद हमारी खुशियां कम हो जाती हैं। जो प्राप्त है अगर वो पर्याप्त है तो मुझको लगता है बहुत अच्छी बात रहेगी। उन्होंने लिखा कि जावेद मुश्किली साहब ने कि यूं संभाले हुए हैं हम गम को, यूं संभाले हुए हैं हम गम को, जैसे रखता है फूल सबनम को, धड़कनों को शऊर आ जाता, शऊर मतलब तरीका, धड़कनों को शऊर आ जाता, आ ही जाते अगर कोई दम तो। आपको कैसी दिल लगी ठहरी, आपको कैसी दिल लगी ठहरी, हम तरसते रहे हैं लफ्ज मरहम को, हिज्र ही हिज्र हो, हिज्र मतलब जुदाई, हिज्र ही हिज्र हो विसाल न हो, विसाल मतलब मिलन, हिज्र ही हिज्र हो विसाल न हो, अरे आग लग जाए ऐसे मौसम को, टूट जाए जुनू की जंजीरें, टूट जाए जुनू की जंजीरें, रक्स कर दूं मैं सारे आलम को, मतलब सबको एकदम नचा के रख दूं, सुरलय ताल से बांध दूं। और पंक्ति देखिएगा, खून आंखों से रोना पड़ता है, खून आंखों से रोना पड़ता है, अरे खेल समझा है तुमने मातम को। साहब वास्तव में जब जिंदगी दर्द देती है ना, तो आंख से पानी नहीं, आंख से खून निकलता है। कहीं पढ़ा था मैंने कि इस दुनिया का सबसे कीमती लिक्विड आंसू है, जिसमें 99% दर्द और 1% पानी होता है। तो कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। और चलिए अब आपको ले चलते हैं मखमली गले की तरफ। और जब मखमली आवाज में कह दूं तो इसका मतलब मेरी मुराद जगजीत सिंह साहब से होती है। आइए अब आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह साहब की एक प्यारी सी गजल, और मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हम सभी के दिलों की।

जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब ने लिखी ये गज़ल और गाई जगजीत सिंह साहब ने। दोनों अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर। अब उस दरीचे को ताकना क्या सवाल ये है, वो चांद निकला नहीं दोबारा तो क्या करोगे, क्या बात है। हमारा जादू तो चल चुका है तुम्हारे दिल पर, नहीं हुआ जो अगर उतारा तो क्या करोगे। एहुस्न ए बेजा बिनाश तुमको ये सोचते हो, उतार लाऊं कोई सितारा तो क्या करोगे। हाँ, अगर हम सितारा उतार भी लाएं तो आप करेंगे क्या। और स्टीव जी लिखते हैं, काश ऐसे लोग फिर आए, अच्छे गायकों का अकाल मालूम पड़ता है। जी मतलब मैं आपकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ। जहाँ पर हम स्वर कोकिला को देखते हैं कि संगीत के लिए इतनी श्रद्धा है, इतना रिवरेंस है कि उन्होंने आज तक चप्पल पहनकर कोई गीत नहीं गाया। वास्तव में संगीत एक साधना है। और सही कहा आपने कि इसमें तो लगता है जैसे वो जो गायन शैली हमारी थी वो थोड़ी सी कहीं भटकी हुई है। और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आज नहीं तो कल फिर वो समय आएगा। फिलहाल हम चलते हैं जावेद मुश्री साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि ये कमी है तो ये कमी क्यों है, ये कमी है तो ये कमी क्यों है, तू नहीं है तो जिंदगी क्यों है। ये कमी है तो ये कमी क्यों है, तू नहीं है तो जिंदगी क्यों है। पर कतरने लगी हवाओं के ये हवा इतनी सरफिरी क्यों है। कोई रिश्ता नहीं अगर मुझसे मेरे बारे में सोचती क्यों है। आईना खाक हो चुका कब का दिल के दागों में रोशनी क्यों है। और अंतिम पंक्तियां आए हैं, दिल निकाल दिया शायर ने। कहते हैं कोई तो पूछता कभी जावेद तेरी आंखों में ये नमी क्यों है। मतलब उनका कहना था कि दुनिया अपने आप में इतनी व्यस्त है कि किसी के गम को देखने का, समझने का, सुनने का उनमें वो चाहत ही नहीं। दे आर बिजी इन देयर लाइफ, इट्स माई ओन लाइफ वाले लोग थोड़े से बढ़े। जब हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि क्या जीवन था। या अपने बड़े बुजुर्गों के पास कभी बैठते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास बैठेंगे तो कुछ मिलेगा साहब। खुद ब खुद चल के नहीं तर्ज़े सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। तो जिनको भी थोड़ी सी सलाहियतें चाहिए उनको अपने बुजुर्गों के कदमों में बैठना पड़ता है और वहां से वो सीखते हैं। हमको लगता है कि उदय प्रताप सिंह एक बहुत अच्छे शायर, मुलायम सिंह यादव जी के अध्यापक रहे, उन्होंने कहा कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझें, नदी का पानी उतर गया है। तो साहब जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, वो आप किसी बाजार से नहीं खरीद सकते, वो आपको किसी बुजुर्ग के पैरों में बैठकर ही आएगा। और बहुत अच्छी बात कही स्टीव जी ने कि लगता है कि
गालिब जैसे जो शेर कहते थे और जगजीत सिंह साहब जैसे जो गाते थे, मतलब कहीं ना कहीं उन पुराने दिनों को हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि काश कुछ वैसा ही हो, और होगा। आइए अब आपको, चूंकि रात हो चुकी है, रात में एक बहुत प्यारी बात होती है, कभी कभी किसी का शेर है कि रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए, बहुत प्यारा सा मतला है ये। तो ये हाँ, ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। लेकिन कभी कभी इंसान जब मोहब्बत में मुफ्तला होता है तो क्या होता है उसके साथ, देखिए उसकी रात कैसे होती है इस प्यारी सी गज़ल के साथ।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये गोना ही नहीं है, बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

0: हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपकी आरजी उन्नति
1: और मैं आयुषी।
0: और आप सुन रहे हैं पर्दा। आयुषी, तुम्हें पता है
1: क्या
0: आज एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों से सीधा निकाल के मैं तुम्हारे पास लाई हूं।
1: इंटरेस्टिंग, इतिहास के पन्नों से। पन्ने फाड़ तो नहीं लाई तुम?
0: मजाक नहीं, पन्ने फाड़ के लेकर नहीं आई हूं, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आई हूं जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया।
1: वर्ल्ड रिकॉर्ड?
0: हाँ,
1: ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या
0: अब
1: है?
0: गेस करो क्या हो सकता है।
1: शायद किसी ने बहुत अच्छा काम किया होगा हिस्ट्री में, इसीलिए तुम मतलब तभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया ना।
0: तुम्हें लगता है कि मैं पर्दा में किसी के अच्छे कामों को बताने आऊंगी?
1: नहीं, पर मुझे लगा तुम ऐसे ही बोल रही हो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो अच्छे ना अच्छे काम ही आएंगे ना।
0: नहीं, एक ऐसी महिला की कहानी या फिर क्या एक ऐसी रानी की कहानी जिसने 600 से ज्यादा लड़कियों का मर्डर कर दिया।
1: 600 से ज्यादा?
0: हाँ, और आज तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया।
1: मतलब मैं क्या बोलूं, क्या था इसमें, प्लीज पूरी तरीके से बताओ।
0: तो इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम कोई सच नहीं, एक ऐसी खौफनाक कहानी सुन रहे हैं जिसका सपना भी किसी को नहीं आना चाहिए। 16वीं सदी का यूरोप, हंगरी का एक ताकतवर और रईस परिवार, और उस परिवार में जन्मी एक लड़की जिसका नाम था एलिजाबेथ बथौरी।
1: नाम तो काफी रॉयल लग रहा है, लेकिन तुम जिस तरह बता रही हो मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
0: गड़बड़ नहीं, खौफनाक। कहा जाता है वो अपनी नौकरानियों के साथ बेहद क्रूर व्यवहार करती थी, और ये क्रूरता उसे विरासत में मिली थी उसकी अपनी ही चाची से।
1: मतलब बचपन से ही वॉयलेंस उसके आसपास ही था, उसकी चाची के रूप में।
0: बिल्कुल, और उस दौर में जब हंगरी ओटोमन हमले और अस्थिरता से जूझ रहा था, हिंसा हंगरी में आम बात हो चुकी थी, हर कोई हिंसक हो रहा था।
1: और फिर
0: क्या, फिर 1575 में उसकी शादी एक ऐसे ताकतवर काउंट से कर देते हैं जिसका नाम था फेरेंक नडास्टी। लेकिन शादी के बाद सबकी जिंदगी में प्यार आता है, और उसकी जिंदगी में जो आया वो अकेलापन था, और सिर्फ अकेलापन नहीं, उसके साथ आया अंधेरा।
1: अंधेरा मतलब डार्कनेस।
0: कहा जाता है जब उसका पति युद्ध में रहता था तो उसके किले के अंदर यातना दी जाती थी, चीखें गूंजती थी और मौत बांटी जाती थी।
1: वेट, इसका मतलब क्या है?
0: इसका मतलब ये है कि जब उसका हस्बैंड युद्ध में था, वो महल के अंदर कुछ ऐसा कर रही थी जो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज होने वाला ही था, लेकिन जो भी सुनता था उसकी रूह कांपने वाली थी।
1: ऐसा क्या करती थी?
0: बताते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो मानती थी कि कुबारी लड़कियों के खून से नहाने से उसकी सुंदरता और उसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी।
1: क्या मतलब खून से नहाने से किसी की जवानी कैसे बरकरार रह सकती है? और भला ये कोई एक इंसान कैसे कर सकता है कि किसी के खून से नहा सकता है? मतलब हमारे हाथों में खून लगता है तो हम उसे धुलने के लिए पानी के पास जाते हैं, और पानी मतलब आगे क्या हुआ ये बताओ।
0: 7 अगस्त 1560, ट्रांसिल्वेनिया का एक किला एक्सकेट कैसल, यहीं जन्म हुआ एक ऐसे नाम का जो आगे चलकर इतिहास के सबसे खौफनाक कहानियों में शामिल हो गया। गेस कर सकती हो?
1: इतिहास मतलब बताओ यार,
0: अभी बताया
1: बताओ।
0: था, एलिजाबेथ बथौरी।
1: ओ, वही क्वीन जो खून से नहाना चाहती थी।
0: बिल्कुल,
1: मतलब शुरुआत बिल्कुल रॉयल थी, लेकिन एंडिंग बहुत खौफनाक। शायद
0: एंडिंग इतनी खौफनाक कि आज भी उस पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ लोगों के अनुसार एलिजाबेथ बथौरी पर आरोप था कि उसने 600 से ज्यादा लड़कियों और यंग फीमेल्स को यातना देकर मार डाला।
1: 600? ये तो किसी हॉरर फिक्शन जैसा लग रहा है।
0: और यही वजह है कि उसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, लेजेंड बन गई। उसकी जिंदगी को अक्सर जोड़ा जाता है व्लैड थर्ड जैसे खौफनाक नामों से, और कहा जाता है कि इन्हीं कहानियों ने इंस्पायर किया था एक नाम जिसे आज हम कहते हैं ड्रैकुला।
1: मतलब रियल लाइफ हॉरर ने फिक्शन को जन्म दिया।
0: एलिजाबेथ बथौरी की मौत हुई थी, पता है कहाँ?
1: शायद उसके घर पे।
0: चलो ये तो मैं लास्ट में बताते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी कहानी सुनाते हैं।
1: बिल्कुल, आगे सुनाओ। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है।
0: एलिजाबेथ बथौरी जिस खानदान में पैदा हुई थी उसमें पावर, पैसा, शोहरत सब कुछ शामिल था।
1: मतलब पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस सब कुछ तो था उसके पास।
0: सब कुछ, और शायद बहुत ज्यादा। 1571 में सिर्फ 11 साल की उम्र में उसकी सगाई कर दी जाती है, वो भी उससे जो उस समय सिर्फ 16 साल के थे। और फिर एलिजाबेथ चली जाती है सार्वर की उस महल में जहां उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था।
1: इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा चेंज।
0: और यही उसकी जिंदगी में आता है एक और इंसान।
1: कौन?
0: उसकी चाची करला पथौरी।
1: ये वही है ना जिसने उसे इन्फ्लुएंस किया था?
0: इन्फ्लुएंस नहीं, शुरुआत। कहा जाता है यही उसने सीखा नौकरानियों को कैसे सजा दी जाती है, उन्हें दर्द देना और उस दर्द को महसूस करना।
1: तो इसके बाद?
0: लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक इंसान की सोच थी या उसे दुनिया ने भी ऐसा बनाया था?
1: मतलब एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल था इसमें?
0: बहुत हद तक। 1526 बैटल ऑफ मोकास, इस युद्ध के बाद हंगरी का एक विशाल साम्राज्य टूट गया, ऑटोमन एम्पायर और दूसरी तरफ हैब्सबर्ग मोनार्की, बीच में एक बटी हुई अस्थिर जमीन।
1: और उस इनस्टेबिलिटी का असर शायद लोगों को झेलना पड़ा?
0: सबसे ज्यादा गरीबों पर। किसानों को बना दिया गया दास, जमींदारों के पास था उनकी जिंदगी और मौत का हक। अब सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, और उसी दुनिया में एलिजाबेथ बथौरी बड़ी हो रही थी।
1: तो उसके लिए वॉयलेंस नॉर्मल बन गया था।
0: एग्जैक्टली। और इसी माहौल में उसने सीखा कि अपने दासों की बेटियों पर कैसे क्रूरता करते हैं। और इसी कहानी में विचक्राफ्ट भी है।
1: विचक्राफ्ट? अरे लेकिन ये वाला एंगल यहाँ कैसे आया?
0: उस दौर में हंगरी सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक अशांति से भी जूझ रहा था। लोग जादू टोना, पुराना पंथ और अंधविश्वासों की तरफ बढ़ते जा रहे थे।
1: मतलब सुपरस्टिशंस पीक पे थे।
0: और एलिजाबेथ धीरे धीरे काले जादू की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। कहा जाता है उसने अपने आसपास एक ऐसा समूह बना लिया था जो चुड़ैलों का था, जो उसके क्रूर और विकृत खेलों में उसकी मदद करते थे।
1: मतलब ये अब सिर्फ क्राइम नहीं रहा, ये कुछ और ही बनता जा रहा है।
0: एक अमीर लड़की, एक टूटी हुई दुनिया और एक ऐसा दिमाग जिसमें दर्द ही खुशी बन चुकी है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी।
1: अगर ये शुरुआत थी तो आगे क्या हुआ?
0: मई 1575 एलिजाबेथ बथौरी की जब शादी होती है, उस समय हंगरी पर रूल कर रहे थे रोडोल्फ सेकंड, एक ऐसे राजा जो रसायन विद्या और जादू टोने में गहरी रुचि रखते थे।
1: मतलब सत्ता के हाईएस्ट लेवल पे भी ये सब बिलीफ मौजूद थे?
0: हाँ, और उसी दौर में सीमा पर लगातार खतरा बना हुआ था। ऑटोमन एम्पायर के साथ लगातार टकराव चल रहा था और ये आगे चलकर लॉन्ग टर्किश वॉर भी बना। फेरेंक नडास्टी लगभग हर समय युद्ध में रहते थे और पीछे सवर के महल में एलिजाबेथ अकेली रहती थी।
1: और यहीं से वो सब शुरू हुआ?
0: हाँ, यहीं से क्रियोलिटी का रूटीन शुरू हो चुका था। शुरुआत छोटी थी, सजा, दर्द, लेकिन धीरे धीरे ये बदल गई यातना में। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, जब नौकरानी बाल संवारते वक्त गलती कर बैठी, एलिजाबेथ ने उसे बहुत मारा और उसका खून उसकी त्वचा पर गिर गया।
1: और यहीं से?
0: कहा जाता है उसे लगा उसकी त्वचा और भी साफ हो गई है और युवा दिखने लगी है, जवान दिखने लगी है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसी कहानी जो एक खौफनाक विश्वास और एक खौफनाक यकीन था। उसकी करीबी एन्ना दरवुलिया ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वो कुमारी लड़कियों के खून से नहाएगी तो उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी।
1: मतलब अब ये सिर्फ टॉर्चर नहीं रहा, मतलब एक रिचुअल बन गया था शायद।
0: एग्जैक्टली। इसके बाद लड़कियों को सिस्टमेटिकली लाया जाने लगा। गरीब किसान परिवारों से उन्हें यातनाएं दी जाती थी, उनका खून बहाया जाता था और एलिजाबेथ उस खून से नहाने लगी। उसके किलों में ऐसे उपकरण थे, लोहे के पिंजरे, स्टील के ब्लेड, जहां एक लड़की को अंदर बंद किया जाता था और ऊपर से ब्लेड से उसे काटते रहते थे। नीचे खड़ी होती थी एलिजाबेथ
1: और खून
0: उस पर गिरता रहता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसकी क्रूरता और भी बढ़ती गई और साथ ही बढ़ती गई विक्टिम्स की संख्या।
1: लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने लोग गायब हो रहे थे और किसी ने नोटिस भी नहीं किया।
0: हमारी हर कहानी में यही होता है ना, जब भी कोई गरीब गायब होता है तो सवाल कोई नहीं उठाता, और यहाँ भी यही था। जब तक विक्टिम्स गरीब थे कोई सवाल नहीं उठा रहा था, लेकिन जब उसकी नई साथी एहजसी मजोरबा ने सलाह दी कि आप उच्च वर्ग की लड़कियों को टारगेट करो,
1: शायद उसने यहीं पे गलती की थी।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई बड़े खानदान से आता है तो उसकी जांच पड़ताल जरूर होती है। अब गायब होने लगी अमीर घरों की लड़कियां। चर्च के पादरियों ने सवाल उठाए, लाशें, हाँ सामान्य दफन, और फिर शक यकीन में बदलने लगा। वक्त था 29 दिसंबर 1610 का। ग्योर्गी थुरासो सैनिकों के साथ उसके किले में पहुंचे
1: और अंदर क्या मिला?
0: जो लोग कहते थे वो सब सच था। यातना के सबूत, लाशें और जिंदा पीड़ित। 1611 उसके नौकरों पर मुकदमा चला। गवाहों ने बताया कैसे वो लड़कियों को यातना देती थी। यहाँ तक कि 650 पीड़ितों की एक सूची भी सामने आई।
1: 650? ये नंबर बार बार क्यों आ रहा है?
0: हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि एलिजाबेथ बतौरी खुद कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई।
1: पेश नहीं हुई तो फिर क्या हुआ आगे?
0: उसे उसके ही कमरे में कैद कर दिया गया। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद, सिर्फ एक छोटा सा छेद जहां से खाना दिया जाता था।
1: एक रानी अब एक कैदी बन चुकी थी।
0: वक्त आया 21 अगस्त 1614 का। वहीं उसी कमरे में उसकी फाइनली मौत हो गई। एक औरत जिस पर 600 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था। ना कोई पब्लिक ट्रायल, ना कोई अंतिम सच।
1: तो सवाल अब भी वही है, क्या एलिजाबेथ बथौरी वाकई में एक मॉन्स्टर थी या फिर इतिहास ने उसे ऐसा बना ही दिया? एक किला जिसकी दीवारों ने चीखें सुनी, एक नाम जिसे सदियों तक लोग लेने से डरते रहे, एलिजाबेथ बथौरी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये सब सच था?
0: हाँ, क्योंकि ना कोई पब्लिक ट्रायल हुआ कभी, ना कोई बड़ा खुलासा हुआ, और इतिहास हमेशा ताकतवर लोगों के हाथों से लिखा जाता है।
1: मतलब संभव है कि वो एक खतरनाक हत्यारी थी, या शायद वो किसी साजिश का हिस्सा बन गई थी।
0: सवाल चाहे जो भी हो कि किलों में जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत के सबसे अंधेरे हिस्सों को दिखाता है।
1: और शायद आज भी महलों की दीवारों के बीच कोई सन्नाटा नहीं है।
0: कहते हैं कुछ रातों में वहां से हल्की हल्की चीखें सुनाई देती हैं, और ध्यान से सुनो तो लगता है जैसे कोई अब भी बचाने की गुहार लगा रहा है। और तुम्हें एक बात पता है?
1: क्या?
0: एलिजाबेथ बथौरी एक ऐसा नाम है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है, और इसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। फिलहाल ये थी आपकी एक ऐसी कहानी जो भरी थी दर्द से और चीखों से, अंधेरे से। मैं हूं आपकी आर्जुनति, चाहती हूं आपसे विदा।
1: और मैं आरजी आयुषी, फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए खौफनाक कहानी के साथ।
0: तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग, संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिमझिम रिमझिम। संगीत सम्राट आरडी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिमझिम रिमझिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज़ से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।